तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। कोशिश करिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, कोशिश करिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हो। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप नाराज हों तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 5:36, 34 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

चल रहा हो जहां परिचय मूर्खता का, वहां शांत रहना ही बेहतर है। चल रहा हो जहां परिचय मूर्खता का, वहां शांत रहना ही बेहतर है। सजी हो महफिल मूर्खों की, वहां से निकल जाना ही बेहतर है। मूर्खों की उस भीड़ में बुद्धिमत्ता कैसे दिखाओगे, मूर्खों की उस भीड़ में बुद्धिमत्ता कैसे दिखाओगे। घुसोगे जबरदस्ती वहां तो खुद भी मूर्ख कहलाओगे। 5:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:45 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चन।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 16वीं तिथि के तदानुसार 6 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 31 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का और 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। 6:55 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। सात बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 7:05 पर आप एक बार फिर से सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। और 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात का।

7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का मॉर्निंग न्यूज़।

8:30 का समय रहता है उर्दू में समाचारों का, और 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9:00 आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, और 9:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:59 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 6:00 हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंध

0: के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तोलाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the

कभी सोचा है क्यों कहते हैं राधे राधे? क्योंकि राधा नाम लेते ही कृष्ण अपने आप ही आ जाते हैं। ये नाम नहीं, एक भावना है। जहां प्रेम है वहीं भगवान है। 100.1 MHz FM गोल्ड पर अर्पण में आप है उर्वशी के साथ। सुप्रभात।

कभी सोचा है भक्ति क्या है? क्या ये सिर्फ मंदिर जाना है या कुछ और गहरा? भक्ति वो धागा है जो मन को भगवान से जोड़ता है। जैसे मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, वैसे ही जब दिल सच्चा हो तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। सुनते रहिए अर्पण, उर्वशी के साथ।

कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से पुकारे मैं वही हूँ। न बड़े यज्ञ चाहिए, न बड़े व्रत, बस एक सच्चा भाव, एक सच्ची पुकार। जब राधा ने कृष्ण को चाहा तो वो प्रेम ही पूजा बन गया, शायद भक्ति का सबसे सुंदर रूप।

कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भगवान दूर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारे अंदर ही हैं। हर अच्छे विचार में, हर सच्चे कर्म में, जब मन शांत होता है तब वही कृष्ण बांसुरी बजाते हुए सुनाई देते हैं। बस सुनने का हुनर चाहिए।

राम ने सिखाया धर्म क्या होता है, कृष्ण ने सिखाया जीवन कैसे जीना है और शिव सिखाते हैं सब कुछ त्याग कर भी शांत कैसे रहना है। हर देवता एक मार्ग है और हर मार्ग अंत में उसी एक सत्य तक ले जाता है।

कण कण में है भगवान, लेकिन फिर भी कुछ उलझा हुआ लग रहा है, तो बस एक पल को रुकिए, अपने अंदर झांकिए। क्या आपका मन शांत है? क्या उसमें प्रेम है? अगर हाँ तो समझ

उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमोची गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था, शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूल कर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ

0: कक्षां मन्त्रिणां वरिष्ठाधिकारिणां च उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलम् अस्ति। सहैव एकं प्रबलं वाणिज्यप्रतिनिधिमण्डलमपि समूहेन सह अस्ति। अस्मिन् वर्षे अप्रैलमासे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचनानन्तरं राष्ट्रपत्युः टो लैम वर्यस्य भारतस्य एषा प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। भारतस्य कर्पासक्षेत्रस्य बाधायाः निवारणाय, विकासे न्यूनतायाः समाधानाय, गुणवत्तायाः चिन्तायै च केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन कर्पास उत्पादकता अभियान कपासकान्ति इत्यस्य कृते 600+5,000 कोटिरूप्यकाणि स्वीकृतानि। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इदम् अभियानं सर्वकारस्य फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन इति 5F विषयैः सह संरेखितमस्ति। कर्पासस्य उत्पादकतां वर्धयितुं च केन्द्रितमस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन आपत्कालीन ऋण रेखा प्रत्याभूति योजना 0.5 अनुमोदिता। योजनायाः अन्तर्गतं MSME इत्येतेषां कृते 100% ऋण प्रत्याभूतिः प्रदीयते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारत सेमीकंडक्टर मिशन इत्यस्यान्तर्गतम् इतोपि 2 सेमीकंडक्टर परियोजने अनुमोदिते।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो LED प्रदर्शन सौविध्यम अंतर्भवति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20/26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोपि स्वीकृतः। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 59/56 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदात् स्वत्याग पत्र प्रदानाय निराकृतवती। तस्याः अनुसारं मतानि बलात् लुण्ठितानि, मतदान प्रक्रियायां च कपटम् अभवत्। पश्चिमबङ्गस्य निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इत्यस्याः व्याख्यायाः प्रतिक्रियारूपेण भाजपेति दलेन उक्तं यत् भारतं लोकतन्त्रमस्ति तथा च सर्वदा तस्य सम्मानं करणीयम्। श्री संबित पात्रा अवदत् यत् एतत् भाजपेति दलस्य उपरि आक्रमणं नास्ति, अपि तु लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च उपरि आक्रमणमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् 8 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये हैदराबादे स्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की

0: बुनियादी क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेरा फेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था। रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार अनुसूची में ये सूचीबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the

मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, इम्तिहान जिंदगी में आने बहुत हैं। जो मिला नहीं उसका क्या गिला करना, खुश रहने और खुशी बांटने के बहाने बहुत हैं। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर बुधवार की सुबह में आप हैं उर्वशी के साथ गोल्ड सुप्रभात में।

शुरू तो हमारे अंदर से ही होती है, तो ये खुशी शुरुआत इसकी अपने अंदर से करनी है। और बैलेंस पे आ जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसी बैलेंस की बात करने वाली हूँ। तो खुशी की बैलेंस के बारे में तो आपको बता दिया, जितना खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हैं उतनी ही खुशी अपने आप से भी अपने आप के अंदर भी ढूंढनी है और उसको पहचानना है। फिलहाल कहते हैं कि बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, या फिर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। एक भी थोड़ा सा बिगड़ा ना तो असर बाकी सब पर देखने को मिलता है। इसलिए सुबह की शुरुआत करते वक्त एक छोटी सी कोशिश ज़रूर किया कीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दिया दीजिए, थोड़ा सा शरीर के लिए, थोड़ा मन के लिए और थोड़ा अपने आसपास के सुकून के लिए। और योगा इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि जब बैलेंस बना रहता है तो दिन भी सही जाता है।

जी हाँ, प्यार से जब आप नंगे पैर जमीन पर चलते हैं ना, तो ये सिर्फ एक आदत नहीं होती, इसे हीलिंग टेक्निक के रूप में भी देखा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये एक ऐसा तरीका है जो हमें वर्तमान पल से जोड़ता है और दिमाग की भागदौड़ को थोड़ा शांत भी करता है। जब आप ठंडी घास पर नंगे पैर चलते हैं तो वो एहसास सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे मन को भी हल्का करता है, जैसे चिंताओं का बोझ थोड़ा थोड़ा उतर रहा हो। तो हो सके तो रोज़ कुछ मिनट ज़रूर निकालिए, सुबह में या शाम में, जब भी। ज़मीन से जुड़िए और खुद से भी, और जुड़े रहिए साथ ही 100.1 FM गोल पर उर्वशी के साथ।

कहते हैं जिंदगी को कैमरे की तरह होना चाहिए, कैमरे की ही तरह इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें, नेगेटिव चीज़ों को डिलीट कर दें, और अगर ऐसा करने से भी काम ना चल पाए

बिल्कुल भाई, किसी भी रिलेशनशिप में सीरियसनेस तो ऐसी ही होनी चाहिए। फिलहाल आप जो सुन रहे थे ना गाना, वो जो यार अपना त्रिशूल मूवी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। फिलहाल अब जो है आपने सुना गोल सुप्रभात, लेकिन चलिए जान लेते हैं आज आसपास दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की सैर पर और आपको देंगे वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार सर फिरोजी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी आर बिगिनिंग

0: With a very fresh episode of our news magazine program, basically, Aaj Savere. So, in this particular program, we first start with the national international news, then Metro City updates follow, and then some historical information which is related to today. Today it's 6th of May 2026. Me and Sir Firozi, we are pumped up and thrilled to begin our program. So, without any further delay of even a split second, let's start with the headlines.
1: Bilkul Shagun. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे. श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. एक रिपोर्ट.
2: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा. वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे. आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: The Election Commission of India has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after reviewing the situation on the ground, the Commission stressed the need for strict and immediate action to maintain law and order following the Assembly election results. The Election Commission of India asked the state administration and security agencies to take all necessary steps to prevent intimidation, reprisals or clashes linked to the electoral outcome. The poll body also instructed officials to ensure the safety and security of all citizens, particularly vulnerable groups and political workers, and to maintain a visible presence of security forces in sensitive areas. Senior officers have been asked to remain on alert and respond swiftly to any incidents reported from across the state.
1: और शगुन अपने श्रोताओं को बताते चले कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है. इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है. आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है. इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे. मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई.
0: मूविंग ऑन टू अनदर हेडलाइन, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैज फाइल्ड अ चार्ज शीट अगेंस्ट 3 men accused of plotting a bio terror attack linked to the banned terror organization ISIS. The conspiracy aimed at mass poisoning of people in public spaces using ricin, a deadly biological toxin derived from castor seeds and listed under Schedule 1 of the Chemical Weapons Convention. So this was listed under Schedule 1. The main accused, Sayed Ahmed Muhyiddin from Hyderabad, along with co-accused Azad and Mohammed Suhail from Uttar Pradesh, have been charge-sheeted before the NIA Special Court in Ahmedabad under provisions of the Unlawful Activities Prevention Act, relevant under provisions of this provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita and the Arms Act as well. Investigators revealed that the accused were working under the guidance of foreign-based ISIS handlers and had coordinated efforts to recruit vulnerable youth, spread terror, and prepare for bioterror strikes. US President Donald Trump has announced that Project Freedom, a mission to guide stranded vessels through Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time. In a social media post, Mr. Trump said that great progress had been made toward reaching a comprehensive agreement with Iranian representatives to end the ongoing conflict. He explained that in light of recent military developments and the advancement of diplomatic talks, there has been a mutual decision to pause the escort operations under Project Freedom for a short period. Mr. Trump added that the pause will allow time to see if a final agreement between the US and Iran can be reached. The US President's announcement came as Secretary of State Marco Rubio said the initial US-Israeli offensive in Iran, Operation Epic Fury, is over after achieving its objectives.
1: और श्रोताओं अब रुख कर रहे हैं आखिरी हेडलाइन की ओर।

0: और बात करेंगे क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। श्रोताओं, अभी हमने आपको दी देश और दुनिया की खबरें, अब रुख कर रहे हैं महानगरों की ओर। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं शगुन?
1: स्टार्टिंग विद चेन्नई, इनफैक्ट आई हैव टू अपडेट्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन।
0: जी,
1: सदर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन हैज कमीशन 20 न्यू पार्किंग फैसिलिटीज इन दिस ईयर, ब्रिंगिंग द टोटल अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड पार्किंग लोकेशंस फ्रॉम 106 टू 126। अ की हाईलाइट is the multi-level parking facility at Chengalpattu railway station built over 820.32 square meter to handle heavy passenger footfall. The facilities have been set up at several stations, which include Thambaram East, Chengalpet, Gindi and St. Thomas Mount, among others. So Chengalpet and Perambur are also part of development works under the Amrit Bharat Station scheme. The parking areas are equipped with digital ticketing systems, UPI-based payment options and CCTV surveillance to improve safety and convenience. On to our next update from Chennai. City researchers have identified a locally found freshwater microalgae that can eat plastic waste in polluted water bodies in 3 months. A study by the Center for Advanced Studies in Botany at the University of Madras found that the Euronema Thanthrotens, isolated from plastic waste in Rajakilpakkam Lake, can degrade up to 27% of high-density polythene and 21% of low-density polyethylene used in common household items, which includes bottles. And over a 12-week period, under lab conditions, researchers said the algae matches to plastic surfaces and form biofilms, which triggers chemical and structural changes, and hence it can affect this. The microalgae can help in reducing the plastic waste.
0: और शगुन, चेन्नई के बाद अब चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली सरकार ने व्यवसायिक और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 व्यवसायिक शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केंद्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,420 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा। दिल्ली सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी यानी वजन और माप सेक्टर में लाइसेंस व्यवस्था को सरल करते हुए अब इसे लाइफ टाइम वैधता दे दी है, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। श्री सिरसा ने कहा कि लाइसेंस देने से पहले भौतिक स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस स्वघोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे। श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता।
1: Now focusing on Bengaluru, where Karnataka government has signed an SOI with ISEG Foundation to prepare a comprehensive economic master plan for the Bengaluru metropolitan region. And this was done in the presence of Deputy Chief Minister. Spanning 8,000 square kilometer with a population of 16 million, the Bengaluru metropolitan region contributes 43% of Karnataka's GSDP and is a key hub for IT, aerospace, as well as biotech, though it faces challenges like congestion and rising costs. The plan to be completed by September will outline a data-driven vision for 2032 and 2037 with targeted interventions across technology, infrastructure, housing and sustainability. And this aligns with Niti Aayog's G-Hub initiative and aims to more than double Bengaluru's economy and improve livability. A steering committee led by the Chief Secretary will oversee implementation with ISEG Foundation as the knowledge partner.
0: और अब रुख कर रहे हैं मुंबई की ओर। मुंबई विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की है। प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे, जिसमें प्री एडमिशन पंजीकरण 21 मई को समाप्त होगा। छात्र 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों, 4 वर्षीय ऑनर्स या अनुसंधान कार्यक्रम और 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीए, बीकॉम और बीएससी के अलावा आईटी, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और

0: क्षेत्रों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। पहली मेरिट सूची 26 मई को जारी की जाएगी। इसके बाद 30 मई और 4 जून को अगली सूचियां प्रकाशित की जाएंगी। प्रत्येक सूची के बाद दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान किया जाएगा। कक्षाएं 13 जून से शुरू होने की योजना है।
1: Heading to Hyderabad now, the Hyderabad administration has announced comprehensive safety measures for the outer ring road following a high-level coordination meeting held yesterday. Police Commissioner V.C. Sajjanar chaired the meeting with senior officials from the Transport Department and NHIA and other agencies. The ORR witnesses 2.8 lakh vehicles daily, with an average of 5 to 6 accidents occurring each day. The commission emphasized proactive prevention rather than reactive responses, the reactive response, setting a target of zero accidents. Key measures include increased CCTV surveillance, enhanced vehicle fitness inspections, and special counseling for traffic violators.
0: और शगुन, वैसे तो अब समय है कोलकाता के जो महानगर है हमारा उसके बारे में जानकारी देने का, तो वहाँ काफ़ी सारी सरगर्मियाँ चल रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ। उसके अलावा हमारे पास आज कोलकाता के लिए मौसम का अपडेट है। कोलकाता में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आ सकता है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और श्रोताओं, इसके साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे महानगरों के मौसम की। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। बिजली कड़क सकती है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शगुन, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
1: Well, yes, I'll begin again with Chennai. It is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of moderate rain or even thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. Minimum temperature was 24 degrees Celsius in Bengaluru and the maximum will be around 34 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Minimum temperature will be around 27 degrees and maximum temperature will be around 39 degrees Celsius in Hyderabad. Sir Firozi.
0: Ji Shagun, ye tha mahanagaron ke mausam ka haal. Aur अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का। आज यानी 23 अप्रैल के दिन 1739 में चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने वसई अभियान पर विजय प्राप्त की और उत्तरी कोंकण को मराठा साम्राज्य में लाया गया।
1: And today there is a special day, the special observance which we'll tell our listeners about. Well, today International No Dye Day is being observed globally. And this global initiative promotes body positivity and challenges weight stigma. So body positivity is about treating your body with respect, no matter your size, your age or your ability. That's why you should make choices rooted in care. And this day reminds us to step back from quick fix diet culture and then refocus on health in a kinder, more realistic way. And it often symbolized, this day often symbolized by a light blue ribbon which is meant for individuals to take a break from dieting, appreciate their bodies, and thereby educate themselves on the inefficacy of commercial restrictive diets. So International No Diet Day is being observed today globally. Now we'll take our listeners way back in time in the history. 1840, starting with this year, Great Britain's penny black, the first adhesive postage stamp, became valid for use. In 1937, the airship Hindenburg, the largest dirigible ever built and the pride of Nazi Germany bursted into flames in New Jersey.
0: और अब वक्त में चलते हैं थोड़ा पीछे। 1889 में आज ही के दिन आइफिल टावर को जनता के लिए खोला गया।
1: In 1940, John Steinbeck was awarded the Pulitzer Prize for his novel The Grapes of Wrath. In 1954, Roger Bannister of Britain became the first athlete to run a mile less than 4 minutes. In 1955, West Germany formally joined the North Atlantic Treaty Organization, or NATO. In 1957, the last episode of I Love Lucy was aired and considered one of TV's landmark sitcoms. Now, in the year 1994, English Channel was officially opened, connecting Britain and European

0: मेनलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द आइस एज।
1: और 1997 में आज ही के दिन फ्रांस की क्रिस्टीन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी।
0: इन 1998 स्टीव जॉब्स इंट्रोड्यूस एप्पल्स फर्स्ट आईमैक पर्सनल कंप्यूटर। In 2002, Elon Musk founded the aerospace company SpaceX. In 2004, the final episode of the television sitcom Friends was aired, and this was watched by more than 52 million viewers.
1: बिल्कुल शगुन, और आज का दिन इन सभी वजहों से तो खास है ही, इसके अलावा कुछ ऐसी शख्सियतें थी जो आज ही के दिन इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई, तो उन्हें भी अब हम याद करेंगे।
0: And this is what we've all been waiting for.
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले कहां से शुरू कर रहे हैं?
0: First, we'll tell our listeners about Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, a theory of how the mind works and a method of helping people in mental distress. Today it's his birth anniversary, so he's psychology's most famous figure, most influential one as well. And Sigmund Freud, he was an Austrian neurologist born in 1856, and we often refer him as father of modern psychology. So Freud revolutionized how we think about and treat mental health conditions. Freud founded psychoanalysis as a way of listening to patients and better understanding of how their minds work. So psychoanalysis continues to have enormous influence on modern psychology and psychiatry as well. So his theories and work helped shape current views of dream, childhood, personality and therapy as well.
1: आज निशानेबाज गगन नारंग का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1983 में चेन्नई में जन्मे, भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गगन ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 4 बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले और साथ ही कई वर्ल्ड कप खिताबों को अपने नाम करने वाले इस खिलाड़ी ने भारत को बहुत से मौकों पर गौरवान्वित किया। भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है।
0: एंड सैफिरोजी, लेट मी अलाउ मी टू शेयर दैट एज अ 2-year ओल्ड गगन नारंग एम्ड अ टॉय गन एट बलून्स इन अ शूटिंग स्टॉल इन Chennai's Marina Beach. So 27 years later, he was staring down the crosshairs at the historic Royal Artillery Barracks in London, shooting for a medal at the 2012 Olympics. He clinched bronze in the 10-meter air rifle event that day, and with it, India's first medal of that edition of the Games. A 4-time Olympian with multiple World Cup titles, the Chennai-born shooter has done much to make India proud on the global stage. Be it his exploits with the rifle or through his famed Gun for Glory Academy, which nurtured several prodigies, and the Indian shooter has played a key role in raising the standard of the sport in his country, in our country, over the years.
1: और आज भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्मदिन है। 1985 के दक्षिण फेडरेशन सैफ खेलों में काठमांडू में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और नया राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किया था। सिंह को 1984 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया।
0: नाउ वी विल रिमेम्बर टेड वीम्स। The popular Midwestern band leader started his band in 1923 while attending the University of Pennsylvania, and in around 1925 he played in hotels and ballrooms. He started around with that in the city, and while also touring the Midwest.

उनकी जयंती है जो भारतीय सेना के उन जाबाज सैनिकों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में पाली नगर के मोहल्ला काजी सराय में 6 मई 1972 को जन्मे लांस नायक आबिद खान ने करगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया। उनके बलिदान पर आज भी पूरा देश गर्व करता है। 30 जून 1999 को आबिद खान जत्था रवाना हुआ। दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई सैनिक शहीद हो गए। एक गोली आबिद के पैर में भी आ लगी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़कर एक साथ 32 फायर झोंक दिए। आबिद के इस ताबड़तोड़ हमले में 17 पाक सैनिकों की लाशें भिज गई। इस बीच एक और गोली आबिद को आ लगी जिससे ये वीर सपूत देश की रक्षा करता हुआ 1 जुलाई 1999 को शहीद हो गया।

0: Listeners, today we are also remembering Shanta Gandhi, dancer, playwright, theatre director and founding member of the Indian People's Theatre Association Ballet Troupe. So as a playwright, Shanta Gandhi is best known for reviving traditional forms of Indian drama. This includes folk theatre, Sanskrit drama for contemporary settings. Her first produced piece was The Middle One in 1966. In 1982, she served as chairperson of the National School of Drama, where she helped to develop youth arts for the country.
1: आज कश्मीरी कवि, अनुवादक और आलोचक अब्दुल रहमान राही की जयंती है. उन्हें उनकी कविता संग्रह नवाज़-ए-सबा के लिए साल 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वर्ष 2004 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया. और आज गोविंद मुनीस, भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की पुण्यतिथि है. हम सबने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार जरूर देखी होगी, लेकिन उस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने और वो फिल्म आज कल्ट फिल्म बन गई है. हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी फिल्म का एक डायलॉग.
2: कहाँ है? वहीं चल के बैठो ना.
3: नहीं, पहले एक बात बताओ.
2: का?
3: तुम नाराज हो हमसे?
2: नहीं तो नाराज काहे होंगे?
3: तो फिर बात का है? आज इतनी बदली बदली का नजर आ रही हो. कितनी देर हुई हमें आके? पास आके बोलना बतियाना तो छोड़ो, देखा भी नहीं हमारी तरफ. इसलिए हमको लगा कि कल की बात से.
2: ऐसा काहे सोचते हो?
3: तो
2: का सबके सामने तुम्हारे पास आके बैठ जाती, लाज नहीं आती हमको का?
3: पहले तो नहीं आती थी. कभी सबके सामने बात नहीं करती थी या कभी पास नहीं आती थी.
2: तब की बात और थी, अब ये सब नहीं होगा हमसे.
1: गोविंद मुनीस ने एक और अभिनेत्री को ब्रेक दिया था, जिनका नाम आज हिंदी सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ नायिकाओं में शुमार किया जाता है, और वो हैं माधुरी दीक्षित, जिन्हें पहली बार गोविंद मुनीस ने फिल्म अबोध के लिए चुना था.
0: सो वी लिसन टू द डायलॉग फ्रॉम द मूवी. व्हाई डोंट वी गो अहेड एंड लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी एज़ वेल.

0: So, listeners, today we are also remembering Henry David Thoreau, the essayist, poet, and philosopher. Well, he is best known for his book, Walden. And this is a reflection upon simple living in natural surroundings, and his essay also, Civil Disobedience. And among his lasting contributions are his writings on natural history, philosophy, and in which he anticipated the methods and findings of ecology and environmental history, two sources of modern-day environmentalism. So his literary style interweaves close observation of nature, personal experience, pointed rhetoric, symbolic meanings, and historic lore as well, while displaying a poetic sensibility as well as attention to practical detail. He was also deeply interested in the idea of survival in the face of hostile elements, historical change, natural decay. His books, articles, essays, journals, and poetry amount to more than 20 volumes. And he advocated abandoning waste and illusion to discover life's true essential needs. I was telling you about Henry David Thoreau.
1: और आज पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि शिव कुमार बटालवी की भी पुण्यतिथि है। शिव कुमार बटालवी को उनकी रोमांटिक कविताओं के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जिनमें भावनाओं का उभार, करुणा, जुदाई और प्रेमी के दर्द का बखूबी चित्रण है। शिव कुमार बटालवी ऐसे शायर और कवि थे जो बहुत ही कम उम्र में इतना नाम कमा गए कि आज भी उनके लिखे गीत और कविताएं लोगों की जुबां पर हैं। उनके गीतों में बिरहा की पीड़ा इस कदर थी कि उस दौर की प्रसिद्ध कवियत्री अमृता प्रीतम ने उन्हें बिरहा का सुल्तान नाम दिया था।
2: की पुछते ओ हाल फकीरां दा।

0: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: With that, we thank you so much, listeners, for tuning in, and we hope you have a great day ahead.
0: Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन

0: इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो सीएनजी बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरहा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच

0: में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry following completion of electoral process. NIA charge sheets doctor, 2 others in ISIS linked bioterror plot to carry out mass poisoning. US President Donald Trump says Project Freedom to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for a short period of time. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Delhi Capitals by 8 wickets. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर कल भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने किया। उनके हमराह वियतनाम हुकूमत के बहुत से वजीरों और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतही वफद भी आया है। उनके साथ सरकर्दा ताजिरों का एक वफद भी है। सदर तोलाम का इस साल अप्रैल में वियतनाम के सदर के तौर पर चुने जाने के बाद भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वियतनाम के सदर तोलाम को आज राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट में महात्मा गांधी को गुलाए अकीदत नजर करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे और उनका तबादला किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वियतनाम के अपने हमनसब के साथ आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दौरे पर आए मेहमान से मिलने जाएंगे। वियतनाम के सदर आज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के जेर एहतमाम 56वां सप्रू हाउस लेक्चर भी देंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: भारत के इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस को इंतखाबात के बाद किसी भी किस्म के तशद्दुद को कतई बर्दाश्त न किए जाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। जमीनी सतह पर सूरतेहाल का जायजा लिए जाने के बाद जारी किए गए एक हुक्मनामे में कमीशन ने सख्त और फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया ताकि असेंबली इंतखाबात के नतीजे के बाद अमन कानून को बरकरार रखा जाए। इंतखाबी कमीशन ने रियासती इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो इंतखाबी नतीजे के ताल्लुक से डराने धमकाने, बदले या टकराव की किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। कमीशन ने हुक्काम को यह भी हिदायत दी है कि वो तमाम शहरियों, खुसूसन कमजोर ग्रुपों और सियासी कारकुनान की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं और हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की नुमाया मौजूदगी को बरकरार रखें। सीनियर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो चौकस रहें और रियासत में होने वाले किसी भी वाकये की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करें। ये हिदायत तशद्दुद के उन अलग अलग वाकयात के बारे में तशवीश के दौरान जारी की गई हैं जिनकी इत्तला नतायज के ऐलान के बाद दी गई थी, जो इंतखाबात के बाद रियासत के इलाकों में बार बार उभरने वाला मामला है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नई असेंबलियां तश्कील दिए जाने की गरज से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल के इख्तिताम पजीर होने और नई सरकारों की तश्कील के मकसद से रियासतों के गवर्नर्स और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान को भेजे गए हैं। इंतखाबी कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि नोटिफिकेशन का इजरा चुनाव नतीज के ऐलान के बाद एक कलीदी आईनी कदम है और इसके साथ ही इंतखाबी कमीशन की जानिब से नई असम्बलियाँ तश्कील दिए जाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। अहदेदार ने यह भी कहा कि कमीशन ने असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के दौरान सभी जाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया है। پولنگ سے لے کر ووٹوں کی گنتی تک پورا عمل قانونی فریم ورک کے مطابق آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منتخبہ نمائندوں کی حلف برداری اور نئی سرکاروں کی تشکیل کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ بھارت ایک جمہوریت ہے اور اس کا ہمیشہ احترام کیا جانا چاہیے۔ مغربی بنگال کی سبکدوش ہونے والی وزیر اعلی ممتا بینرجی کی مبینہ رائے زنی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے اس تبصرے کو انتشار پیدا کرنے والا قرار دیا اور ممتا بینرجی پر زور دیا کہ وہ اس قسم کے بیان دیتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جناب پاترا نے کہا کہ یہ تبصرے تشویش کا باعث ہیں کیونکہ ملک کی جمہوریت میں اقتدار کی منتقلی ہمیشہ پرم طریقے سے ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بی جے پی پر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ جمہوریت اور ملک کے آئین پر حملہ ہے۔
2: ممتا بینرجی جی نے جو کہا ہے اور جو کیا ہے، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ جو پرمپرا بھارت ورش کی تھی اس کے اوپر ایک آگھات، یہ آگھات لوکتنتر پر ہے، یہ آگھات بھارت کے کانسٹیٹیوشن ارتھات بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کے اوپر ہے۔ ممتا بینرجی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں اور ہم ریزگنیشن نہیں دیں۔
0: بی جے پی نے سینئر پارٹی لیڈر اور مرکزی وزیر امیت شاہ کو مغربی بنگال میں لیجسلیٹو پارٹی کے

0: किंग्स ने 17 ओवर्स और तीन गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा की तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि इन खित्तों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने यह भी बताया है कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और सिक्किम में भी शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इतवार तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान महकमे ने मगरबी राजस्थान में हफ्ते से पहर तक इक्का दुक्का मकामात पर शदीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी से छाया होने वाले आज के रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस के अलावा दीगर अखबारात ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले की सख्त मजम्मत किए जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। भारत और जापान का सेहत के शोबे में तआवुन को मजबूत करने पर जोर, इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस बयान को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल और आसाम समेत पूरे मुल्क को तरक्की देंगे। बीजेपी ने अमित शाह को मगरबी बंगाल और जेपी नड्डा को आसाम का मुबसर मुकर्रर किया है। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, DGP और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। NIA ने ISIS के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आप नाई हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

दिल्ली एनसीआर का मौसम हो, इलेक्शन के रिजल्ट्स हो या फिर स्टॉक मार्केट, हाल के दिनों में तीनों ने ही सरप्राइज देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कभी मौसम अचानक से करवट ले लेता है, कभी नतीजे उम्मीद से अलग आ जाते हैं और मार्केट भी अपने ही मूड में चलता दिखाई दे रहा है। शायद ये सब यही समझा रहे हैं कि जिंदगी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है और इसी में उसका मजा भी है। तो बस आप तैयार रहिए सरप्राइजेस के लिए और साथ ही पॉजिटिव भी रहिए, क्योंकि हर नया मोड़ कुछ ना कुछ सिखा जाता है। जुड़े रहिए 100.1 FM गोल्ड पर म्यूजिकल दिल्ली में उर्वशी के साथ।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिल्ली एनसीआर में अब गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, सिर्फ असहज ही नहीं बना रही है बल्कि कई जगह तो चिंता के कारण भी बन रही है। हीट वेव के खतरे को देखते हुए सरकार ने अब स्कूलों में 50 दिन के समर वेकेशन का ऐलान किया है ताकि बच्चों की सेहत पर असर ना पड़े। तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर सवाल ये आता है कि इतनी लंबी छुट्टियों को कैसे मज़ेदार बनाया जाए और प्रोडक्टिव बनाया जाए। पेरेंट्स की तरफ से हम इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई बच्चों के लिए ये वक्त हो सकता है कुछ नया सीखने का, जैसे कोई हॉबी, आर्ट, म्यूज़िक या फिर किताबों के साथ दोस्ती बढ़ाने का, थोड़ा खेल, थोड़ा क्रिएटिव टाइम और थोड़ा सा फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम बिताइएगा। थोड़ा सा अभी से एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि कब क्या कैसे कहेंगे करेंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। गर्मी से बचते हुए इस ब्रेक को आप खास और यादगार बना सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित

0: प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री खजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रम और राजनयिक वार्ता में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू करने की घोषणा की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai at the airport. He is accompanied by a higher-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the visiting dignitary. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. A report.
3: President of Vietnam Tho Lam will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. He will pay tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. India and Vietnam share historical and civilizational ties which have steadily deepened over the years. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: The Election Commission of India, or ECI, has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after

गुड मॉर्निंग ये कहते हुए कि हम जिनके पास रहते हैं मन से उनसे दूर होते हैं। डिजिटल दुनिया के जमाने में दूर बैठा कोई हमें बड़ा पासा लगता है। इतनी सिंपल सी चीज हम पता नहीं कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ म्यूजिकल जिंदगी में ये जो प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं ये हमें बड़े आसान लगते हैं, आराम से समझ में आ जाते हैं, कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो फिर है ना

वैसे बातें तो हमारे कान सुनते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लग जाती दिल को है। आप कहीं भी नहीं और हम समझ जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पर कभी आपने सोचा है कि हम बोलते बहुत हैं लेकिन समझते कम हैं। बातें मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन सिंपल बनाना वही असली हुनर होता है। अगर हम चाहें तो बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं और शब्दों को नहीं, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि हम साफ साफ बता दें, सीधा बोलो, छोटा बोलो और दिल से बोलो। लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी आसानी से मैं बोल पा रही हूँ, क्या ऐसा सचमुच में होता है? नहीं ना। और वही बात याद हमें रह जाती है जो हमें समझ में नहीं आती, तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि सही सही साफ साफ बोलने की। और उसके बाद क्या होगा, एक कहानी होगी और वो कहानी हमें हमेशा याद रहेगी, बिल्कुल इस तरह से।

0: और अब हमें प्यार हो गया है AI से। बदलाव दुनिया में हमेशा से अनवरत है, मतलब ये तो चलता ही रहेगा। सही कहा है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। पता है ना, जब पहली बार कैलकुलेटर्स आए थे तब मैथ टीचर्स ने इसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा था भाई ऐसे नहीं चलेगा, नई टेक्नोलॉजी शायद हमें नुकसान पहुँचाए, ये डर हमेशा से हमारे साथ बना रहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कैलकुलेटर्स अब हमारी ज़रूरी चीज़ बन गई है। तो कहीं आगे आने वाले दिनों में AI के साथ भी तो ऐसा नहीं होगा?
1: मेरा दीवाना कभी अपना साल की कभी भी

लेकिन तब क्या हो जब कोई बेगाना अपना हो जाए। आखिर जेन जी सोशल मीडिया का इतना दीवाना क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रियल कनेक्शन की कमी की वजह से? लाइक, शेयर एंड कमेंट, इन सब के मिलते ही दिमाग में ना डोपामाइन रिलीज होता है जो बार बार फोन की तरफ खींचता है, और इन सब का असर हमारी सेहत पे भी पड़ता है। मतलब कि हमें स्ट्रेस होता है, अकेलापन फील होता है, नींद नहीं आती। सोशल मीडिया वैसे अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक वो रियल लाइफ कनेक्शन की जगह ना ले ले। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो इसका मतलब कभी कभी कुछ और भी होता है, मतलब ये ही कि हम कुछ और होना चाहते हैं जो कि हम हैं ही नहीं। ये है म्यूजिकल दिल्ली की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे। वेलकम है आपका।

अब इतना शुक्रिया शुक्रिया है तो फिर हम तो थैंक्स बोलेंगे ही। वैसे आपको पता है म्यूजिक इज मोर पावरफुल देन जितना आप सोचते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि संगीत दर्द कम करता है, खुशी देता है। सबसे सिंपल आदत है ये गाना सुनना, लेट इट गो। अगर दर्द जाता है तो जाने दीजिए, रिग्रेट भी चला जाएगा, गुस्सा है वो भी चला जाएगा, एंजाइटी भी चली जाएगी, हेट भी चली जाएगी, डर भी चला जाएगा, सब उड़े उड़े चले जाएंगे एक एक करके। लेकिन हाँ, चले जाएंगे हमेशा के लिए नहीं, फिर दोबारा आ सकते हैं, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए तो बंदा रिलैक्स हो ही जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे म्यूजिकल दिल्ली की है ये। अगर आपको थोड़ा मन करे पढ़ने लिखने का तो मैं कुछ बताऊं, वो ये कि DDAA के पुस्तकालय में रजिस्ट्रेशन का मौका आपको फिर से मिल सकता है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिफ्ट के हिसाब से किताबों को पढ़ने और प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए चांस मिलेगा। तो DDAA की वेबसाइट में जाइए, जाकर के वहां पे देखिए और उसके बाद आप आवेदन कर भी सकते हैं।

फिलहाल तो आप इश्क कीजिए खीरे और ककड़ी से, दही से, सब्जों के बीज से, पुदीना या फिर हरी सब्जियां, तरबूज और खरबूज, नारियल पानी, बेल, लौकी, तुरई, टिंडे से, कोकम जामुन, रसबरी और फालसे से। और इन सब चीज़ों से फासला बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको गर्मी से बचाएंगी।

0: जाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।

लेकिन अब तो आप खुश होंगे क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो मौसम है AQI इन दिनों बहुत अच्छा है, जो 2023 के बाद दिल्ली की हवा

इतनी साफ हुई है और ये सब कुछ हुआ है पानी की बूंदों से। लेकिन जब पानी की बूंदें पड़ती हैं अच्छा बड़ा लगता है, पर जिस आम को हम खास बनाना चाहते हैं गर्मियों की सीजन में, जी हाँ वही आम फ्रूट, वो इस बार इतनी आंधी पानी में कहीं सारे झड़ न जाएं और उसके बाद हम आम को कहें कि हाँ भाई ये आम सचमुच में खास हो गए। वैसे हम सब ना अच्छी दुनिया चाहते हैं, अपने आस पास सब कुछ अच्छा

के भापने में हमेशा से हम सोचते हैं कि फूल खिलें, तितलियां उड़ें, चिड़ियां उड़ें, हरे पेड़ हों, प्यार में डूबे हुए दिल हों, और सब के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं हम कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कि हमको तुम्हारी चाह हो और तुमको हमारी चाह हो, सबके दिल में हमेशा संवेदना का दाह हो। हा हा, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे ये है म्यूजिकल दिल्ली।

वक्त कहता है कि थोड़ा सा ठहर जा, लेकिन दिल कहता है कि नहीं नहीं निकलो चल पड़ो। जिंदगी की ये कशमकश देखते देखते टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:47 और ठीक 40 सेकंड। तो भाई बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास। अपने दोस्तों को लीजिए और निकल जाइए, जैसे कि बीकानेर हाउस, वहाँ पे आप जाएंगे तो आर्ट एग्जीबिशन आपको मिलेगा। दक्षिण दिल्ली और सेक्रेट डायलॉग पंडारा रोड पे चित्रकार राजा रवि वर्मा के रेयर प्रिंट्स देखने का आपको मौका मिल सकता है। उठाइए अपने दोस्तों को, बुलाइए तो सही, क्योंकि ये जो दोस्त होते हैं ना बड़े कमाल की चीज़ है ये।

0: वादा होता ही इसलिए है कि वो भूल जाएं हम, कहते तो ऐसे ही हैं, और कई बार हम बहुत मूल्यवान चीज़ें इतनी अच्छे से छुपा के रख देते हैं और ख़ुद भी नहीं ढूंढ पाते। वादा भी शायद उसी में से एक है। और अब हम आपको बताते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब और कमज़ोर परिवारों को सालाना लगभग 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। और इसके बारे में और भी जानिए आप, देखिए तो सही कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे आ सकती हैं। और बात अब ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इग्नू ने असाइनमेंट जमा करने की तिथि को बढ़ा दिया है, इसलिए अगर आप और इसके बारे में जानकारी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इग्नू की वेबसाइट पे जाइए और जा करके देखिए। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों की बात की थी, दोस्त अच्छे मौसम में और ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि दोस्त उम्मीद होते हैं उन दिनों की, जिन दिनों हम पहाड़ से कूद जाने के लिए बस समझ नहीं आता क्या करें, या फिर दरिया में डूब जाने का मन करता है। दोस्त चाय है, दोस्त कॉफी है, प्यार है, चाहत है, एक कहानी है। आप आगे तो बढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कितनी अच्छी बातें करते हैं इस पे FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। ये है म्यूजिकल दिल्ली आपके लिए।
1: सब लोग देखेंगे तो

0: अपना ध्यान रखिए हर तरह से, तन मन धन तीनों तरह से, तब जाके बैलेंस कुछ बैठेगा।
1: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ?

अपनी महफिल में जिसे चाहें भुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

0: आइएगा जरूर। अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आया है। इस वर्ष अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति तो लैम की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
1: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों की रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क बढ़ेगा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल कर सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। IPL क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President of Vietnam Tho Lam was accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The Vietnamese leader was received by President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at Rashtrapati Bhavan. Union ministers including Piyush Goyal, Ashwini Vaishnav and Dr. Jitendra Singh were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Vietnamese President in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the Cabinet's approval of railways projects covering 19 districts across Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. In a series of social media posts, Mr. Modi said that the projects will enhance connectivity and improve operational efficiency while boosting the country's infrastructure and economic growth. Mr. Modi also appreciated the Cabinet's decision to increase the strength of judges in the Supreme Court from 33 to 37. He said that the decision will strengthen the judicial infrastructure of the nation and will ensure speedy justice for people. The Election Commission of India has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after reviewing the situation on the ground, the Commission stressed the need for strict and immediate action to maintain law and order following the Assembly election results. The Election Commission has issued notifications for the constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry following the completion of the electoral process. The notifications have been sent to governors and lieutenant governors of the states and union territories, formally marking the end of the election cycle and setting the stage for the formation of new governments. In Tamil Nadu, TVK

0: which has emerged as the single largest party in assembly elections, is likely to stake its claim to form a new government in the state. The party said its leader, Joseph Vijay, will meet the governor, Rajendra Vishwanath Arlekar, today and stake TVK's claim to form a new government in the state. The National Investigation Agency, NIA, has filed a charge sheet against three people, including a doctor, for their involvement in an ISIS-linked conspiracy to carry out mass poisoning in public spaces using a biological toxin. Working under the guidance of their Islamic State-linked foreign-based handlers, the accused had operated in a coordinated manner to recruit vulnerable youth radicalized by the handlers to support jihad and spread terror through prohibited weapons and bioterrorism. In Punjab, two explosions outside army and BSF premises in Amritsar and Jalandhar last night have put the security forces on high alert, although no casualty has been reported from both the places. In Amritsar, a blast occurred outside BSF campus adjoining army establishments in well-guarded Khalsa cantonment area. In Jalandhar, a blast occurred near the heavily guarded main gate of the frontier headquarters of the Border Security Force. Police had cordoned off both the places and investigations are on. The second employment working group meeting under India's BRICS presidency will begin in Thiruvananthapuram today. The two-day meeting will bring together representatives from BRICS member states to deliberate on labour, employment and worker welfare. US President Donald Trump has announced that Project Freedom, a mission to guide stranded vessels through Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time. In a social media post, Trump said that great progress had been made towards reaching a comprehensive agreement with Iranian representatives to end the ongoing conflict. The US President's announcement came as Secretary of State Marco Rubio said the initial US-Israeli offensive in Iran, Operation Epic Fury, is over after achieving its objectives. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Punjab Kings at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. this evening. Yesterday, Chennai Super Kings defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashvani se Vishv Darpan ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। अमेरिका और खाड़ी देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया और ऑस्ट्रेलिया ने अपना ईंधन भंडार बढ़ाने के लिए 7 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर के ईंधन सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री तो लाम का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान को कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रम और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
3: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कीमतों में गिरावट के बाद भी व्यापक तेल बाजारों में अभी भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। अमरीका और खाड़ी देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में ईरान से जहाजों की आवाजाही में बाधा न डालने को कहा गया है। ऐसा न करने पर ईरान को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर जलमार्ग को नियंत्रित करने की कोशिश करके वैश्विक व्यापार को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। ये जलमार्ग दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नए प्रस्ताव में बल प्रयोग की भाषा अब हटा ली गई है और मुख्य रूप से प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बीच अमरीका प्रस्ताव पर वीटो न करने के लिए चीन को मनाने का प्रयास कर रहा है। अगले सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात की संभावना है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक चुनावी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत और अमरीका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं और सिर्फ आखिरी चरण पार करना बाकी है। भारत और अमरीका ने 2 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते का ढांचा घोषित किया था और 7 फरवरी को इसका मसौदा जारी कर दिया गया था। पिछले महीने भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस समझौते पर चर्चा के लिए अमरीका गया था। समझौते के तहत भारत अमरीकी बाजारों में बेहतर पहुंच चाहता है। दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। समझौते के अनुसार अमरीका भारत पर लगाए गए शुल्क को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ है। साथ ही रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय वस्तुओं पर लगे 25% शुल्क को हटा लिया गया है और बाकी शुल्क को भी 18% तक कम करने की योजना है। इस बीच भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $10 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वाशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने आगामी बजट प्रस्ताव में राष्ट्रीय ईंधन

भंडार को बढ़ाने और एक स्थायी सरकारी स्वामित्व वाला ईंधन भंडार स्थापित करने के लिए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर के ईंधन सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि इस योजना में लगभग 1 अरब लीटर सरकारी स्वामित्व वाला ईंधन भंडारण शामिल है, जो कम से कम 50 दिन की ईंधन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। इसका उद्देश्य देश को आपूर्ति में व्यवधान से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया अपने ईंधन का लगभग 80% आयात करता है और पश्चिम संघर्ष के दौरान उसे कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस भंडार के निर्माण में लगभग 2 अरब 11 करोड़ डॉलर खर्च किए जाएंगे। ईंधन कंपनियों को भी अपनी भंडारण क्षमता को 30 दिन से बढ़ाकर अब लगभग 40 दिन तक करना होगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंचा है। ये यात्रा 9 मई तक चलेगी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हैं। ये नेता ताइवान की सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को अब कुछ समय के लिए रोका जाएगा। अमेरिका और खाड़ी देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना ईंधन भंडार बढ़ाने के लिए 7 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर के ईंधन सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

स्वागत है आपका दिल का मेल बॉक्स में और आप सब के सब हाजिर हो जाइए। आपकी पसंद ये रही हमारे पास FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। पहला गाना आखिरी दांव फिल्म से जो आई थी 1958 में।

10:34 दिल का मेल बॉक्स है ये और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और साथ में इन्होंने बड़ी अच्छी बात भी बोली है कि गर्मी की तपन हमें धैर्य सिखाती है और बरसात की फुहारें हमें सुकून का एहसास दिलाती हैं। लेकिन ये गर्मी और बरसात से मुझे याद आया कि गले का भी खास ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें बोलना जो होता है ना, आपस में बड़ी सारी बातें करनी होती है। और आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम नगर उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी हैं ये, साथ में शकुन है, आरुषि हैं, ओशिका हैं, आदित्य है और अंजलि है। ये इन सब की चॉइस है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप हमें मेल भेजिए।

लेकिन आपका नाम तो है, ये है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गाना पसंद करने वाले कंवर कॉलोनी वड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई।

0: नाल साहब, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिल का मेल बॉक्स, आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल पे। ये है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। मतलब मुझे भी सारे नाम ना रिदम के साथ याद हो गए। कितनी अच्छी बात है कि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्राजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। अब आप कहेंगे कि क्या इन सब लोगों ने एक ही गाने की चॉइस की है? नहीं, लेकिन इन सब में एक ने इस गाने को पसंद किया है। फिल्म का नाम

ठीक इसी तरह से ना कुछ कुछ आपकी ऐसी लाइंस होती हैं जो बड़ी पसंद आ जाती हैं, मतलब कैमरा नहीं है तो मैं आपको बताती कि कितनी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे खिल जाती है, और ऐसी ही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी आती होगी। ये है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे, और आप हमें मेल करते हैं fmgoldaardelhi@gmail.com, जिसमें आप बताते हैं अपनी चॉइस का गाना और अपना नाम, साथ में अगर कुछ कह दें तो अच्छा लगेगा। जैसे कि किशोर कुमार की आवाज़ में सुनना चाहा है और शुक्रिया करते हैं गौरी शंकर नांगलोई से, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला है इंदु बेटा राम राम। मतलब कितने, जब हम कोई रिश्ता किसी के साथ बना लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं वो आते हैं कि आरजे मैडम या बहुत होगा तो दीदी कैसी हैं आप। थैंक यू वेरी मच, आपकी जो चॉइस है वो बिल्कुल यहाँ पे हम लेकर के आएंगे। और मुल्लापुरा दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभ चंद हैं, साथ में हमें किसी ने कहा है प्यारी बहना आदरणीय प्रिय प्रसारक दीदी को बहुत बहुत नमस्कार, कहते हैं कि किसी भी सदाबहार नगमे में हमें शामिल कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी पसंद बन जाती है कई सारे लोगों की पसंद। राशिद हुसैन अंसारी हैं, नसरीन है, नौरीन है, आसना है, मोहम्मद कैफ अंसारी हैं, और दिल्ली का मौसम बड़ा सुहाना है ये कहते हैं राजेंद्र जटौलिया, उषा जटौलिया, चारू जटौलिया, दिल्ली नांगलोई से। और ये गाना

सुरेश नारंग सोनाली रंग पूछते हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। सारे गाने आपके लिए हैं, सारे नंबर्स भी आपके लिए हैं। धर्मेंद्र छिपा, कमल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़ और बहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। आपका गाना आएगा, आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: से बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: और लीजिए, मैं आ गई। यह है दिल का मेल बॉक्स और यह है आपका मेल। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, और साथ में है सिमरन मुखी, अनीता मुखी और सुदर्शन मुखी साहब सोनीपत से, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। और हम हैं आकाशवाणी दिल्ली से FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज से इंदु आपके लिए, और आपकी मेल्स होती हैं हमारे पास हमेशा। और अगला नाम है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। साथ में कहते हैं कि भाई मेरठ कैंट दिग्दर्शन से कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई, इनका गाना लेकर के हम आए सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में आपके लिए। अच्छा, बाकी लोग जो सिर्फ हमें सुनते हैं और हमें मेल नहीं करते, वो भी अपनी चॉइसेस हमें बताएं। fmgold@gmail.com पे हमें मेल करें और बताएं कि कौन सा गाना उनको सुनना अच्छा लगता है, और हर गाने के साथ जो उनकी अटैचमेंट है उसकी कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी ही ना, वो भी बताइए। वो कहानी कौन सी है जो हम बताएं औरों को भी।

नमस्कार, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु संस्कृति पौरुष और प्रताप वर्मा महावीर कॉलोनी सोनीपत से, साथ में हैं हमारे साथ बिहारी कॉलोनी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा, और ये कहते हैं कि भाई तहे दिल से शुक्रिया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, गंज डंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, और साथ में हमें किसी ने कहा है कि भाई आपको क्या अच्छे नहीं लगते हम ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वक्त वक्त, और आप कल भी तो मिलेंगे दिल का मेल बॉक्स में, इसी तरह से आप मेल भेजते रहिए, अपनी बात बताते रहिए, अपने गाने हमें ज़रूर बताइए, तभी तो हम लेकर के हाजिर हो जाएंगे। ताज मोहम्मद हैं, जय हैं, और आफ्ताब अंसारी हैं, बोधराज खोदवाल हैं, तुलसी मस्कीन हैं, जॉन दी कैस्ट्रियो भी हाजिर हो चुके हैं।

0: ये तो बिल्कुल वही वाली बात है ना कि दिन में इतनी धूप होती है और शाम होते ही मौसम बदल जाता है। फिलहाल समय है ये समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति का आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जारी होने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किया जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया।

0: किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भाजपा के पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। पंजाब और अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President of Vietnam Tho Lam was accorded a ceremonial welcome at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The Vietnamese leader was received by President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at the Rashtrapati Bhavan. Union ministers including Piyush Goyal, Ashwini Vaishnav and Dr. Jitendra Singh were also present on the occasion. Prime Minister Modi will hold talks with the Vietnamese President in New Delhi this afternoon. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. We have a report.
2: After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House Lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. President Tho Lam's visit coincides with the special occasion of the two countries marking their 10th anniversary of the elevation of relations to a comprehensive strategic partnership agreed during the visit of Prime Minister Modi to Vietnam in 2016. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has welcomed the Cabinet's approval of railways projects covering 19 districts across Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. In a series of social media posts, Mr. Modi said that the projects will enhance connectivity and improve operational efficiency while boosting the country's infrastructure and economic growth. Mr. Modi also appreciated the Cabinet's decision to increase the strength of judges in the Supreme Court from 33 to 37. He said that the decision will strengthen the judicial infrastructure of the nation and will ensure speedy justice for people. The Election Commission has issued notifications for the constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry following the completion of the electoral process. The notifications have been sent to governors and lieutenant governors of the states and union territories, formally marking the end of the election cycle and setting the stage for the formation of new governments. The Election Commission ECI has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after reviewing the situation on the ground, the Commission stressed the need for strict and immediate action to maintain law and order following the assembly election results. In Tamil Nadu, actor turned politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam, TVK, which has emerged as a single

वेलकम है आपका। जब भी कहीं हम घूमने जाते हैं तो अपने आप से सवाल करते हैं कि आखिर हम वहां क्यों जाएं, क्यों क्यों क्यों। इस तरह से इकोसिस्टम हमारा शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको अमरकंटक ले जाऊंगी। तस्वीर में आज अमरकंटक है। और अमरकंटक क्यों जाएं? क्योंकि अमरकंटक मध्य प्रदेश का तीर्थराज कहा जाता है इसको, जो कि पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के मिलन की एक जगह है। और उसके अलावा बहुत कुछ है, जैसे कि इसके ऊपर अगर आप कविता करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं कि बरसों से नर्मदा के जल में एकटक देख रहा है अपना चेहरा ये शहर, इसके सपने विंध्याचल की नींद में टहल रहे हैं। वसंत में होता है ये शहर एक बार फिर से वही बरसों पुराना आम्रकूट, जिसकी पगडंडियों पे छूटे हैं कालिदास के पांव के निशान। और आज भी बहुत सारे लोगों का करता है ये शहर इंतजार बाहें फैलाए हुए। तो चलिए अमरकंटक चलते हैं, और हमारे पास कई सारी वजह हैं इस शहर को घूमने की। स्वागत है आपका तस्वीर में।

ये हमारे लिए ही है प्रकृति और आध्यात्म का एक बहुत ही अच्छा अद्भुत संगम अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, बहुत ही खास जगह है, बहुत सुंदर है। और इसके अलावा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की मिलन बिंदु जिसको कहते हैं मैकाल पहाड़ियों पर स्थित है। ये पवित्र नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। जाहिर है अब इतनी सारी नदियां होंगी तो फिर कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस शहर को, उस नदी को, उस झरने और उस तालाब की कहानियों को जानना। अमरकंटक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नर्मदा कुंड और कई दूसरे प्राचीन मंदिर हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से ही जीवनदायिनी नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और ये भी एक कमाल की बात है। कपिलधारा जलप्रपात है। नर्मदा नदी के उद्गम के बाद ये 100 फीट ऊंची चट्टान से गिर करके कपिलधारा पूरा वाटरफॉल बनाती है जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके अलावा अगर अभी भी आप ये सोचते हैं कि हम अमरकंटक क्यों जाएं? नहीं, अब तो आप ये कहेंगे कि हाँ, अगली बार हम अमरकंटक ज़रूर जाएंगे। तस्वीर है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जिस पे हर बार किसी न किसी प्यारी सी जगह के बारे में हम आपको बताते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक जगह हम ज़रूर हर बार जाते हैं। कितना अच्छा हो कि आप इस बार ऐसा प्लान बनाएं कि जाना है एक नई जगह, देखना है एक नई जगह को, और उसके बाद क्या पता वो आपकी फेवरेट जगह बन जाए, है ना। यह है अमरकंटक, तस्वीर में आपके लिए।

पैसे जमा करिए, नहीं तो फिर जिंदगी किश्तों में यूं ही कट जाएगी। घूमिए, क्योंकि घूमना हमारे को विस्तार देता है। घूमना हमें नए विश्वास करना सिखाता है और कई सारे विश्वासों को तोड़ना भी बताता है। घूमना हमें पीस देता है, टेंशन से दूर रखता है और हमारी पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा विकास देता है। काफ़ी अच्छा है घूमना। तो फिर आप हैं अमरकंटक में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कपिल धारा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है, माई की बगिया है और मान्यता ये है कि नर्मदा माँ के लिए फूल खिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही शांत और हरा भरा एक बागीचा है। कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर हैं, जो कलचुरी राजाओं द्वारा बनवाए गए 12वीं शताब्दी के मंदिर हैं और पालेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन है। सोलमुड़ा है, ये सोन नदी का उद्गम स्थान है, जहाँ से घने जंगलों और घाटियों का जो नज़ारा है ना, बहुत सुंदर है, सचमुच में बहुत सुंदर है।

गाना और मुस्कुराना, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बार होता है और वो जब हम घूमने जाते हैं। कितना अच्छा है ना। तो फिर आप हैं अमरकंटक में, यहाँ पे श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर देखिए, कल्याण आश्रम जाएंगे, शंभुधारा और कलचुरी काल के पुराने मंदिर तो आपने देख लिए, हमने बता दिया। और सबसे अच्छा वक्त है यहाँ पे जाने का अक्टूबर से फरवरी, यानी कि सर्दियों में जब यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा रहता है। पहुँचेंगे कैसे? सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन है छत्तीसगढ़ है, जो लगभग 42 किलोमीटर दूर पेड़ा रोड पर है। तो फिर वहाँ से आप होकर के आगे बढ़ सकते हैं। श्री यंत्र मंदिर भी है ये यहाँ पे, और जिसकी जो वास्तुकला है बहुत ही अनूठी है। योग माया शक्तिपीठ के लिए ये फेमस है, जिसका निर्माण केवल गुरु पुष्य नक्षत्र में ही किया जाता है ऐसा माना जाता है। वो तो जब आप देखेंगे तब जान ही जाएंगे कि कौन सी चीज़ कितनी, क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट है।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

लिए कहा जाता है कि निश्चल अविरल छल छल करती अमरकंटक शिखर से वो निकलती नर्मदा नदी, जिसके दर्शन के लिए कई लोग अमरकंटक हर बार जाते हैं।

है गुल बकावली के फूलों में कालिदास के हाथों का स्पर्श। अमरकंटक जाइए, वहाँ की प्रकृति और आध्यात्म दोनों आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो जाहिर है वहाँ का खाना भी खाएंगे, दाल बाफला खाइए, पोहा कढ़ी और भुट्टी की कीस बहुत ही मेन यहाँ का फूड है। इसके अलावा सरसों का साग, साबुदाने की खिचड़ी और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है एकदम फ्रेश ताज़ी ताज़ी जले

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: ये है अमरकंटक तस्वीर में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अमरकंटक, जिसको 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवाद और कवि कबीर ने अमरकंटक में ध्यान किया था, और आपका ध्यान इस गाने में लगा के देखिए तो सही, पूरी की पूरी तस्वीर नजर आएगी आपको।
2: तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात,
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। चलो कहीं

घूमने चलते हैं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ होता है? तो फिर घूम के आइए अमरकंटक। अमरकंटक के पास जो सबसे पास वाला एयरपोर्ट है वो जबलपुर है, जो लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पे है। ट्रेन से आप जाएंगे तो पेंड्रा रोड अमरकंटक का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे। उसके अलावा अनूपपुर रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से 72 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से बड़े आराम से ये जुड़ा हुआ है। पेंड्रा रोड, बिलासपुर और शहडोल से यहाँ के लिए आपको बराबर से बसें मिल जाएंगी। अब ज़्यादा मत सोचिए, अमरकंटक का प्लान बनाइए। मौसम अगर घूमने का मन करे तो हमेशा होता है। जी हाँ, ये तस्वीर अमरकंटक की थी, आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। fmgold@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, और कौन सा शहर है जिसके बारे में जानना चाहते हैं। हमने तो आज तस्वीर दिखाई आपको अमरकंटक की।

गिले शिकवे छोड़ने हो तो उसके लिए घूमना पड़ता है। फिलहाल तो समय हो रहा है समाचारों का और मैं तो चली। आज की नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोस ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेइचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

London. साथियों, खेल की दुनिया हो, सामाजिक उद्यमिता की बात हो या प्रकृति का सरोकार, सब में एक रूपता इस बात की है कि जब भी कोई बड़ी सफलता हासिल होती है तो उसके पीछे टीम काम करती है। जैसे उड़ते हुए पंछियों के झुंड लगातार दिशा निर्देश के मोहताज नहीं होते, बल्कि पूरी टोली के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हर पक्षी हवा की दिशा समझता है, ताल को महसूस करता है और समूह के साथ सरलता से उड़ता जाता है। और यही है सच्ची टीम भावना, यानी कार्य संस्कृति की खूबसूरती। नमस्कार, घर आंगन का सफर है आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी मनीषा बोस के साथ। हमारे कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज और यूट्यूब चैनल AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी सुन सकते हैं आप। तो आप सभी का सत्कार, ढेर सारा प्यार। और ये सच है साथियों कि अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन टोली साथ हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है, और उसे ही कहते हैं टीम भावना। अदृश्य धागे की तरह है जो आपस में बांधकर संस्कृति की प्रेरक शक्ति बन हम सबको दिशा देती है। सोचिए, क्रिकेट का मैच, परिवार की जिम्मेदारी या ऑफिस का प्रोजेक्ट, जीत सिर्फ स्टार खिलाड़ी की नहीं होती, बल्कि पूरी टीम के तालमेल से जीत मिलती है। इसीलिए टीम भावना में मैं से ऊपर उठकर हम बनना हमें सिखलाया जाता है, है ना। हम जानते हैं कि एक ईंट दीवार नहीं बना सकती, लेकिन कई ईंटें मिलकर मजबूत घर को शक्ल जरूर देती हैं। टीम वर्क, जिससे ना सिर्फ उत्पादकता बढ़ती है बल्कि संचार, नवाचार और समस्या का समाधान भी सरलता से मिलता जाता है, है ना? क्योंकि टीम वही जीतती है दोस्तों जिसमें हर सदस्य दूसरे की ताकत बनता है, जैसा हमारा ये रेडियो परिवार, हम और हमारे श्रोताओं का ये प्यारा सा संसार।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में रंगोली फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। और दोस्तों, आज की तारीख भारतीय इतिहास में ख़ास है, क्योंकि आज स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले और स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी की आज जयंती है। उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही आज का दिन ख़ास इसलिए भी है क्योंकि कोल्हापुर के दूरदर्शी मराठा शासक और महान समाज सुधारक महर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज की पुण्यतिथि का दिन भी है। आज 6 मई 1922 को पंचतत्व में विलीन इस मराठा शासक ने दलितों, पिछड़ों के उत्थान और उनके शिक्षा के लिए काम किया। सच्चे प्रजावत्सल समाज सुधारक इस शासक को राजर्षि की उपाधि भी इसीलिए दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपनी पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब आपसे कहना चाहती हूँ, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की वो पंक्तियाँ जो हम सभी के लिए हमारे जीवन में बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं, और वो कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ बने रहें FM गोल्ड 100.1 पर। घर आंगन में चलते रहें, गुनगुनाते रहें हमारे साथ।

साजन बिना सुहागन। इस फिल्म से आप यशोदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत सुन रहे थे। दोस्तों, FM गोल्ड 100.1 पर घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम से जुड़कर आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमसे, ये सब बातें हम भी जानना चाहते हैं। और ये सभी बातें आप हमसे कह सकते हैं अपने संदेश के माध्यम से, और संदेश के लिए आपके पास हमारा जो रास्ता है वो रास्ता होता है मेल का, जो है fmgoldga@gmail.com पर। तो यहाँ पर आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें, और आपसे कहना चाहती हूँ जिस तरह बोलना एक कला है उसी तरह सुनना भी एक कला है, और वो कला हमारे श्रोताओं को बखूबी आती है ना। हम दिन भर कितने लोगों को सुनते हैं दोस्तों, और सच में ध्यान से कितने को सुनते हैं ज़रा सोचिएगा। और जानते हैं, हम जो सुनते हैं उसका 25% भी याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम सुनते हुए भी सोच रहे होते हैं कि अब क्या बोलना है। क्यों, सच कहा ना मैंने? इसीलिए सुनने और ध्यान से सुनने में ना बहुत अंतर होता है। और ध्यान से सुनने में हम सिर्फ कान को नहीं बल्कि अपने मन को, मस्तिष्क को और हमारी संवेदनाओं को भी जोड़ते हैं। अध्ययन भी बताते हैं साथियों कि अच्छे श्रोता वो होते हैं और जो सुनते हैं उनमें नेतृत्व के गुण आ जाते हैं, और उनमें संबंधों को अच्छे से बना के रखना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि कई बार समाधान बोलने में नहीं अच्छे श्रोता बनने में छिपा होता है। इसीलिए पहले सुनिए फिर समझिए, क्योंकि हर कहानी सुनी जाना चाहती है। जैसे आप हमारे अच्छे श्रोता साथी हैं और आप हमें अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और फिर अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं।

यशुदास और हेमलता की ये सुरीली सी आवाज़ में आप सुन रहे हैं चिच्चोर फिल्म का ये गीत। और साथियों, एक कहावत है कि हुनरमंद हर जगह पूजा जाता है, और बात हम कर लेते हैं हुनर की। चली है तो हुनर और कौशल से भरपूर उस ताकत की, जहां हुनर ऑनलाइन है और अवसर ग्लोबल। जी हाँ, बदलाव की असली चाबी है डिजिटल स्किल्स में। कंप्यूटर, एआई, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन उद्यमिता जैसी क्षमताएं भारत के हर युवा को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही हैं। तकनीकी युग में मोबाइल फोन जो सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है दोस्तों, बल्कि रोजगार का साधन भी बन रहा है ना। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजाइनिंग, डेटा एंट्री जैसे डिजिटल कौशल के कार्यों से घर बैठे भी कमाई के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। डिजिटल स्किल्स जिसे सीखने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता दोस्तों, बस आपका फोन, इंटरनेट और सीखने का जज्बा। और जानते हैं, इसके लिए हमारी सरकार की स्किल इंडिया डिजिटल पहल ने स्किलिंग, रोजगार और उद्यम

जनता को एक डिजिटल मंच भी दिया है। सरकार ने डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कई आधिकारिक मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए हैं, जहां फ्री सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसे कार्यक्रम AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत बना रहे हैं। और स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी कि SIDH ऐप, दीक्षा ऐप, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, स्वयं प्लेटफॉर्म, फीचर्स, कर्मयोगी और ई पाठशाला जैसे लर्निंग ऐप हैं, जहां आप सर्च कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी ले सकते हैं और सीखने की दिशा में अपना अगला कदम भी आप बढ़ा सकते हैं।

आशा भोसले की आवाज़ में नरम गरम फिल्म से आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत। और हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे श्रोता साथी भी हमारे साथ हैं जो सुनना चाहते हैं अपनी बात जिसको उन्होंने हम तक पहुंचाया है। और ये पहला संदेश है मेरे पास गौरीशंकर नांगलोई जी का, जिन्होंने कहा है राम राम जी, राम राम।

आपको भी, और उन्होंने कहा कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है और शिक्षाप्रद जानकारियां उन्हें मिल रही हैं। सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांतिनगर सोनीपत से। कार्यक्रम उन्हें भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपनी एक बात कही है कि बोलना कला है तो सुनना भी एक कला है। सुनने के लिए प्रभु ने कान दो दिए हैं और बोलने के लिए मुंह एक दिया है। जी बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हमें सुनना ज़्यादा गौर से चाहिए। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं, वो हैं उग्रसेन यादव जो नई दिल्ली से हैं। कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं, वो हैं नवीन भाटिया जी मोतीनगर दिल्ली से। कार्यक्रम उन्हें भी अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम के गीत भी उन्हें अच्छे लग रहे हैं। जी हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमें सुन रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। घर आंगन कार्यक्रम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेरों जानकारियां, ढेरों बातें, और ऐसा ऐसा काम, ऐसी बातें, ऐसी जानकारी जिसको सुनकर आपके जीवन में भी हो जाए कायाकल्प। दोस्तों हमारे समाज में चारों तरफ जो बयार बह रही है वो लैंगिक समानता के अधिकारों को और पुख्ता बनाने के लिए चल रही है। देखो ना, आज जो सारा क्षेत्र है उसमें आधी आबादी जो है उसका सशक्त हस्ताक्षर हमें दिख रहा है। क्या कहते हैं आप? और जानते हैं नारी शक्ति की परिभाषा को नया आयाम देने वाले लोगों में एक नाम आता है जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और वो नाम है स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, साहित्यकार और महिला अधिकारों की प्रखर प्रहरी डॉक्टर हंसा मेहता का। पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली वे भारत की संविधान सभा की उन चुनिंदा 15 महिलाओं में शामिल रही हैं जिन्होंने नए भारत की नींव गढ़ी। कैसे बताऊं आपको? दरअसल 1947 से 1948 के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हुए घोषणा पत्र में उन्होंने ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को बदला कर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल करवाया, यानी अधिकार सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं हर इंसान के लिए समान है। शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय डॉक्टर हंसा मेहता के लिए मिशन थे। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस से जुड़कर महिला अधिकार चार्टर तैयार कर उन्होंने भारत में बराबरी की सोच को नई दिशा दी। उनकी दूरदृष्टि ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में महिलाओं को उनकी पहचान और अधिकार से जोड़ा। और ये सच है दोस्तों कि नारी कलम उठाकर इतिहास बदल सकती है। और तब तो हंसा मेहता एक थी, लेकिन आज देश के कोने कोने से कई हंसा मेहता, यानी कई हंसा हैं जो अपने हस्ताक्षर गढ़ रही हैं। तो उम्मीद है इस जानकारी ने आप में भी जोश बढ़ाया होगा। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और ये खूबसूरत है।

पैगाम इस फिल्म से आप सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में इस खूबसूरत से नगमे को सुन रहे थे। और दोस्तों, गर्मी का जो मौसम है वो हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश कहीं हो रही है, कहीं बादलों ने अपना थोड़ा सा रंग दिखाया है और हमें थोड़ी सी राहत पहुंचाई है, लेकिन बावजूद उसके मौसम तो गर्मी का है ही ना। और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए हम तमाम उपाय कर ही रहे होते हैं, है ना। कभी कूलर के सामने बैठे होते हैं, पंखों के सामने होते हैं, एसी, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडई, सूती कपड़े, ऐसे तमाम उपायों को हम अपना रहे होते हैं गर्मी से राहत के लिए, है ना। पर सूरज देवता की सीधी दृष्टि गर्मी की तपिश को और बढ़ाती ही जाती है। तो चलिए, गर्मी के दिनों में जब सूरज देवता रहम नहीं करते हैं तो ऐसे में हमें शरीर के स्मार्ट कूलिंग को ऑन कर देना चाहिए। जानते हैं ये क्या है? स्मार्ट कूलिंग जो बिना पंखे, बिना एसी के हमें ठंडा बनाकर रखता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। हमारे शरीर को एक कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। जानते हैं, जब शरीर का तापमान बढ़ता है दोस्तों, तो हमारा जो दिमाग है उसमें खास तौर पर हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा तुरंत एक्शन में आ जाता है। नतीजा पसीना आता है, और पसीना जब त्वचा से उड़ता है तो शरीर की गर्मी भी अपने साथ ले जाता है, और यही है नेचुरल इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। और साथियों, इस तरीके से हमारी जो त्वचा है उसकी रक्त नलिकाएं भी गर्मी लगने पर फैल जाती हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी त्वचा के ज़रिए बाहर निकल सके। और इसीलिए तो गर्मी में हमारा जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, देखा होगा आपने भी। दरअसल शरीर की सुरक्षा रणनीति के तहत ये सारे इंतजामात हमारा शरीर खुद करता है, लेकिन ध्यान रहे उसके लिए हमें भी शरीर की मदद करनी चाहिए। जैसे पानी कम पिया जाए तो हमारा कूलिंग सिस्टम धीमा हो जाता है, इसलिए गर्मियों में पानी ज़्यादा, खाना हल्का और धूप से बचाव तीनों है ज़रूरी। अपने शरीर के संकेत को समझना, उसे सपोर्ट देना ही तंदुरुस्त जीवन की थाती है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मौसम को आने जाने देते रहें और सुनते रहें FM गोल्ड।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना पारसमणि फिल्म से इस गीत को। साथियों, प्रकृति है तो हम हैं, है ना। और किसी की एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने क्या खूब कहा है, गौर कीजिएगा आप सभी, कि एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यहीं थी कभी गांव की नदी, आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। नन्ही पीढ़ी दौड़ी और बोली, हम आ गए बाजार, क्या क्या लेना है, पूछने लगा दुकानदार। कहा, भैया थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, दो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों? उसने कहा, नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है, छटाक भर मंगाई है। जी हाँ दोस्तों, इन पंक्तियों ने जिस दृश्य को हमारे सामने रखा है वो बतलाते हैं कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जैसे जंगल में गिरा पत्ता कचरा नहीं बनता, बल्कि मिट्टी का पोषण करता है, उसे उपजाऊ बना देता है। विज्ञान इसे प्रकृति का रिसाइकलिंग सिस्टम कहता है, यानी कि पुनर्चक्रण, जहां पेड़ पौधे जीव जंतु मिट्टी पानी और सूक्ष्म जीव मिलकर हर तत्व को फिर से उपयोगी बना देते हैं, है ना। हमारे पारिस्थितिकी की विज्ञान के अनुसार जो अपघटन या विघटन की प्रक्रिया है और जो पोषक तत्व चक्रण की प्रक्रिया है, वो हमारी धरती के लिए जीवन चक्र की बुनियाद की तरह है। दोस्तों, इस्तेमाल करें और फेंकें, यानी यूज एंड थ्रो नहीं, यूज एंड ट्रांसफॉर्म पर चलने की बात और संदेश हमारी प्रकृति हमें हमेशा देती आई है। इसीलिए तो सूखे पत्ते खाद बनते हैं, बारिश का पानी धरती को रिचार्ज करता है और एक जीव का अवशेष दूसरे जीवन का आधार बनता है। लेकिन जब हम इंसान अपनी सुविधाओं के लिए और सुविधा भोगी बन जाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ने लगता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है ना। ऐसे में कचरा कम करना, वस्तुओं का बार बार उपयोग करना और पुरानी चीजों को नया रूप देना, यानी कि उसे रिपर्पस करना, ये सब बातें कार्बन उत्सर्जन को, प्रदूषण को कम करने और संसाधनों को बचाने के लिए आज समय की मांग है। इसीलिए सस्टेनेबल लिविंग आज की जरूरत है दोस्तों। प्रकृति की तरह जीना,

हर चीज का मान करना, कुछ भी व्यर्थ ना करना और हमारे रिश्तों को इसी तरीके से हम मजबूत करते हुए अपनी जिंदगी को, अपनी धरती को सुंदर बनाते जाते हैं।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना चोरी चोरी फिल्म से इस गीत को। और दोस्तों, अब एक प्रेरक कहानी आपके लिए। एक कहानी है जिसमें एक स्त्री बस में चढ़ती है। एक पुरुष के बगल वाली सीट में बैठते समय उसके बैग से पुरुष को चोट लग जाती है, लेकिन वो कुछ

कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। इस पर उस महिला से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है कि आपको मेरी वजह से चोट लगी, फिर भी आपने शिकायत क्यों नहीं की। तब पुरुष मुस्कुराकर उसे जवाब देता है और कहता है कि इतनी छोटी सी बात पर नाराज होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी साथ की यात्रा बहुत छोटी है, मुझे अगले स्टॉप पर ही उतरना है। उत्तर सुनकर महिला भावुक होती है और माफी मांगती है और मन ही मन सोचती है कि सच में यात्रा बहुत छोटी है, किसी जीवन सूत्र से कम नहीं है ना। दरअसल कहानी का मर्म ये है दोस्तों कि जीवन अनमोल है, उससे भी अनमोल है समय, जिसे नाहक ही बहस करके ईर्ष्या, द्वेष और घृणा करके हम बेजा खराब नहीं कर सकते। दूसरों को माफ ना करके और असंतोष पाल के वास्तव में हम अपना समय और ऊर्जा दोनों ही व्यर्थ करते जाते हैं। इसीलिए किसी ने मन दुखाया तो शांत रहिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने धोखा दिया, धमकाया, अपमान किया तो प्रतिकार करके तनाव ना पालिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने बेवजह अपमान किया, नजरअंदाज कीजिए, उन्हें अपनी दुआओं में रखिए और निस्वार्थ प्रेम कीजिए, यात्रा बहुत छोटी है। दोस्तों याद रखिए, समस्या तभी तक समस्या है जब उसे हम अपने मन में रखते हैं। साथ का सफर बहुत छोटा है साथियों, इसलिए कृतज्ञता और आनंद से भरकर जीवन को अपनाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे

साथियों, छोटी सी ये दुनिया है, सच में हम फिर मिलेंगे। रंगोली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे कार्यक्रम में। बस आज तक यहीं तक, तब तक के लिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहीउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कलाकार बेमिसाल में स्वागत है आप सभी का। आज याद करेंगे एक ऐसी अदाकारा को जिनका नाम लेते ही मन में चुलबुली अदाएं, दमदार अभिनय और सुपरहिट गानों की याद ताज़ा हो जाती है। हम बात कर रहे हैं लोकप्रियता के अपने चरम पर थी मुमताज़ की, जो कि 60 और 70 के दशक में दर्शकों को खूब अच्छी फिल्मों से लुभाया करती थी। और आइए सुनते हैं उन्हीं का ये गीत फिल्म दो रास्ते से। ये गाना तो मुमताज की पहचान बन गया था, उनके लुक और एक्सप्रेशन ने इस गाने को अमर बना दिया। आज भी शादी वगैरह में ये गाना काफी बजाया जाता है।

कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं मुमताज की, जिनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1947 को मुंबई में। एक मध्यम परिवार से थी और बचपन से ही फिल्मी दुनिया के तरफ विशेष आकर्षित रहती थी। हालांकि उनकी माँ नाज और बहन मलिका भी फिल्मों से ही जुड़ी थी, जिसकी वजह से मुमताज को इंडस्ट्री में आना थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि पहचान बनाने के लिए मेहनत और प्रतिभा भी बहुत ज़रूरत है, तो वो दोनों ही था मुमताज के अंदर। और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से अपनी एक अलग जगह बनाई। उनकी जगह ना दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाकर रखती है और सादगी और मासूमियत तो उनके चेहरे पर खास तौर पर नजर आती है।

मुमताज के अंदर बेहतरीन अभिनय के साथ साथ एक और खासियत थी, अब बताइए क्या? हाँ जी, वो डांस बहुत अच्छा करती थी और इस गाने में भी बहुत ही कमाल का डांस किया है उन्होंने। तो वैसे तो मुमताज़ ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की और छोटी छोटी भूमिकाओं से की, और शुरुआती दिनों में उन्हें कोई बहुत ग्रेट मूवीज़ भी नहीं मिली, स्टंट फिल्मों में काम करना पड़ा। यहाँ तक कि इतनी सारी उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम किया कि उस दौर में उन्हें स्टंट फिल्म की क्वीन कहा जाने लगा। उनकी किस्मत तब बदली जब उन्हें बड़े बैनर और नामी अभिनेताओं के साथ काम करने को मिला। अब फिल्म ब्रह्म

अदाकारी याद है जिसमें वो शमी कपूर के साथ नजर आई थी, और ये वाला जो गाना है उसमें एनर्जी, डांस मूव्स जो थे, उसने इस गाने को और साथ साथ मूवी को भी सुपर हिट बना दिया। आइए सुनते हैं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: मुमताज की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं मुमताज को। तो जैसा कि हमने बताया कि राजेश खन्ना और मुमताज की जो जोड़ी थी ना, उसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया और उनकी फिल्मों में रोमांस, कॉमेडी, भावनात्मक गहराई का बहुत ही अनोखा मिश्रण देखने को मिलता था। अब जो गाना आपकी कसम फिल्म से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें मुमताज और राजेश खन्ना की केमिस्ट्री तो बस देखने ही लायक थी। होली में आज भी ये गाना त्योहारों पर खूब बजाया जाता है पूरे देश में। और पता है, इस गाने की शूटिंग के दौरान मुमताज को तेज बुखार था, फिर भी उन्होंने शानदार अभिनय और शानदार डांस किया है इस गाने में। अब जरा याद कीजिए उनकी परफॉर्मेंस और सोचकर बताइए कहीं से भी आपको लग रहा है कि वो बीमार है।

फिल्म दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, अपना देश, लोफर, खिलौना और इन सभी के लिए ना उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और खिलौना फिल्म में तो जो उनका अभिनय था तो उससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं बल्कि संवेदनशील किरदार भी निभा सकती हैं। और इस फिल्म के बाद से लोगों ने उन्हें सीरियसली लेना शुरू कर दिया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आज हम बात कर रहे हैं मुमताज की, जिन्होंने अपने करियर को ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। उसके बाद मुमताज ने 1974 में उद्योगपति मयूर माधवानी से शादी की और

धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। शादी के बाद वो लंदन बस गई, हालांकि कुछ समय बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। हालांकि वो आज भी बहुत लोगों के दिलों में लोकप्रिय हैं, उनके गाने ऐसे हैं कि उनके हर किसी के जुबान पर हैं, और अभी जो हम आपको गाने सुना रहे हैं एक से बढ़कर एक है ना। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें खिलौना और लाइफ टाइम अचीव

तो इसी के साथ मैं आरजे नीति आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, क्योंकि वक्त हो रहा है उर्दू में समाचारों का। तो देश दुनिया की खबरों का आनंद लीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: भी अफसर अनुराग गोयल ने असेंबली इंतखाबात के नतीज बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर को पेश किए और नौ मंतखब अरकान असेंबली की फेरिस्त भी उन्हें सौंपी। हालिया असेंबली इंतखाबात में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है। बीजेपी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके इत्तेहादी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और आसाम गण परिषद ने 10-10 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस 19 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
1: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के इस मुबैना बयान की मजम्मत की है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जवाबदेही की मजाहमत और आवाम के फैसले को कबूल करने से इनकार करना बंगाल में जमहूरी निजाम को कमजोर करने की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ आवाम के फैसले को मुस्तरद कर रही हैं, बल्कि चुनाव कमीशन और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे इदारों की साख को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों का अहाता करने वाले रेलवे प्रोजेक्टों के लिए मरकजी काबीना की मंजूरी का खैर मकदम किया है। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, कामकाज की कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, नीज मुल्क के बुनियादी ढांचे और इकतसादी तरक्की को भी फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से मुल्क भर के अहम सियाहती मकामात तक पहुंचना मजीद आसान होगा। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने का काबीना के फैसले को भी सराहा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को बायोलॉजिकल जहर देने की आईएसआईएस की एक साजिश में इन लोगों के मुलविस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। अमेरिका में भारत निजाद रिपब्लिकन रहनुमा विवेक रामास्वामी ने ओहियो के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामजद 87% वोट हासिल करके जीत ली है। उन्होंने केसी पुत्श को शिकस्त दी। अब आइंदा नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एमी एक्सटन से होगा। रामास्वामी ने 2024 में मुख्तसर अरसे के लिए ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बाद में उनकी हिमायत का ऐलान किया। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रात भर होने वाले रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये हमले इस एकतरफा जंगबंदी से चंद घंटे कबल हुए, जो यूक्रेन की जानिब से तजवीज की गई थी और आधी रात से नाफिज होना था। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी इलाके, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाज मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान व निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बाज मकामात पर गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल नई दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत की। कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद 4 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में टीवी के आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून। This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth and medical product regulations. Hectic parleys continue in Tamil Nadu among parties as TVK is set to stake claim for forming government despite lack of majority figure. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tenders resignation. Swearing-in ceremony of the new government to take place after 11th of May. India and European Union launch joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity. IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad to take on Punjab Kings in the evening. And now the news in detail. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. We now go over live at Hyderabad House, where Prime Minister Narendra Modi is briefing the media on the outcomes of the talks.
3: Fast payment system bhi jald hi link hone ja rahe hain. Saath hi, ab hum dono desho ke beech, state to state aur city to city cooperation ko bhi majboot karne ja rahe hain. Friends, Vietnam, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बीजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है. इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है. हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे. वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा. योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं. वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं. अब हमारी एनहैंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे. जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है.
2: In Tamil Nadu, political parleys to form a new government under Tamilagavitri Kadagam TVK founder C. Joseph Vijay has intensified as his party is short of majority figure of 118. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar is to arrive in Chennai later this afternoon from Kerala. The Chief Minister-designate C. Joseph Vijay will be meeting the Governor and submitting the letter to stake a claim to form the government later this evening. As the rift over supporting Vijay-led TVK government in Tamil Nadu is growing amidst parties, long-time alliance between DMK and Congress is on a thin line. Congress, which has 5 MLAs, has decided to support the TVK. The decision was taken after a meeting of the newly elected members to the Assembly from the Congress Party, led by Tamil Nadu in charge Girish Chodankar. Rajesh Kumar from Killiur Assembly constituency, a 3-time Congress MLA, has been elected as the leader of the Congress in the State Assembly. This reduces the number from the DMK alliance and has been added to the TVK, which has 107 MLAs. Still, 6 more MLAs are needed for a majority. Speaking to Media Congress MP Karthi Chidambaram today,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, ये स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
2: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियूर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
4: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर IED का इस्तेमाल किया गया था।
5: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ऐसे सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ISI की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक FIR रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AR या News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत EV बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में TVK पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं हूँ आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ है।
1: जी हाँ किसान मित्रों, आज मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर और कार्यक्रम उन्नत किसान लेकर हम हाजिर हैं। तो कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार।
0: और शशि, आज बात होने वाली है उन्नत किसान में और बहुत ही आज अगर हम बात करते हैं ये अरहर की। और अक्सर घर में देखा जाता है कि अरहर की जो दाल होती है सबको बहुत पसंद होती है और इसमें कितने पौष्टिक तत्व होते हैं, इसके साथ साथ किस तरह से इसमें कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं, किस तरह से क्या क्या इसमें किया जा सकता है, आज कुछ चर्चा होने वाली है ऐसी ही। और आज का जो विषय रहेगा अरहर की उन्नत किस्में और जैव उर्वरकों का प्रयोग। और आज इस विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बन्ना जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी धन्यवाद।
1: बिल्कुल, तो हमारे जो किसान मित्र हैं आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न उनके मन में है तो सीधे फोन करके अपनी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। और जैसा कि हमारे जो किसान भाई हैं अरहर की खेती करना चाहते हैं या उन्होंने जैव उर्वरकों का नाम सुना हुआ लेकिन अभी तक उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, तो क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग करते हैं और रासायनिक उर्वरकों और इनमें क्या अंतर होता है, तो ये सारी बातें आप जान सकते हैं आज के कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे अरहर की जो उन्नत किस्मों की आप बात करेंगे करेंगे, लेकिन पोषण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अरहर की दाल का हम
0: क्या
1: मतलब इसका महत्व क्या है हम लोगों के लिए?
2: जी अरहर या जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनका न सिर्फ मानव पोषण में
1: जी,
2: बल्कि मैं ये कहूँगा कि मृदा का पोषण यानी कि मृदा उर्वरता वृद्धि में भी योगदान है, साथ ही साथ ये पर्यावरण सुरक्षा, लागत में कमी और किसानों की आय वृद्धि में मदद करती है। और जब बात आती है फसल विविधीकरण की या खेती में टिकाऊपन की तो दलहन वर्गीय फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और खरीफ के मौसम में अगर बात करें जो कि आने वाला है बरसात का, जैसे अभी हम समाचारों में भी सुन रहे थे कुछ क्षेत्रों में बारिश शुरू होने वाली है, तो खरीफ के मौसम में जो सबसे महत्वपूर्ण दाल वाली फसल है वो है अरहर की फसल, जो न केवल अपने नाइट्रोजन यौगिकीकरण करके मृदा की उर्वरता बढ़ाती है बल्कि मानव पोषण में प्रोटीन सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें 20-21% तक प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बात करते हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन बी है, ये भरपूर मात्रा में होते हैं। और इसके अलावा जो अमीनो अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल, उनकी भी मानव पोषण में दलहन वर्गों का समावेश करने से पूर्ति सुचारू रूप से होती है। और इस तरह से ये मानव पोषण पशु स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा में मदद करने के साथ साथ किसानों की आय वृद्धि करने में बड़ा योगदान देने वाली फसल है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही सारे फायदे आपने बताए हमारे किसान भाइयों के, कि लागत कम आती है, पर्यावरण की सुरक्षा होती है, खेत की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, प्रोटीन की सुरक्षा होती है, पशुओं के लिए भी लाभ इससे मिलता है। तो थोड़ा पशुओं के लाभ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का लाभ हमारे जो पशु होते हैं उनको मिलता है?
2: जी, जो भी दलहन वर्गीय फसलें होती है उनका एक तो जो पशुओं को सांद्र पदार्थ खिलाते हैं उसमें प्रोटीन की पूर्ति के लिए दलहन वर्गीय फसलों का जो दाने हैं उसका उपयोग तो करते ही हैं, साथ ही जो दाल वाली फसलें होते हैं उनको चारे में भी उपयोग करते हैं। और अरहर की फसल तो ऐसी है इससे इतनी सारी पत्तियां झड़ती है जिससे कि न केवल मृदा उर्वरता बढ़ती है, यदि उनको पशु चारे के रूप में भी उपयोग लें तो प्रोटीन युक्त चारे का भी एक अच्छा स्रोत होती है। साथ ही अंतः फसलीकरण करके भी जो विशेषकर जो बारानी क्षेत्र हैं हमारे उसमें बाजरा और मक्का ज्वार जैसी फसलों के साथ यदि दलहन वर्गीय फसलों का अंतः फसलीकरण सह फसली खेती करते हैं तो जो चारे का उत्पादन भी साथ साथ हो जाता है और दलहन और अनाज उत्पादन से हम किसानों की आय वृद्धि में भी मदद कर सकते हैं। तो जहाँ पे फसल प्रणाली का जो इंटेंसिफिकेशन, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन यानी कि टिकाऊ

0: रूप से सघनीकरण करें दल फसल पद्धतियों का, तो इसमें दाल वाली फसलें और जैसे कि जो आने वाला मौसम है उसमें अरहर और उसके साथ साथ मूंग उड़द और लोबिया का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी हाँ, और बिल्कुल अगर डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात हो रही है अरहर की उन्नत किस्में, और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे कॉल्स भी आने वाले हैं जो कि आने शुरू भी हो गए हैं। एक बार हम बता देते हैं 2342-1081 और 2342-1083 पे आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं और आज किस्मों की जानकारी ले सकते हैं। और अगर हम किस्मों की बात करते हैं तो हम अगर उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी उन्नत किस्में होंगी जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ कमा सकते हैं?
0: जी, अरहर की फसल चूँकि इसमें विभिन्न प्रकार की यदि क्रॉप का जो जो पूरी फसल की अवधि की बात करें तो कम अवधि वाली जो किस्में हैं उनको आजकल प्राथमिकता दे रहे हैं किसान, क्योंकि जो दीर्घकालिक किस्में थी वो करीब करीब 5.5 महीने 6 महीने तक ले लेती थी, और उसमें खरीफ की जो खेती करने के बाद रबी की जो फसल लेते थे उसमें देरी हो जाती थी, उसकी बुआई लेट हो जाती थी और कई बार किसान के खेत खाली भी रह जाते थे क्योंकि वो फसल कटती नहीं थी। तो जो कम अवधि वाली किस्में हैं जैसे कि पूसा अरहर 16 है, ये 4 महीने में ही पककर तैयार हो जाती है, 120 दिन की ये फसल है और उत्पादन भी करीब करीब 20 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास मिल जाता है। तो इस तरह की किस्मों का समावेश सघन फसल प्रणालियों में करना बड़ा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा जो पूसा अरहर 16 है उसका एक और फायदा है कि ये मैकेनाइजेशन के लिए बड़ी उपयोगी है, इसकी मैकेनिकल कटाई हो सकती है कंबाइन हार्वेस्टर से या जो आजकल छोटे रीपर आते हैं उनसे, और जो कम बढ़ती है तो इसकी जो कतार से कतार की दूरी होती है वो भी 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक रखते हैं। उससे क्या होता है कि सीड्रिल से बिजाई करने में बड़ी मदद मिलती है, जब बहुत सारे किसान होते हैं उनकी 22.5 सेंटीमीटर पे हर कतार की सेटिंग होती है सीड्रिल की, तो एक कतार बंद करके और 45 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर पर बिजाई करने में बड़ी आसानी रहती है। इसके अलावा पूसा 991 है, पूसा 992 है, पूसा 2002 है, पूसा 2004 है, ये जो पुरानी किस्में हैं अभी भी किसान काफ़ी उपयोग कर रहे हैं। नई किस्मों में अगर बात करें तो पूसा 2017-1 है, 2018-2 है, 2018-2004 है, और BRG 3 दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के लिए है, फूले टूर 0012 है, वो जो मध्य भारत है या पश्चिमी भारत है महाराष्ट्र वाला जो हमारा क्षेत्र है उन क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये कुछ किस्में हैं जिनको अभी आप बीज खरीद सकते हैं, क्योंकि बिजाई का समय भी आने वाला है तो बीज खरीद कर रखें और खेतों को तैयार कर लें ताकि उन्नत किस्मों को आप सही समय पर बिजाई कर सकें।
2: बिल्कुल,
1: यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं लाइन पे। हेलो
3: जी, नमस्ते, मैं बिहार छपड़ा से बोल रहा हूँ, शैलेंद्र सिंह।
1: हाँ जी शैलेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल कीजिएगा।
3: जी मैम, सर से पूछना है कि छपड़ा के लिए जो हमारी मिट्टी है उसके लिए कौन सी जो नस्ल के अरहर की बुआई की जाए जो 4 महीने में हो जाए और जिसकी अच्छे से अच्छे फसल आए और जिसपे कीटाणुओं का असर कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े वो कीट जो है परेशान करते हैं और कीट फसलों का नुकसान करते हैं।
0: जी ये छपरा बिहार से बात कर रहे हैं, तो ये उत्तर भारतीय क्षेत्रों में अरहर की कई सारी किस्में हैं जिनको ये लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी बात भी कर रहा था, पूसा 16 है हमारी एक नई किस्म है, पूसा 2018-2 है। बिहार में हमारा जो पूसा संस्थान है उसका एक क्षेत्रीय केंद्र है समस्तीपुर में, वहाँ से भी ये बीज ले सकते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ पे जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से, और बीज लेने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप सरकारी संस्थान या विश्वसनीय स्रोत से ही बीज खरीदें, ताकि एक तो आपको बीज सस्ता मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेगा जिससे कि आपकी उत्पादन वृद्धि होगी। और जो भी हम नई किस्में निकाल रहे हैं, जो मैंने अभी बात करी पूसा 2018-2, 2018-4 या पूसा 16 या पूसा अरहर हाइब्रिड 5, ये जो नई किस्में हैं वो जो रोग और कीट हैं उनसे रोधीता होती है, उनसे बचाव होता है। इसके अलावा कीटों और रोगों से बचाव के लिए एक और बात ध्यान रखनी चाहिए सभी किसान भाइयों को, और जो छपरा से हमारे शैलेंद्र जी बोल रहे हैं इनको भी, कि जो बीज उपचार है उससे बीज उपचार करके बिजाई करने का फायदा ये होता है कि बहुत कम मात्रा में रसायन का उपयोग करके और बहुत कम लागत में आप रोग और कीट मुक्त जो फसल है उसका उत्पादन ले सकते हैं। और जब रसायन की बात करते हैं तो थायरम या कार्बेंडाजिम या कोई भी कवकनाशी से उपचारित करके और एक कीटनाशी से बीजों को उपचारित करें और उसके पश्चात बुआई करें। यदि आप जैविक खेती करते हैं तो उस दशा में भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जिनको आप नीम आधारित कई सारे इंसेक्टिसाइड है जिनको आप उपयोग करके फसल को रोग और कीटों से मुक्त रख सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो शैलेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, किस्मों की बात आप कर रहे थे, बता रहे थे, तो यहाँ पर एक और हमारे किसान भाइयों के आगे समस्या रहती है कि उनको अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन वो कैसे करें, और जब वो बीज खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का खास कर ध्यान रखना उनको बहुत जरूरी होता
0: जी।
2: है
0: बीज, एक तो अपने क्षेत्र के लिए जो संस्तुत किस्में हैं उनके लिए आजकल तो फोन में इंटरनेट सबके यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप फोन पर भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से भी। इसके अलावा जो आकाशवाणी है रोज कार्यक्रम प्रसारित करता है तो उसमें भी बीजों की जानकारी मिल जाती है। और जो सही स्रोत है वो यही है कि एक तो आपके राज्य के बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICAR के संस्थान है, पूसा संस्थान है हमारा, यहाँ पर सब जगह बीज विक्रय केंद्र होते हैं। हमारी बीज उत्पादन इकाई से भी आप बीज ले सकते हैं। और बीज लेते समय यही ध्यान रखें कि अपने क्षेत्र का के लिए संस्तुत बीज हो, उन्नत किस्म का बीज हो, और आपके क्षेत्र में कोई रोग या कीट प्रबल होता हो और काफ़ी बारंबार आता हो तो उस दशा में ये ध्यान रखें कि उस रोग या कीट से रोधी जो किस्में हैं उनकी बिजाई करनी चाहिए, और सही मात्रा में बिजाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही सही समय पर बीज का बिजाई करें और सही मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करते हुए यदि फसल का उत्पादन लेते हैं तो निश्चित तौर से उत्पादन भी अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है।
2: बिल्कुल।
1: और एक श्रोता हमारे साथ है यहाँ पर। हेलो।
4: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
1: जी गुड आफ्टरनून जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
1: हाँ फहीम जी, सवाल कीजिए।
4: जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ पे एक मिट्टी है जिसमें ज्यादातर रेत है, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके से वाबस्ता है, हमारे यहाँ पे मिट्टी में थोड़ा सा रेत भी है, लेकिन जब भी अरहर की फसलें होती है जब उनके फूल आते हैं तो यहाँ पे तेज बारिश भी होती है, ठंड भी ज्यादा होती है, तो उस टाइम हमें जो अरहर की फसलें लगी होती हैं उसके अंदर जो फूल आए होते हैं वो गिर जाते हैं तेज बारिश की वजह से, तो ऐसे में क्या करें, कोई ऐसा उपाय जो हमें उस बारिश से उन फूलों को बचा दे?
0: जी ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की फसल या एक विशेष प्रकार की किस्म नहीं लगा पाते, क्योंकि उसमें जैसे इन्होंने भी बताया कि फूल आते समय बारिश हो जाती है, तो उसमें आपको रणनीति बदलनी होगी। जो कम अवधि वाली किस्में हैं उनका उपयोग करना होगा ताकि आपकी ठंड शुरू होने से पहले ही फसल पककर तैयार हो जाए। तो जैसे कि पूसा सोला मैंने बताया या पूसा हरर हाइब्रिड 5 है, तो ये जो कम अवधि वाली जो आजकल नई नई किस्में आ रही है, उपास 120 है, प्रभात है, ये आप इस तरह की किस्में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं दलहन वर्गीय फसलों में वो भी एक वैकल्पिक तौर पे आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आता है नाम मूंग की फसल का जो कि 2 महीने में पककर तैयार हो जाती है, तो आपका जो ठंड का समय शुरू होता है उससे पहले पककर तैयार हो जाती है। और ये खरीफ के लिए काफ़ी जो कम बरसात वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी होती है, साथ ही जो हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सेमी एरिडी कहेंगे मध्यम बरसात होती है उन क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है, तो वो जो आप बरसात के नुकसान से जो समस्या बता रहे हैं उससे भी निजात पा सकते हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि शायद वो पानी भर जाता है कुछ रेता, उन्होंने बताया मैं सही से समझ सका तो जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जल निकास का समुचित आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा अम्लीय और बहुत ज़्यादा जो क्षारीय मृदाएं हैं उनको उपचारित करके ही दलहन वर्गीय फसलों की बिजाई करें तो ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो यदि आप

0: खेत की तैयारी कैसे करें बिजाई के लिए?
1: बिजाई का जो सही समय इस महीने के अंत से शुरू हो जाता है यदि आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं तो जी। और जून का महीना जो दीर्घ अवधि वाली किस्में हैं उनके लिए जून का जो पहला पखवाड़ा है वो, और जो देरी से बिजाई करने वाली किस्में हैं जून के अंत में या कई बार जो असिंचित हमारे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर मानसून के आगमन पर, या यूँ कहें आम भाषा में कि पहली मानसून की जो अच्छी बारिश होती है उसके साथ ही इसकी बिजाई शुरू कर देनी चाहिए। और दलहन वर्गीय फसलों के लिए बहुत ज़्यादा बारम्बार जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, एक गर्मी के मौसम में गहरी जुताई कर दें और उसके पश्चात एक से दो बार कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करके यदि बिजाई कर देते हैं तो अच्छा वायु संचार रहता है, जड़ों में बढ़वार की संभावनाएं अधिक होती है और आपको ज्यादा उत्पादन लेने की संभावना रहती है। साथ ही आजकल शून्य जुताई विधि से भी दलहन वर्गीय फसलों की खेती काफी प्रसिद्धि पा रही है, तो बिना जुताई करे पूर्व फसलों के अवशेषों को खेतों में आवरण रखते हुए भी आप बिजाई जीरो टिल से ड्रिल की सहायता से कर सकते हैं। पर बिजाई करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि हमेशा कतारों में करें और अरहर की जो ज्यादा अवधि वाली किस्में हैं दीर्घकालिक किस्में हैं उनकी बिजाई करते हैं तो आप 60 से 75 सेंटीमीटर दूरी पर करें, और जो कम बढ़वार वाली कम अवधि वाली छोटी अवधि वाली जो किस्में हैं उनकी बिजाई करते हैं तो 60 सेंटीमीटर के आसपास तक, या बहुत ही कम बढ़वार वाली जो किस्में हैं उनकी 45 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें, और सामान्यतः जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर, और दीर्घ अवधि वाली किस्मों में 30 सेंटीमीटर तक भी आप बिजाई की दूरी रख सकते हैं। और जो गहराई है वो सामान्यतः 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए ताकि जो अंकुरण है वो विपरीत रूप से प्रभावित ना हो।
2: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी जानकारी चल रही है, और विषय है आज अरहर की उन्नत किस्में और जैव उर्वरकों का उपयोग। और अगर हम सिंचाई की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो किस प्रकार से सिंचाई करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ उर्वरक हमें किस तरीके से प्रबंधन करना है?
1: जी, सिंचाई प्रबंधन की बात यह है कि अरहर सामान्यतः बारानी दशाओं में ही होती है, पर जो जल्दी बिजाई करते हैं उसमें क्योंकि मानसून नहीं आता तो शुरुआती अवस्था में एक पलेवा करके 1 से 2 सिंचाई करनी पड़ती है कभी कभी। तो जो सिंचाई करने का यही है कि पहले पलेवा करके जो और उचित नमी हो तभी बिजाई करें, और पहली सिंचाई कम से कम 20 दिन तक नहीं दें, जो शुरुआती 2 से 3 सप्ताह है उस तक वो पानी नहीं भरें खेत में, और उसके बाद जब ज़्यादा क्योंकि अगेती बुआई करते हैं उस दिशा में ज़्यादा तापमान हो उस समय दिन में दोपहर के समय सिंचाई नहीं करें ताकि जो अधिक तापमान से हाई टेम्परेचर मोर्टिलिटी हो जाती है पौधों की वो ना हो, शाम के समय सिंचाई करें तो ज़्यादा उपयुक्त होता है। यदि मानसून में लंबा अंतराल आ जाता है तो उस दिशा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा दलहन को बहुत ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती। उर्वरक उपयोग में मैं ये कहूँगा कि अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करा लें, और जो मिट्टी की जांच के अनुसार संस्तुत जो उर्वरक हैं उनका ही उपयोग करें। अगर मिट्टी की जांच नहीं भी करा रखी है तो अरहर की फसल में लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास बिजाई के पहले डाल देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में जस्ते की कमी है उन क्षेत्रों में 20 से 25 किलोग्राम जस्ता प्रति हेक्टर की दर से अगर बिजाई से पहले दे देते हैं तो एक अच्छी फसल आप ले सकते हैं। आजकल जैविक खेती भी करते हैं तो उसमें चूँकि ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है तो 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट या 10 टन गोबर की खाद भली प्रकार से सड़ी हुई यदि बिजाई से 2 से 3 सप्ताह पहले खेतों में डालकर खेत की तैयारी करते हैं तो पोषक तत्व तो प्रबंधन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही जो जैव उर्वरक हैं उनका उपयोग करते हुए संतुलित पोषक तत्व तो प्रबंधन करें तो एक वो बहुत ही अच्छी रणनीति है।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आप पोषण प्रबंधन की बात बता रहे थे जिसमें रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, और अभी आपने बात की जैव उर्वरकों की।
1: जी,
3: तो इनका नाम भी आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, तो ये क्या होते हैं और जो अन्य उर्वरक हैं उनसे कैसे भिन्न है, क्या इनकी विशेषता है?
1: जी, जैव उर्वरक बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको कल्चर करके और किसान बड़ा बहुत ही उपयोगी है। आपको एक जो छोटा पैकेट है 20 से 25 रुपये में आ जाता है, और वो यदि आप सही तरीके से उपयोग करते हैं बीजों को, उससे जैव उर्वरकों से उपचारित करके यदि बिजाई करते हैं तो आपके पोषक तत्वों की कम से कम 25 से 30% तक मात्रा बचा सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए

0: तो ये आपके जो उत्पादन लागत है उसमें आपकी उर्वरकों की लागत का 20-25%, 30% तक कमी करता है, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद करता है। चूंकि जैसे मैं जैव उर्वरकों की बात करें तो एक तीन चार तरह के जैव उर्वरक हैं। एक तो जो नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने वाले जैव उर्वरक, जिसमें दलहन वर्गीय फसलों के लिए हर फसल के लिए अलग राइजोबियम के स्ट्रेन होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो धान्य वर्गीय फसलें हैं उसमें एजोस्पेरिलम या एजोटोबैक्टर हैं जिनको आप नाइट्रोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस घोलक, सूक्ष्म जो बायोफर्टिलाइजर होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, वो क्या करते हैं, हम पूर्व के फसलों में यदि फास्फोरस दी है डीएपी के द्वारा या सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा, तो वो फसल पूरा पोषक तत्वों को उपयोग नहीं कर पाती, वो खेतों में पड़े रहते हैं। तो उनको घोल कर उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं ये जैव उर्वरक कि फसल उनका उपयोग कर सके। तो बिना कोई ज़्यादा लागत के ही आप काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व तो फसल को उपलब्ध करा सकते हैं। आजकल माइक्रोबियल कंसोर्सिया भी आ रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों के घोलक और उपलब्धता बढ़ाने वाले सूक्ष्म तत्व हैं, विशेषकर उनमें बैक्टीरिया होते हैं, वो फसल को बड़ा लाभ देते हैं और तीनों पोषक तत्व तो उपलब्ध कराते हैं। पूसा संस्थान ने सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए भी जिंक सोल्युबलाइजर भी विकसित किया है, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता भी इनके उपयोग से बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे अधिकतर जो किसान भाई हैं वो तो सीधे रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं, तो क्या केवल जैसे कोई हमारे किसान भाई जैव उर्वरक का ही प्रयोग करना चाहे, रासायनिक का नहीं करना चाहे, तो भी काम चल जाएगा?
0: कोई भी फसल होती है उसको 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है,
1: जी।
0: और सभी पोषक तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसको पोषक तत्व को देने के अलग अलग स्रोत होते हैं, जिसमें कि रासायनिक स्रोतों से भी दे सकते हैं, जैव स्रोतों से दे सकते हैं, और उसके अलावा जो जैविक खादें हैं हमारी उनका उपयोग करते हुए भी हम दे सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा जिन फसलों में पोषक तत्वों की मांग होती है उसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो उतना उर्वरक यदि जैव उर्वरक से देंगे तो नहीं उपलब्ध हो पाएगा। पर दलहन वर्गीय फसलों में चूंकि जैसे कि नाइट्रोजन की आवश्यकता ही बहुत कम होती है, तो उनमें हम काफ़ी हद तक नाइट्रोजन की डिमांड कट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ जैव उर्वरकों के उपयोग से ऐसा नहीं है कि हम आज ही रसायनों को हटा सकते हैं। रसायन भी जो रासायनिक उर्वरक है उनका भी अपने आप में बड़ा योगदान है। लगभग 600 लाख टन, 60 मिलियन टन देश में उपयोग हो रहा है। तो जो अभी सरकार प्रयासरत है वो संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन में, उनका भी अभी प्रयास यही है कि हम लगभग 25% रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें और ये जैव उर्वरकों या जो जैविक खाद्य हैं उनके द्वारा दे सकें। परंतु यदि इनका उपयोग करना बहुत आसान है, उपयोग करना बहुत सस्ते हैं, आपको 20 रुपए में एक पैकेट आता है, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, आपको बीज को बस उपचारित करना है, और आप 25% तक की जो भी उर्वरक लागत है वो और उस पर कितनी सारी सब्सिडी जा रही है, लगभग 1.7 लाख करोड़ प्रतिवर्ष हमारी लागत लग रही है, तो उसमें 25% भी हम कमी कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और उर्वरक का उपयोग करने का तरीका भी बड़ा आसान है, किसानों को आसानी से घर से बीज उपचार कर सकते हैं, तो यदि ये करते हैं तो बहुत हद तक वो रासायनिक उर्वरकों में कमी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो हमारी मृदा है उसको भी, उसका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो रहा है, पर्यावरण भी उससे उस पर बुरा असर पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं जैव उर्वरकों की, तो पर्यावरण के लिए कितना लाभकारी है, हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है, और जो मानव स्वास्थ्य है इससे जो उत्पाद मिलता है वो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी होता है।
0: असंतुलित जो रसायनों का उपयोग है वो काफी नुकसान कर रहा है, ये बात मैं अंधाधुंध यूरिया का उपयोग करते हैं तो बहुत सारा यूरिया भूजल में चला जाता है। यदि उसमें 25% तक की 30% तक की कटौती करते हैं तो उतनी मात्रा में हम कम डालेंगे उर्वरक, तो जो उसका नुकसान होता है भूजल तक जाता है वो कम जाएगा, हमारा भूजल प्रदूषण कम होगा, उससे नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जो ग्रीन हाउस गैस है वो निकलती है उसमें कमी आएगी। और जो क्योंकि जैव उर्वरक तो प्राकृतिक हैं तो वो प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए तो उपयोगी हैं ही, साथ ही जो रासायनिक खेती है यदि उसमें भी उसका समावेश करते हैं तो वो भी जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उसमें कमी करते हैं। साथ ही ज़्यादा

0: मात्रा में और असंतुलन पोषक तत्व का करते हैं, तो मिट्टी में एक तत्व ज्यादा डाल देते हैं तो दूसरे तत्वों की भी वो कमी कर देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक भारी पहलवान हो तो वो दूसरे लोगों को दबा सकता है, वैसे ही एक ज्यादा देने से, असंतुलन से वो गड़बड़ होती है। तो जैव उर्वरकों का समावेश करने से जो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी भी उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है, तो वो एक तरह से संतुलन का कार्य करता है। तो इस तरह से ये मृदा के स्वास्थ्य में बढ़ाता है, पर्यावरण सुरक्षा में भी ध्यान रखता है, और जो आर्थिक स्वास्थ्य है किसान का उसका भी ये ध्यान रखते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लाभ जैव उर्वरकों के हमारे किसान भाइयों के लिए हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे जो किसान भाई रासायनिक उर्वरकों के प्रति जागरूक है उतने जैव उर्वरकों के प्रति जागरूक नहीं है, तो इसकी क्या वजह है, किस तरह से उनको जागरूक किया जा सकता है?
0: जागरूक करने के लिए अभी सरकार प्रयासरत है, हम एक अभियान के रूप में मेरा गाँव मेरा गौरव के तहत ICAR प्रयास कर रहा है ताकि अब हर घर तक हर किसान तक हम पहुंच सकें। और आकाशवाणी का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस अभियान को प्रतिदिन किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही यदि आप एक बार जैव उर्वरकों का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये बड़े लाभप्रद हैं और धीरे धीरे इनका उपयोग बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि सॉलिड रूप में जैव उर्वरक आते थे तो कई बार किसानों के खट्टे अनुभव भी रहे होंगे, हो सकता है तो भी उन्होंने जो इसका उपयोग था उसको धीरे धीरे कम कर दिया होगा। आजकल लिक्विड जैव उर्वरक आ रहे हैं, तरल जैव उर्वरक आ रहे हैं तो उनका उपयोग करते हैं, तो उसमें ज्यादा मात्रा में जीवाणु होते हैं जो आपके लिए उपयोगी होते हैं, खेतों के लिए, मिट्टी के लिए, बीज के लिए जो उपयोगी जीवाणु, उनका अब उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से वो एक बार जिसने उपयोग कर लिया वो हर बार आएगा, क्योंकि लागत भी कम होगी और फसल भी अच्छी होगी, मृदा तो स्वास्थ्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये एक तरीका हो सकता है।
1: बिल्कुल, तो हमारे किसान मित्रों को तो दोनों तरफ से लाभ है, अगर वो दलहन की फसल करते हैं जिसमें कि अरहर की बात हम आज कर ही रहे हैं तो उससे भी लाभ है अपनी जो मिट्टी है, और साथ ही साथ जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी उनका भी लाभ है और पर्यावरण का भी लाभ है। डॉक्टर साहब, जैसे दलहन की बात कर रहे हैं तो क्या कोई सरकार का कोई मिशन भी चल रहा है इस इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए?
0: जी, दलहनों के लिए मिशन चल रहा है, तिलहन उत्पादन के लिए मिशन चल रहा है, और कल कपास उत्पादन के लिए भी मिशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने। तो ये मिशन मोड में जाने का फायदा यही है कि जैसे कि हम उत्तर भारत के जो गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो धान गेहूं फसल प्रणाली है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग हुआ है, काफी रसायनों का उपयोग बढ़ गया है, कीट और रोगों का भी प्रकोप बढ़ा है। तो ये जो मिशन चल रहे हैं इससे न केवल हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, जो देश में आयात करना पड़ता है दलहनों का तिलहनों का, तो उसमें कमी ला सकते हैं, साथ ही हम हमारे कृषकों की आय बढ़ाते हुए जो फसल विविधीकरण का एक सपना है कि जो धान गेहूं प्रणाली में जो अन्य फसलों का समावेश हो उसमें अरहर एक बहुत बड़ी मजबूत कैंडिडेट फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में दीर्घकालिक जो अनुसंधान हुए हैं उनके भी परिणामों में अरहर, कपास और मक्का तीन ऐसी फसलें हैं जो धान के लिए जो रिप्लेसमेंट के तौर पे एक विकल्प के रूप में है। तो ये जो मिशन चल रहे हैं सरकार के उनसे बड़ा फायदा होने वाला है, और किसानों तक मिशन मोड में जाने से उन्नत गुणवत्ता का जो बीज पहुंच रहा है, जागरूकता लाई जा रही है, वो निश्चित रूप से फायदेमंद सिद्ध होगी।
2: जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी, और हमने जाना कि किस तरह से हम अच्छी किस्मों के जरिए अधिक पैदावार कर सकते हैं और किस तरह से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा सकते हैं, कम पानी के इस्तेमाल से कितना ज़्यादा हम फायदा ले सकते हैं, उसके साथ साथ जैव उर्वरकों का प्रयोग कितना सही है हमारे लिए, हमारी खेतीबाड़ी के लिए और मानव के लिए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। और कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा kkbongold@gmail.com पर, और अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें पहुंचाते रहिए, और अगर किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। तो इसी के साथ कार्यक्रम उन्नत किसान से हम लेते हैं इजाज़त। मैं सीमा सती
1: और मैं शशि कपूर, नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह 2 के तहत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेतरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। मोर्चे का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10, 52 सेकेंड हुए हैं इस वक्त और मनभावन का ये हंसी खुशनुमा प्यारा सा सफर रहेगा इस वक्त, जिसे तय करेंगे मैं और आप मिलकर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आकाशवाणी गोल्ड 100.1। आपकी पसंद, आपकी फरमाइश, आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी हम तक व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल के थ्रू। लिख भेजे आपके मन को भाते वो गीत जिनसे महक उठेगा मन भावन का ये दिलकश सफर। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1, अंजलि है आपके साथ। और सबसे पहले शुरुआत करें अमर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ, लता जी की आवाज में। और फरमाइश कहाँ से आई है इस गीत के बाद बात करते हैं।

तो ये जो गीत था मन भावन का सफर हमने तय कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत हुई इस अमर फिल्म के गीत से, बहुत ही प्यारा सा मेलोडियस सॉन्ग था लता जी की आवाज में, और फरमाइश भेजने वाले थे बुलंदशहर ऊपर कोट मोहल्ला चौखंठी से मही मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सोहन अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और भी इनके परिवार के सभी सदस्य। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने इतनी बेहतरीन शुरुआत करवाई, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने चुनकर भेजा, और उम्मीद है कि आपके इसी तरह से हम तक फरमाइशें पहुंचती रहेंगी। तो ये अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है, हमारी बहुत ही पुरानी लिसनर है भगवती सिंह, और इनका हमें संदेश मिला है पहलादपुर से, और आपने कौन सा गीत सुनने की फरमाइश की है, तो आपका गीत है सारंगा फिल्म से लता जी और साथियों की आवाज़ में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मनभावन का यह हसीन सा सफर तय हो रहा है इस वक्त यहाँ पर और आपकी फरमाइशें लगातार हम तक पहुँच रही हैं। तो व्हाट्सएप नंबर एक बार, जिन दोस्तों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है या जो ढूंढ रहे हैं डायरी में या फ़ोन में, तो फिर आप नोट कर सकते हैं 9868686853। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868686853। और अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। और जो अगला गीत आप तक पहुंच रहा है ना, बहुत ही मतलब मैंने भी ये गीत बहुत शायद एक आध बार ही सुना होगा और मुझे याद भी नहीं पड़ रहा, तो बहुत ही रेयर सा गीत है, बहुत ही मेलेडियस गीत है, बहुत ही मधुर सा गीत है जो हमें चुन चुन कर भेजती हैं हमारी बहुत पुरानी लिसनर, हमारी दोस्त पीतमपुरा से अनीता वर्मा जी। इस गीत की फरमाइश जिन्होंने हमें भेजी है और साथ ही हमारे दोस्त हैं जो गाना सुनना चाहते हैं बहुत ही अच्छा सा और अपना नाम जोड़ने की जिन्होंने फरमाइश की है, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, इन्होंने मुरादाबाद से किसी भी गाने के साथ अपने नाम शामिल करने की हमें रिक्वेस्ट भेजी है। तो उम्मीद है कि आप सबने अपने नाम सुन लिए होंगे और एक बहुत ही प्यारा सा गीत अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जिसकी फरमाइश हमें अनीता वर्मा जी ने भेजी है पीतमपुरा से और फिल्म का नाम फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन लता जी की आवाज़ में।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और इस वक्त मन भावन का ये सफर यहाँ पर पूरा हो रहा है आपकी फरमाइश आपकी रिक्वेस्ट के साथ। जो गाने आप दिल को भाते दिल को छूते गीत आप इतने प्यारे प्यारे हमें फरमाइश में भेज रहे हैं, तो अगला गीत ऐसे ही खुददार फिल्म से है और इन्होंने महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ हरियाणा से इनका हमें संदेश मिला है। इन्होंने लिखा कि इस फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, बहुत दिन हो गए और इस गीत को नहीं सुना है। इसी तरह हमें कुछ और फरमाइशें भेजी हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन और साथ ही और भी हमारे साथी हैं फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। इनका हमें संदेश मिला है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं, इंजॉय करते हैं हम सब मिलकर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अगर गीत नहीं किसी वजह से पहुंच पा रहा तो भी जो ये सदाबहार गीत है ना, जो दिल से निकले

मन भवन के इस सफर पर अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है ब्लफ मास्टर फिल्म से है, लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। और इस गीत के लिए हम तक फरमाइश पहुंचाई है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, साथ में सरिता है इनके। और इसी तरह हमें और भी फरमाइशें आई हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, इन्होंने हमें संदेश पहुंचाया है जमशेदपुर स्टेशन रोड से। और इसी तरह हमें ये जो फरमाइश थी, एक और हम तक फरमाइश पहुंची है रविंद्र मोहन दास की, आशा देवी जी की, और राघव कुमार हैं, भानुप्रिया हैं, कीर्ति भारती हैं, अनुराग मोहन हैं, आपने हमें किशनगंज बिहार से लिखा है। तो चलिए दोनों फरमाइशें एक साथ आप तक पहुंचा दी जाए ब्लफ मास्टर से। ये गीत पहले

और जो अगला गीत आप तक पहुंच रहा है इसे हमने लिया है फिल्म संगम से और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की, म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और ये गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है और जो फरमाइश करने वाले हमारे दोस्त हैं।

रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, इन्होंने हमें हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से ये अपना संदेश पहुंचाया है। इसी तरह संदेश आया है हमें कमलेश हैं, मुकुल हैं, सचिन हैं, दीपांशु हैं, नई दिल्ली से इन्होंने हमें संदेश पहुंचाया। तो चलिए संगम फिल्म से बेहदी जैसे बोलते हैं ना, दिल को छूने वाला गीत है। आप सभी गीत इस तरह के पहुँचा रहे हैं कि दिल को छुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वक्त का इशारा थोड़ा सा आप भी नज़र रखिएगा और उसके बाद हम तक संदेश रोक दीजिएगा। संगम फिल्म का ये गीत आप तक।

0: सतनाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मनभावन का यह सफर अंजलि है आपके साथ। और जो अगला गीत आप तक पहुंच रहा है सरगम फिल्म से लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और इसके लिए हम तक फरमाइश पहुंचाई है मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा है, अनुज वर्मा है, आयुषी वर्मा है, रमेश चंद्र वर्मा है और शेख मूसा भाईजान है, भाई राजकुमार बोडाना है और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप, इन सारे हमारे साथियों ने ये फरमाइश पहुंचाई है। और साथ ही राजस्थान भोपालगढ़ से भी हमें एक संदेश मिला है, धर्मेंद्र छीपा है, कपिल छीपा है, ईशान छीपा है और पूजा परिहार है। और साथ ही हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने हमें ये लिखकर भेजा है कि भाई कोई भी गाने के साथ हमारा नाम शामिल कर दें, तो पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन है, उषा मोहन है, टिल्लू नायक है और ऊपर आपने लिखा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा और नीचे लिखा है कैथल हरियाणा। अच्छा हाँ, कैथल हरियाणा से मधु नायक, इसी में आपने दोनों अपने हमारे दोस्तों की फरमाइश पहुंच चुकी है। और हमारे कौन से साथी हैं जो हमें फरमाइश भेज रहे हैं, तो आपकी हमें आपके यहाँ पर साजिद कुरैशी हैं इन और इनका हमें संदेश मिला है। और हमारे कौन से साथी हैं जिनके संदेश हमें पहुंचे हैं, भंवरपुर छत्तीसगढ़ से राधे श्याम देवांगन है, चंपा देवांगन है, जगदीश देवांगन है। तो उम्मीद है जो भी गीत आप तक पहुंच रहा है आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और बहुत सारे क्योंकि हमारे लिसनर्स हैं, साथी हैं, हमारे दोस्त हैं जो इस सफ़र पर हमारे साथ चल रहे हैं, तो उनके नाम यहाँ पर शामिल करना मुझे ज़रूरी भी लग रहा है। श्रोता हमारे जो हैं रघुबीर नगर से दिलावर खान हैं, हसीना बानो हैं, एलिजा नायाब और लड्डू हैं साथ में। तो जो भी गीत आप तक पहुंचेगा उम्मीद है कि आपको ये गीत भी आपके दिल को छू जाएगा। और इसी तरह से किशन वंजानी है, नीलम स्वाति, संगीता है, सरिता है, सुमन महाजन है और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आपका हमें संदेश मिला है। और हमारे कौन से साथी हैं, आपका नाम तो शामिल हो गया है, एक हमारे साथी हैं देखिए भटिंडा पंजाब से हमें संदेश पहुंचा रहे हैं, परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिंपू, एकम, दमन, अभिजीत। तो आप जब भी नाम लिखते हैं ना, बहुत सारे नाम लिखने के चक्कर में आप कई बार बहुत गलत भी लिख जाते हैं यहाँ पर नाम, और पढ़ने में हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। इसी तरह से दिग्दर्शन और कविता जी हैं मेरठ कैंट से हमें आपका संदेश मिला है। और भाई एक और संदेश यहाँ पर मैं इस वक्त ज़रूरी समझ रही हूँ, बेंगलुरु से वाइट फील्ड, बेंगलुरु से भारत भूषण है, अंजू श्रीवास्तव है, दिव्येंदु भूषण है, संस्कृति है और पौरुष है। तो फिर ये गाना सुन लेते हैं हम, डपली वाले डपली बजा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा गाना है, आप सभी दोस्तों को ये पसंद आएगा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

एफएम गोल्ड 100.1 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और जिस पर आप अपनी फरमाइश के गीत सुन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी फरमाइश है हम तक यहाँ पर पहुँच रही है आपकी छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हमें संदेश पहुँचा है मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा आपने हमें संदेश पहुंचाया है और इसी तरह हमारे और कौन से साथी हैं मोहम्मद यूनुस खत्री मोहम्मद सादिक खत्री अयूब खत्री और यूसुफ खत्री चिपरा कॉलोनी खंडवा से आपका हमें संदेश आया है और हमारे जो साथी हैं जल्दी से आपके भी नाम पढ़ दें तो भाई आपने नाम लिखे हैं लालगिरी गोस्वामी है हेमलत

हैं, हिना हैं, हर्षित हैं और खुशी गोस्वामी हैं, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। राजस्थान से बहुत सारे हमारे संदेश पहुंच रहे हैं और हमारे साथी हैं, आपने जो बहुत सारी बातें लिखी हैं, चलिए उतना वक्त तो नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने लिखकर भेजा है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्कीन है, तुलसी मस्कीन है, आशीष राज्य राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से। अच्छा, आपने मतलब अपने ही संदेश में सबके सब जगहों का मेंशन कर दिया। राहुल खुराना है चंडीगढ़ से, अगर हमें सुन रहे हैं तो ये आपकी जो आपके जानकार हैं, इन्होंने आपकी भी फरमाइश हम तक पहुँचा दी है। रचिता खुराना है, केशु है, रिधान खुराना, राहुल खुराना चंडीगढ़ से, आपका हमें संदेश, आपका भी मतलब आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच गई है। और साथ ही है, ये है आपके नाम पढ़ने में कई बार, साजिद कुरैशी खतौल, अच्छा आप साजिद कुरैशी, इन्हीं का हमें संदेश मिला है, खतौली उत्तर प्रदेश से आपका हमें संदेश मिला है। और हमारे कौन से साथी हैं, चलिए अगर हम पढ़ सकते हैं तो आपका कई लोग हैं जिनके हमें संदेश हमने पढ़ दिए हैं और बार बार उनके संदेश पहुंच रहे हैं, तो बाकी जो नाम जाने चाहिए उनके नाम भी इस तरह से नहीं जा पाते हैं। विनोद कादियान है, कश्मीर सिंह है, राम श्याम, और इनका हमें ककरोई रोड सोनीपत हरियाणा से संदेश आया है। तो फिर मोहम्मद रफी साहब की आपने आवाज में जरूर कोई ना कोई गीत सुना होगा, जब पूरे इस सफर पर लता जी मोहम्मद रफी साहब की शोरदा और मुकेश साहब के गाने हम बजी आप बजाए ही रहे हैं, आप तक पहुंच ही रहे हैं। मनोज बंसल हैं हांसी हरियाणा से। तो भाई वक्त अब हमें ज्यादा इजाजत तो नहीं दे रहा, चलते चलते चलिए ये एक और गीत अमर अकबर एंथनी फिल्म का सुन लिया जाए।

इस गीत के बाद वक्त रहेगा समाचारों का और कुछ देर के लिए अंजलि आपसे लेगी इजाजत। 4:10 पर फिर होंगे मैं और आप साथ साथ यहीं आकाशवाणी गोल्ड पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो

0: का विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो चुका है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वियतनाम की राष्ट्रपति तो लाम की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और अटूट मित्रता को दर्शाती है। श्री पुरी ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का परिचायक है। श्री लाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केरलम यूडीएफ गठबंधन सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह 2 के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एआई वाले स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। इससे वे ध्वनि के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे। प्रत्येक चश्मे की कीमत लगभग 35,000 रुपए है। इन्हें निःशुल्क प्रदान किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर और निफ्टी 298 अंक बढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system, and culture and tourism. The agreements were signed following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tu Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4:15 होने को है। आइए अब आपको आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 इस पर आप आगे क्या क्या सुन सकते हैं उसकी जानकारी दे दी जाए तो 4:20 पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज आप सुन सकते हैं। इसी तरह 4:30 का वक्त रहता है परिक्रमा का, जिसमें कि आप देश दुनिया की खबरों के साथ साथ बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके मुख्य समाचारों से जुड़ते हैं और साथ ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ रहे हैं जिनकी कि आज जयंती है या फिर उनकी पुण्यतिथि है, उनके बारे में आपसे जानकारी साझा होती है। खेल, विज्ञान, राजनीति, सभी तरह की चर्चाएँ आप इस आधे घंटे की समाचार डिवीज़न की तरफ से, समाचार प्रभाग की तरफ से जो ये न्यूज़ पत्रिका है ये, इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। 5:10 पर कुछ मेलेडियस गीत आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी तरह से सदाबहार गीत भी आप सुन सकते हैं 6:10 पर और 6:20 पर संस्कृत।

संस्कृत में समाचार होंगे। तो ये जो कार्यक्रम है सदाबहार गीत 6:10 से 6:20 तक ही आप सुन पाएंगे आकाशवाणी गोल्ड पर। आगे के कार्यक्रमों की हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे। शाम 7:10 पर सुर्खियों में ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम, ये भी समाचार प्रभाग की तरफ से आप सुन सकते हैं। और 7:25 पर सांझ ढले ये कार्यक्रम आप सुनेंगे और फिल्मी गीतों पर आधारित है ये कार्यक्रम। इसी तरह से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार, इसका वक्त रहेगा 7:45। कार्यक्रम मधुरिमा का आप आनंद ले सकते हैं 8:10 पर। जी हाँ, मधुरिमा कार्यक्रम जिसको हमारे सुनने वाले बहुत पसंद करते हैं, और वक्त जब भी उन्हें संदेश पर आधारित कोई कार्यक्रम होता है तो वो इस कार्यक्रम का भी समय पूछते हैं। तो आप समय नोट कर सकते हैं, ये कार्यक्रम होता है मधुरिमा 8:10 पर। 9:15 का वक्त रहेगा स्पॉटलाइट का, समा न्यूज सर्विस डिवीजन का ये कार्यक्रम है जो आप सुनेंगे। इसी तरह से और हमारे जो कार्यक्रम होंगे 9:30 पर चर्चा का विषय है ये आप सुनेगा, न्यूज सर्विस डिवीजन का ही ये भी कार्यक्रम है। और आकाशवाणी गोल्ड पर 100.1 10:30 पर हर श्रृंगार। और आज के दिन का आखिरी कार्यक्रम यानी कि 6 मई 11:10 पर गीत मेरे मन मीत, इसे आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

विभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट समूह सी के 48 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र तथा टाइपिंग दक्षता। प्रमाण पत्र अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 अप्रैल 2026 थी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 मई 2026 और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 19 मई 2026। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुल 7 पद तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुल 14 पद। योग्यता, अनुभव एवं पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nia.gov.in। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट असम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ कुल 9 पद, ड्राइवर गैर तकनीकी 1 पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.neist.res.in। भारत सरकार का उद्यम आयुध निर्माणी देहू रोड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कार्यकाल आधारित ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास मैकेनिकल तथा केमिकल क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा उपलब्ध है। मैकेनिकल के लिए कुल पदों की संख्या 7 है जबकि केमिकल के लिए पदों की संख्या 6 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट munitionsindia.in/career अथवा ddpdoo.gov.in पर जाकर करियर टैब के अंतर्गत देखिए OF देहू रोड। रावी एवं व्यास जल अधिकरण कोर्ट मास्टर के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in। नेशनल बाल भवन कोटला रोड दिल्ली आमंत्रित कर रहा है सहायक लेखा अधिकारी के 1 पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन निदेशक नेशनल बाल भवन कोटला रोड नई दिल्ली 110002 को भेजे जाने चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंजीनियरिंग विभाग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आमंत्रित कर रहा है

निरीक्षण अभियंता सिविल के एक पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट chandigarh.gov.in/public-notice। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

पब्लिक नोटिस। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: शाम ढली तो यादों के दिए जल उठे, दिल के सन्नाटे में कुछ किस्से पल उठे।
1: यादें माजी आजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। जो बरसों से भुलाया जा रहा है वही क्यों याद आ रहा है फरहत? आई थिंक सो इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी रियली नेवर, ह्यूमंस नेवर रियली फॉरगेट एनीथिंग। वी जस्ट ट्राई टू काइंड ऑफ यू नो कवर इट अप विद अदर थिंग्स, अपने आप को आप मसरूफ कर लेते हैं। लेकिन चाहे वो आपका पुराना घर हो या आपके पेरेंट्स जो आपके साथ अब नहीं है या कोई बिछड़ा हुआ प्यार, यू रियली नेवर फॉरगेट एनीथिंग।
0: बिल्कुल सारा, फिर तसव्वुर मुझे माजी में लिए जा रहा है, दर्दे दिल दर्दे जिगर ताज़ा हुआ जा रहा है। तो कुछ ऐसी ही होती है शाम जब हम कुछ याद करते हैं और माजी में चले जाते हैं तो जो यादों के पन्ने हैं वो अपने आप ही खुलने लगते हैं।
1: दैट्स राइट। लेकिन पता है फरहत, बहुत से राइटर्स दे एक्चुअली आर्ग्यू दैट देयर इज नथिंग लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बिकॉज ऑल दीज फेजेस ऑफ लाइफ वेदर यू नो वी आर दे ऑलवेज लिविंग।

0: सबसे पहले पीएम की खबर सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
1: दैट्स राइट, प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड्स टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम तो लम इन न्यू दिल्ली। सेवरल एमओयूज एक्सचेंज्ड इन द फील्ड्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, मेडिकल प्रोडक्ट्स, रेगुलेशंस।
0: तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज।
1: Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma tenders resignation, swearing-in ceremony of the new government to take place after 11th of May.
0: भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया।
1: IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today.
0: और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। तो श्रोताओं, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। और अब बात डेटलाइन इंडिया की।
1: That's right, and in our segment Dateline India, we take a look at the developments that take place at the national global level. And today we're going to talk about Mission for Cotton Productivity.
0: खैर, हम सब सभी जानते हैं कि हमारा पसंदीदा कॉटन शर्ट हो या फिर कॉटन कुर्ती की यात्रा किसी शॉपिंग मॉल से शुरू नहीं होती, यहाँ तक कि किसी फैक्ट्री से भी नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत भारत की मिट्टी से होती है। और आज ये यात्रा कुछ इस तरह से बदल रही है जो दुनिया के भारत के कॉटन को देखने के नजरियों को पूरी तरह से बदल सकती है।
1: That's right, Farhad. So let's talk about something very important because it connects the lives of farmers, workers, exporters and all of us. The government of India has launched a 5,659 crore rupees Mission for Cotton Productivity, which is aimed at making India self-reliant in cotton and globally competitive by 2030-31. But the question is, why cotton?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कपास केवल एक फसल ही नहीं है बल्कि ये भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। ये गांवों को वैश्विक बाजारों से जोड़ती है। लेकिन हमारे श्रोता शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत पहले से ही कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है तो फिर हमें इस तरह के किसी मिशन की जरूरत आखिर क्यों है।
1: Well, the reason lies in the challenges we've been facing, such as falling productivity, pest attacks, and concerns around quality. And rather than letting these issues grow, India is choosing to confront them with intent.
0: Saira, to zameeni star par kya badlega? Aaiye is tarah samajhte hain ki jo ekdam asli lage. Maharashtra ki ek kisan ki kalpana kijiye. Pehle keeton ke achanak hamle aur kam paidawar wale beejon ki wajah se uski aamdani anishchit rehti thi. Ab use zyada paidawar dene wale jalvayu ke hisab se mazboot aur keeton ka muqabla करने वाले बीज मिल रहे हैं।
1: Well, that actually means more output, better income and less stress for the farmer. And that's not all. To make farming smarter and not harder, techniques such as high-density planting systems and better crop management, yields are set to improve noticeably. This goes far beyond the traditional way of farming.
0: और अब आइए खेतों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अतीत में चलते हैं। और कपास प्रोसेसिंग यूनिट्स में गुणवत्ता का एक जैसा ना होना अक्सर वैश्विक मांग पर असर डालता है। आधुनिक जीनिंग फैक्ट्री और बेहतर टेस्टिंग सुविधाओं के साथ भारतीय कपास अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए तैयार है।
1: And the real highlight for her of this story unfolds when Indian cotton earns its place as a global brand. That's the idea behind Kasturi Cotton Bharat, to create cotton that is premium, traceable and trusted internationally. That will not just be a cotton but a signature of quality.
0: जी सायरा, और अगर हम सोचें कि इन सबसे फायदा किसे होता है तो ये सिर्फ किसी एक समूह को नहीं होता है, हम आपको बता दें, बल्कि लगभग 32 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होने की उम्मीद है। और अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर बहुत व्यापक है। पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, या फिर कपड़ा उद्योगों की, या फिर निर्यात बाजारों तक, साथ ही कपास के कचरे की रिसाइकलिंग और बांस और सन जैसे टिकाऊ रेशे को बढ़ा हवा देने से पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। और इसीलिए ये कोई अंधाधुंध विकास नहीं है बल्कि ये असल में एक जिम्मेदार प्रगति है।
1: That's right, Farhad. The mission will be implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of Textiles, involving 10 institutes of Indian Council of Agricultural Research, 1 Institute of Council for Scientific and Industrial Research, and 10 centers of All India Coordinated Research Project on Cotton, operating in different state agricultural universities of major cotton growing states.
0: और अब इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इस योजना में क्या-क्या किया जाएगा? शुरुआत में 14 राज्यों के 140 से जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य कृषि विभाग और ICAR की मदद से टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा और 2000 जीनिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां इससे स्थापित की जाएंगी। अब यहां एक ऐसा जबरदस्त विजन है जिस पर गौर करना जरूरी है। भारत का लक्ष्य कपास

0: उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है। और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और उत्पादन के 498 लाख गांठों तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कपास के क्षेत्र में सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा में एक स्पष्ट कदम है।
1: Well, Farhad, the mission also aligns with the 5F vision. And if you're thinking, listeners, what is the 5F vision? Well, it's farm to fiber, to factory, to fashion, to foreign. So it's not just a slogan, Farhad. It's a complete story of value creation. From the farmer's field to the global fashion runway. Next time we reach for a cotton outfit in dazzling shopping mall, do let a thought cross your mind about the journey that this outfit took, the lives that it touched, and how is India reshaping that journey today?
0: बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सफर यकीनन कपास से कहीं आगे तक जाता है और ये हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है, ये हमारी क्षमता को दिखाता है और ये कैसे देश की कहानी कहता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी ताकत तलाश रहा है।
1: And maybe the most important question is that if this is what's happening in one sector, what does the future of India truly looks like?
0: बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये एक ऐसा भविष्य जो अधिक मजबूत होगा, अधिक समझदार होगा और गर्व से आत्मनिर्भर होगा।
1: And to make a very important announcement, Farhad, as part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Shiva Shankari, an eminent writer. She'll be honored with the prestigious Padma Shri.

0: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर. और
1: उससे पहले हम बता दें कि फरहत, ये जो जितने भी पद अवार्ड्स हैं, व्हेन वी लिसन टू देम वी रियली गेट इंस्पायर्ड.
0: समय बताना बहुत ही जरूरी है, मैं भूल गई थी कि समय जो है ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमसे जुड़ सके.
1: सो इन ऑर्डर टू लिसन टू द फुल कॉन्वर्सेशन, प्लीज ट्यून इन टू 100.1 आकाशवाणी गोल टूडे. एंड लाइक यू नो एट 5:10 PM, दैट इज 10 मिनट्स आफ्टर परिक्रमा. एंड यू कैन लिसन टू इट ऑन न्यूज ऑन AIR ऐप as well, also on our YouTube channel News on AR Official. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
0: तो चलिए, सारा ने कार्यक्रम का समय तो बता दिया है और अब रुक कर लेते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं का, जहां वो जानकारी देंगे उनके पास क्या है विशेष.
1: एंड वी आर स्टार्टिंग अप परिक्रमा जर्नी विद माय फेवरेट स्टेट फरहत. वी आर स्टार्टिंग अ जर्नी फ्रॉम गोवा. वेल, टर्निंग रूरल यूथ इनटू स्किल्ड प्रोफेशनल्स वाज द फोकस ऑफ अ मेजर रीजनल समिट इन पणजी, विद स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू रिफाइन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. वी हैव अ रिपोर्ट ऑन द लेटेस्ट पुश फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट.
2: A two-day regional workshop concluded yesterday in Goa, focusing on the second phase of two major national initiatives, the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana and Rural Self-Employment Training Institute. These programs, known as DDU-GKY and RACTI, are designed to bridge the gap between rural talent and the modern job market. DDU-GKY acts as a placement-linked training scheme where youth learn specific trades for corporate jobs, while RACTI focuses on creating entrepreneurs through district level training centers. Representatives from eight states, including Uttar Pradesh and Bihar, met to coordinate action plans and improve training quality. Rajya Sabha member Sadanand Tanavade emphasized that strong cooperation between government and the industry is vital for rural development. Officials also reviewed the Management Information System, or MIS, which is the digital platform used to track student progress and financial management. The gathering aimed to ensure that rural training programs align with the national goal of a developed India by 2047. फॉर परिक्रमा, निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी.
0: चलिए सर, अब आपको चिड़ियाघर की सैर करवाते हैं.
1: अच्छा, चिड़ियाघर चलिए. कौन से, किस राज्य के चिड़ियाघर
0: जी? हम पटना जा रहे हैं सीधा. राजधानी पटना के चिड़ियाघर में अब पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी और यहां जल्द ही आगंतुकों को ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल देखने को मिलेगी. तो क्या है ये पहल, आइए जानते हैं.
3: पटना चिड़ियाघर अब पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनने जा रहा है. यहां जल्द ही कदमों के नीचे ही नहीं बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों पर भी रास्ते होंगे, जहां इंसान प्रकृति के और करीब होगा. पटना चिड़ियाघर के निदेशक हेमंत पाटिल कहते हैं कि पर्यटक यहां जल्द ही टॉय ट्रेन और ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल का आनंद उठा सकेंगे. वे बताते हैं कि वॉकवे के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया है.
4: देखिए, पटना जो है देश का इकलौता ऐसा जो है जहां पे 80% से हरियाली उपलब्ध है, तो ये तो हम लोग जैसे नीचे घूमते तो हम लोग को पता चल जाता है. बट जो हम लोग जैसे देखेंगे गेट संख्या 1 से 2 के बीच में कुसुम का एक अच्छा से लाइन लगा हुआ है, उसमें जो पेड़ के ऊपर की जो एक इकोसिस्टम रहती है वो अगर बच्चों को देखनी है तो उसके लिए ट्री टॉप वॉक जो है एक अनोखा पहल होगा. इसके ऊपर वर्तमान हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हॉक महोदय एवं शासी निकाय के जो भी सदस्य थे, इनके ऊपर गहन चर्चा हुई और इसी के मद्देनजर ट्री टॉप वॉक का निर्माण का एक प्रस्ताव है, ताकि बच्चों को ये अलग एहसास महसूस हो कि एक ट्री के टॉप में क्या इकोसिस्टम रहती है, किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनको नजदीक से देख सके.
3: साल 1973 में स्थापित पटना चिड़ियाघर वर्तमान में 800 से ज्यादा पशु पक्षियों का घर है, जहां हर उड़ान और पच्चाप एक नई कविता रचते हैं. साथ ही नेचर लाइब्रेरी की खामोशी, 3D थिएटर की रोशनी और जल उद्यान की ठंडक मिलकर इस चिड़ियाघर में अनुभवों का एक खूबसूरत संसार बनाते हैं. उम्मीद है कि ये नए कदम पटना जू में सिर्फ सुविधाओं में इजाफा ही नहीं करेंगे बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक नया रिश्ता भी गढ़ेंगे. सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना.
1: So Farhat, the tree top walkway in Patna Zoo, it really sounds intriguing. So, but let's move on to another place. And now we are heading up north to Ladakh. Well, in Leh district of Union Territory of Ladakh, vibrant cultural evening yesterday highlighted the fourth day of Sacred Relics Exposition. The cultural evenings are being organized at the main market in Leh, drawing audiences across sections of the society. Let's hear more from our correspondent.
5: The fourth day of the sacred exposition of the holy relics of Lord Buddha in the Union Territory of Ladakh.

0: Welcome and the introductory address, followed by a presentation of Larna, highlighting aspects of Ladakh's cultural heritage. The program then feature a performance by Gyamiru artists presenting the traditional Chapshkyang song and dance. Cultural troupes from Orissa and Gujarat presented a series of performances reflecting the rich diversity of regional dance and music traditions. The performances were interspersed through the evening, ensuring a balanced and engaging program flow. The LACS cultural group presented the Spau dance, adding a distinct local cultural element to the evening. A Ladakhi folk song performances by local artists were among the highlights, receiving an appreciative response from the audience. The cultural evenings being held daily as part of the exposition continue to attract participation from residents, visitors, tourists and officials, reflecting the blend of spiritual significance and cultural outreach associated with the sacred relics exposition. For Parikrama, this is Rigzanamo from Leh Ladakh.
1: और सारा अब सरकारी अस्पतालों की बात कर लेते हैं. वहाँ पर रक्तदान शिविर का जो है वो महत्व बताया गया है. और इसके अलावा डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जा रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की शुरूआत करने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है. कुरुक्षेत्र के लाडवा में केंद्रीय ऊर्जा और आवासन मंत्री श्री मनोहर लाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी. और उन्होंने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा हमारा शास्त्रों में कहा गया है. रक्तदान इसी भावना का सर्वोच्च उदाहरण है. और जब कोई व्यक्ति अपने रक्त का दान करता है तो वो न केवल एक जीवन को बचाता है बल्कि उस परिवार को भी खुशियों से भर देता है जो अपने प्रियजन को खोने के कगार पर होता है. और उन्होंने कहा है कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो या फिर कैंसर से.
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है. इसका अर्थ ये है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के जीवन का सहारा बन सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है, चाहे वह किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो, कैंसर से जूझ रहा मरीज, सर्जरी से गुजर रहा कोई व्यक्ति हो या फिर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रोगों से पीड़ित बच्चे, इन सभी के लिए रक्त जीवन का आधार है. आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 2 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है और अस्पताल में भर्ती हर 10 में से 1 मरीज को खून की जरूरत होती है. ये एक गंभीर स्थिति है जो हम सभी से सामूहिक प्रयास की मांग करती है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 154 रक्त केंद्र हैं. सरकार ने पिछले वर्ष तय लक्ष्य 3,30,000 यूनिट रक्त से बढ़कर 4,50,000 यूनिट से भी अधिक रक्त एकत्रित किया है. केंद्र सरकार से हरियाणा को वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक रक्तदान हेतु रक्तदान में उत्कृष्टता के लिए लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार भी मिला है. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा.
3: And another very good thing happened in the field of healthcare, especially in Delhi. Well, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, distributed artificial intelligence-enabled smart vision glasses to 40 visually impaired individuals, enabling them to interpret their surroundings through sound. आप देखिए AI को अगर हम लोग जो है लोग उससे कुछ लोग डर भी रहे हैं, but AI is a revolution, I would say. And अगर उसके जो है बहुत ही सूझबूझ से अच्छी तरह उसको use किया जाए, so it can actually provide a lot of solutions that we can't even think of. Imagine आप जो चश्मा लगा रहे हैं उसमें आपको जो है AI enabled sounds भी आ रही हैं. So I think that's so helpful for the visually impaired. And each glass that cost around 35,000 rupees, it was provided free of cost under the CSR initiative at a function that was held at Dr. RP Center of Ophthalmic Sciences. Let's hear more from our correspondent.
4: These AI-enabled glasses convert visual information into spoken term and also identify objects, recognize faces, detect obstacles, and assist with navigation. The device helps visually impaired persons manage their daily tasks independently, from identifying currency notes to locating doorways. Dr. Praveen Vasisht, in charge community of ophthalmology, said that AIIMS has planned to distribute around 1,700 such AI-enabled glasses to the persons with low visibility already identified from Delhi NCR schools. He said, Such classes will help them know about their surroundings so that they can lead a normal life. Sharing his experience with Akashvani News, a beneficiary hailed AIIMS initiative for providing the smart vision glasses, saying that they will be helpful for them in their daily life.

0: स्मार्ट विजन ग्लासेस से जो मुझे फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम 9 to 12 में, वो मेरे आने वाले साथियों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मार्ट विजन ग्लासेस के सहायता से वो बोर्ड पर क्या लिख चुके हैं टीचर, क्या है ब्लैक बोर्ड पर, क्या क्वेश्चंस है, क्या टॉपिक्स है, वो खुद ही देख करके समझ सकते हैं। अब जैसे कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे किताबें होती हैं जो कि ऑडियो में और ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हम प्रिंट बुक लेकर के अपने दोस्त की भी हम खुद स्मार्ट विजन प्रीमियम से पढ़ सकते हैं। लेकिन स्मार्ट विजन ग्लासेस हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होता है और हम चश्मे के थ्रू ही करेंसी निकाल करके जो स्मार्ट विजन ग्लास से हम करेंसी को देख सकते हैं।
1: Earlier, AIIMS had distributed 53 smart vision glasses to such individuals, and these smart glasses will help them

0: from their daily routine tasks easily. With Anand Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
1: और सारा आप खेलों में आईपीएल क्रिकेट की बात कर लेते हैं. आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया.
2: In business news, benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of de-escalation in West Asia. BSE Sensex climbed 941 points to close at 77,959. NSE Nifty rose 298 points to settle at 24,331.
1: और श्रोताओ, हम सीधे चलते हैं आजादी के सफर पर.
3: आज हम शहीद शक्तिदान को याद करते हैं. उनका जन्म 6 मई 1824 को जोधपुर में हुआ था. वो असम के जागीरदार के छोटे भाई थे. उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया. शक्तिदान अन्य जागीरदारों के साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के विद्रोही सैनिकों में शामिल हो गए.
4: विद्रोहियों ने आउवा में सितंबर 1857 में और फिर जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी. ब्रिटिश सेना ने आउवा किले पर कब्जा कर लिया और शक्तिदान को पकड़ लिया. नजरबंदी के दौरान ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई. इस वीर शहीद को नमन.
3: आज हम
1: और श्रोता, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. तो सारा सबसे पहले हम किसे याद कर रहे हैं?
2: Well, we are remembering Shiv Kumar Batalwi today, and we all know that he is a poet, a writer, and a great romantic at heart.
1: जी बिल्कुल, मोहब्बत जो है उनके लिए सब कुछ थी. ये एक ऐसे शायर और कवि थे जो एक छोटी सी जिंदगी में इतना नाम बना गए जो आज भारत में हर नौजवान के सीनों में धड़कता है. वो कहते थे, गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिहदा नाम मोहब्बत है.
2: That's right. He was the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award, and he gave a beautiful interview. We have a snippet from it. Let's listen to it.
5: और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया.
6: ठेस लगी हो आपको?
5: कहे की ठेस?
6: क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है, कविता लिखी है, ना उम्मीद होकर, दुखी होकर, कभी जिंदगी प्यार में दुख पाया.
5: इंदिरा जी, ऐसा नहीं था. ना तो मोहब्बत का फर्क रहा. हजारों औरतें जिंदगी में आईं, उनको स्वीकार ही नहीं किया.
6: क्यों?
5: ऐसी क्या बात थी? मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का. जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है, पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली है.
6: तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से प्यार किया है?
5: वो तस्वीर बनी नहीं मेरे से. कभी बालों से किसी के, किसी उंगलियों से, किसी के होंठों से, किसी के पैरों से.
6: तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो.
5: लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है.
6: एक आध हमको भी सुनाइए.
5: जरूर, गा के सुनो.
6: गा के सुनाइए. वाह, क्या बात.
5: मंजूर है तो मैं किताब ले लूं?
6: जरूर लीजिए.
5: तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा.

0: और सारा इनके गीत हिंदी में ना आकर भी बहुत लोकप्रिय हो गए.
1: That's right, and as I had mentioned earlier for her, that he was the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award in the year 1967 for his magnum opus, The Verse Play Luna.
0: और अब आइए आगे बढ़ते हैं. भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की आज पुण्यतिथि है. हम सबने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार जरूर देखी होगी, लेकिन इस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने और वो फिल्म आज काफी हिट भी साबित हुई है. और इसके अलावा गोविंद मुनीस की फिल्म आंसू बन गए फूल से जो है एक प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में. आइए सुनते हैं.

0: Today, Farhad, we are also remembering Orson Welles on his birth anniversary, an American actor and filmmaker remembered for his innovative work in film, radio and theatre. He's considered among the greatest and most influential filmmakers of all time. And of course, we know that he was just 21 when he directed the high-profile stage productions for Federal Theatre Project in New York City, starting with the celebrated 1936 adaptation of Macbeth and ending with the political musical The Cradle Will Rock in the year 1937. Of course, we also remember his first film in 1941, Citizen Kane, which he co-wrote, produced, directed and starred in as the title character, Charles Foster Kane. It has been consistently ranked as one of the greatest films ever made.
1: You were only 25, weren't you? I mean, everybody knows that you had the most astonishing contract that Hollywood has ever provided.
2: Yes.
1: Ever.
2: Not financially speaking, in terms of authority and yes. rights. Financially, it wasn't extraordinary in any way at all. It was extraordinary in the control it gave me over my own material.
0: And Farhad, just to tell a trivia about Orson Welles, ki unhone bahut se logon ko even in India mein kafi filmmakers ko inspire kiya. Guru Dutt khas taur se apni agar aap dekhe na unki jo lighting hoti thi natural light use karte the, that was because he was inspired by Orson Welles.
3: Aur ab ghadi mein baj chuke hain 4:59:41 aur waqt ho chala hai aap sabhi se anumati lene ka, to Sara aur Farhad ko ijazat dijiye.
0: Namaskar.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है. तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के प्रमुख श्री विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया है. विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को बहुमत के 118 आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीट की आवश्यकता है. अब श्री विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा. वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK के निर्वाचित विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी नेतृत्व से टीवीके को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है. 5 विधायकों वाले कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है. संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी श्री विजय की टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक समर्थन देगी. वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करने की बात कही है. राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है. असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया. राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ मृदा तत्व चिकित्सा उत्पाद

0: नियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद वियतनाम में भारत की दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा केमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। TVK chief Vijay has staked claim to form the next government in Tamil Nadu in a meeting with Governor Rajendra Vishwanath Arlekar today. His party, Tamilaga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party after the assembly election, needs at least 10 seats to hit the majority mark of 118. The next step is for Vijay to prove his government's majority in the House. Earlier, the Tamil Nadu governor reached Chennai from Kerala this afternoon. Interacting with media, he said he had received an email stating that TVK, which has won 108 constituencies, had sought an appointment with him. The party had also requested 2 weeks to prove its majority in the letter. In another development, a section of the elected MLAs from the AIADMK wants the party leadership to support the TVK. The Congress, which has 5 MLAs, has also decided to support the TVK. The decision was taken after a meeting of the newly elected assembly members from the Congress party, led by Tamil Nadu in charge Girish Chodankar. Speaking to media, Congress MP Karthi Chidambaram today said the Congress party will formally support a government headed by Vijay's TVK. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of May at Brigade Parade Ground. State BJP President Soumik Bhattacharya told reporters that the ceremony will start from 10 a.m. According to party sources, the event is expected to be attended by Prime Minister

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 5:40 हुए हैं और इस वक्त हम गाते गुनगुनाते का ये सफ़र थोड़ा सा तय करेंगे आपके साथ। गाते गुनगुनाते का ये सफ़र अंजलि है आपके साथ और आपको ले चलेंगे 90 के दशक में। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही जैसे बोलते हैं सदाबहार संगीत दीवाना फिल्म से, 1992 की फिल्म दीवाना, इसका एक हिट नंबर आप सबके नाम ऐसी दीवानगी। शाहरुख खान दिव्या भारती स्क्रीन पर दिखाई देते हैं इस गाने में और विनोद राठौर अलका याग्निक की आवाज़ में है ये मधुर संगीत। म्यूजिक डायरेक्टर है इस गीत के नदीम श्रवण और गीतकार

और अब एक और बेहतरीन नगमा अब तक पहुंच रहा है। विजयपथ फिल्म से गाना लिया है, 1994 की फिल्म है। अजय देवगन और तब्बू पर फिल्माया हुआ ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू का गाया हुआ है। जमीर काजमी साहब ने इस गीत को लिखा है और अन्नू मलिक का संगीत है। आज भी युवाओं को रोमांटिक फील दे जाता है गाना, जादू भरा ये गाना। आप सबकी नज़र, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि इस गाने को सुनकर आप भी अपना दिल, जैसे बोलते हैं ना, काबू में नहीं रख पाएंगे।

0: करनाल सा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: आकाशवाणी गोल्ड 100.1। और अब मैं आपको 1993 की एक सुपर हिट फिल्म का सुपर हिट गीत सुनवाने वाली हूँ। ताहिर हुसैन के बैनर तले बनी फिल्म हम है राही प्यार के, महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दर्शकों का दिल भी जीत लिया था। बताते हैं कि आमिर खान लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए खुद राजस्थान में गए थे इस गाने की शूटिंग के लिए। एक हास्य प्रेम कहानी पर फिल्म दिखती है जो दर्शकों के दिलों में घर कर जाती है। जूही चावला को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला इस फिल्म में, और फिल्म ने भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाया। ये गीत जो आप सुनने जा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में है, समीर का लिखा हुआ गीत, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। आइए सुन लिया जाए इस गीत को, बहुत ही प्यारा सा गीत है।

दोस्तों इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1। आकाशवाणी दिल्ली के आगे के सफर में आपके साथ रहेंगे सुनील दत्त। कुछ ही देर में वक्त रहेगा समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कशगम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीकी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नान ताऊ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद 3रे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor, along with senior leaders of the party, K. A. Sengottan, N. Anand, C. T. R. Nirmal Kumar, Arun Raj and Adhav Arjuna. TVK has secured 108 seats, falling short of the majority mark by 10 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Earlier in the day, Congress leader Girish Chodankar met Vijay and submitted a letter of support from five MLAs. In a related development, VCK chief Thol Thiruma Valavan said his party will soon decide on TVK's invitation to join its alliance. The VCK, which currently has two MLAs, is part of the DMK-led front. The governor had earlier told the media that he would take the final decision to call TVK to form the government in a day or two. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. According to party sources, the event is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and several chief ministers from BJP-ruled states, making it a significant

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गाने। और सदाबहार गाने में जो पहला गाने का जो मैसेज था, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, यानी कुल मिलाकर ये बात कि बुराई से दूर रहो, क्योंकि बुराई अच्छी चीज़ नहीं है।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, ये संदेश आपने पहले गीत का सुना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गाने। और सदाबहार गाने का उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि आपके सफर को हम आसान करने की हर भरसक कोशिश करते हैं। तो चलिए एक और गीत 1973 में आई फिल्म राजा रानी से।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं, किसी चोर को ढूंढती है। दर्दे फुरकत सहे रहे थे, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे?
2: जी, हम ये कह रहे थे कि अब संस्कृत में समाचारों का समय हो चला है, तो चलिए सुनते हैं समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम इत्यमुना सह संभाषणं विहितवान्। अनेकानि संधिपत्राणि च विनिमयीकृतानि। टीवीके प्रमुखेन विजयेन तमिलनाडोः राज्यपालेन सह कृतं मेलनं। बहुमतसंख्याभावे अपि प्रशासननिर्माणस्य प्रकटिता प्रतिबद्धता। असमराज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा अद्य स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। नूतनप्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहः प्रायः मई मासस्य एकादशदिनाङ्कानन्तरं भविष्यति। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य असम बिहार केरलं तमिलनाडु पुडुचेरी राज्येषु अतिवृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये अंकीय प्रौद्योगिकी दुर्लभ मृदा भेषज उत्पाद विनिमयनम् सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा अंकीय दान प्रणाली सहैव संस्कृति पर्यटन क्षेत्रेषु अनेकानि संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम महोदयेन सह संभाषणानन्तरं सन्धिः अजायत। चर्चावधौ उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषु विषयेषु अथ च परस्परहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विस्तृतां चर्चां कृतवन्तौ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीय संदेशे अकथयत् यत् वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितः सन् एकमासाभ्यन्तरे एव राष्ट्रपति तो लाम महोदयस्य इयं प्रथमा भारतयात्रा सूचयति यत् सः भारत वियतनाम संबंधाय प्राथमिकतां ददाति।
4: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
3: सः अवोचत् यत् न्यासं जीवन्तं स्थापयितुं भारतं वियतनाम देशस्य प्राचीन चम्पा सभ्यतायाः मायसन् अथ च न्यान् ताओ मन्दिराणां जीर्णोद्धारं कुर्वत् अस्ति।
4: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
3: वित्तीय संपर्कं वर्धयितुम् अद्य उभाभ्यां देशाभ्यां केन्द्रीय वित्त कोषयोः मध्ये सहयोगः सुदृढः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतस्य UPI अपि च वियतनाम देशस्य फास्ट पेमेंट इति प्रणाली इत्येतौ अपि शीघ्रमेव सम्बद्धौ भविष्यतः। सः अवोचत् यत् भारतस्य एक्स्ट ईस्ट नीतेः तथा च विजन ओशिन इत्यस्य वियतनामः एकः मुख्यः आधारस्तम्भो वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः तो लाम महोदयः अवोचत् यत् वियतनाम देशः भारतेन सह 50 वर्षाणां राजनैतिक सम्बन्धानां अपि च 10 वर्षाणां व्यापक रणनीतिक सन्धिः इत्यस्य परिणामान् अतीव महत्वपूर्णान् मन्यते। तमिलनाडु राज्ये तमिलनाग वेत्री कजगम TVK इत्यस्य संस्थापकस्य सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे नूतनं शासनं निर्मातुं राजनैतिक वार्तालापः तीव्रः अभवत्, यतः तस्य दलस्य बहुमत संख्या 18-100 न्यूना अभवत्। राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरः अद्य अपराह्णे केरलात् चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। नियुक्तः मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अद्य सायं राज्यपालेन सह मिलित्वा प्रशासनं निर्माणार्थं आवेदनपत्रं समर्पयिष्यति। यावत् तमिलनाडु राज्ये विजयस्य नेतृत्वे TVK प्रशासनस्य समर्थनार्थं दलानां मध्ये अनैक्यं विस्तृतं भवति, सहैव DMK कांग्रेस दलयोर दीर्घकालीनं मैत्रीभावमपि संकटग्रस्तम् अस्ति। कांग्रेस दलस्य यस्य 5 विधायकाः सन्ति TVK दलस्य समर्थनं कर्तुं निश्चिताः ते सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। असम राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा अद्य गुवाहाटी नगरस्य लोकभवने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य महोदयाय स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियायाः समाप्त्यनन्तरं मुख्यमंत्रिणा एतत् पदं त्यक्तम्। निर्वाचन परिणामानां घोषणानन्तरं राज्ये नूतन प्रशासनस्य निर्माणार्थं एतेन मार्गः प्रशस्तः अभवत्। त्यागपत्र समर्पणानन्तरं प्रसार माध्यमैः सह संभाषणं कुर्वन् डॉ. शर्मा अवदत् यत् राज्यपालेन मंत्री परिषदः त्यागपत्रं स्वीकृतं, सहैव हि वर्तमान विधानसभा विखंडिता। नूतन प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः प्रायः मई मासस्य 11 दिनांकानन्तरं भविष्यति। आगामी मुख्यमंत्रिणः विषये पृष्टे सति सः स्पष्टीकृतवान् यत् भाजपा विधायक दलं नेतृत्व विषये निर्णयं विधास्यन्ति। तदनन्तरमेव नूतन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदः निर्माणं भवेत्।
5: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
3: पश्चिम बंगे नूतन भाजपेति दल प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः मई मासस्य 9 दिनांके कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड क्षेत्रे आयोजितो भविष्यति। राज्य भाजपा अध्यक्षः शमीक भट्टाचार्यः वार्ताहरैः सह संभाषणे अवोचत् यत् समारोहः प्रातः 10 आरप्स्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः अपि च भाजपा शासित राज्यानां अनेके मुख्यमंत्रिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरीं समेत्य करैकल क्षेत्रे कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। ऋतु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु असमे, मेघालये, पूर्व राजस्थाने, हरियाणायां, चंडीगढ़े, सहैव दिल्ली नगरे कतिपयेषु स्थानेषु विद्युत्पातेन सह झंझावातस्य तीव्र वायोः च संभावना वर्तते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोर मध्ये क्रीडा भविष्यति। सायं सार्धसप्तवादने क्रीडा आरप्स्यते। ह्यः दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम इत्यमुना सह संभाषणं विहितवान्। टीवीके प्रमुखेन विजयेन तमिलनाडोः राज्यपालेन सह कृतं मेलनम्। असमराज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा अद्य स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र का समस्त परिवार आपका अभिनंदन करता है। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की संजीदा चाल पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, इस विषय वस्तु की विवेचना करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एस पी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका करजोर अभिनंदन।
2: जी थैंक यू प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज राइज ओवर 1%, सेंसेक्स गेन्स ओवर 900 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,300। इंडिया एंड वियतनाम एलिवेट टाइज टू एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेवरल एमओयूज लिंक्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में उछाल।

सेंसेक्स 900 अंक से अधिक उछला, वहीं निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हुआ। भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को और बेहतर तथा नीतिगत साझेदारी तक पहुंचाया। रेयर अर्थ और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत अलग अलग क्षेत्रों में कई मसौदे पर हस्ताक्षर किया और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे।

0: And before we take the main stories in detail, let's have a look at the disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, आप जानते हैं कि आज पूरे दिन के कारोबार में पूरे दिन के दरमियान कारोबार में कैसी गतिविधियां रही। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच आज बाजार का रुझान सकारात्मक रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर स्थिर हुआ। उधर विस्तृत शेयर बाजार ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों ही सूचकांकों में लगभग 2% का उछाल आया। इससे पहले सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते बाजार की शुरुआत अच्छी हुई। दोपहर के सत्र में सूचकांक थोड़े समय के लिए नकारात्मक जरूर रहे, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण बाद में उनमें तेजी से उछाल आया।
0: Benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of a de-escalation in West Asia. Sensex climbed 941 points to close at 77,959, while Nifty rose by 298 points to settle at 24,331. However, the broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. Mid-cap 100 soared nearly 1.8% and the small-cap 100 jumped more than 1.9%. Earlier, the market opened with a gap up amid positive global cues. Although the indices briefly turned negative during the afternoon session, they later rebounded sharply, supported by easing crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो लगभग 6.5%, ट्रेंट लगभग 4% और एशियन पेंट्स के शेयर लगभग 3.5% बढ़े। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम रिलायंस लगभग 2%, वहीं लार्सन एंड टूब्रो और पावर ग्रिड लगभग 1% से अधिक गिरे।
0: In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 21 out of the 25 sectors edged upward. In the top gainers, telecommunications rose over 2.9%, services climbed 2.9%, and PSU banks added 2.8%. Among the top losers, power dropped almost 0.5%, utilities lost 0.2%, and FMCG as well as energy dipped more than 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,862 companies advanced, 1,365 companies declined, and 167 companies remain unchanged.
1: और अब जानते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 68 पैसे मजबूत होकर 94.61 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 97.73 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, आज जो हमने बढ़त देखी है, हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 1.25% के आसपास की हमने बढ़त देखी, तो इसको आप कैसे रेखांकित करते हैं?
2: देखिए प्राची, जो डेवलपमेंट्स हो रही है
1: जी,
2: चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, तो दोनों ही फेवरेबल हैं। सबसे पहले तो जो US और ईरान के बीच में एक डी एस्केलेशन, जैसे अर्जुन ने बताया कि होने जा रहा है
1: जी,
2: जिसका कि भरपूर फायदा हो सकता है, लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल है। पहले भी हमने बहुत बार ऐसी संभावनाएं देखी हैं, उसके बाद में वो बातचीत नहीं हो पाई, तो उसके बाद वापस से मार्केट्स वॉलेटाइल हुई,
1: तनाव
2: का माहौल वापस हुआ
1: जी।
2: लेकिन आज की जो वजह है उसकी मैं ये समझता हूँ कि अब मार्केट्स को काफी हद तक पता चल गया है कि बहुत ही

0: रियलिटी रह सकती है। मार्केट्स आपने सब्साइडेड भी देखी होंगी कि जब कोई एक्शन ही नहीं हुआ,
1: जबकि अभी भी कुछ तय नहीं है,
0: अभी भी तय नहीं,
1: लेकिन फिर भी एक सकारात्मक रुझान की तरफ जो झुकाव
0: है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो कल एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा बोनांजा सरकार ने अनाउंस किया, 2.55 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो ईएलजीसी स्कीम जो है, इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम होता है, वो सरकार ने अनाउंस किया, दैट दिस इज कॉल्ड 5.0। इससे पहले भी सरकार काफी बार अनाउंस कर चुकी है, कोरोना के टाइम पे किया सपोर्ट करने के लिए। तो इसका एक बहुत बड़ा जो फायदा है बिजनेसेस को, क्योंकि अब आप देखिए कि बिजनेसेस आर नाउ मोर देन 95% इन दी एमएसएमई कैटेगरी, एमएसएमईज में ही ज्यादातर बिजनेसेस है। तो इतने बड़ी तगाद में ये जो अनाउंसमेंट आई है, इसका एक तो जो इम्पैक्ट आ रहा था वेस्ट एशिया की वजह से, जो वेस्ट एशिया की वजह से एक इम्पैक्ट था कि उनके जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, और उनकी जो वर्किंग कैपिटल है बहुत इम्पैक्टेड है, और उनका जो आगे इन्वेंट्रीज हैं वो पाइल अप हो रही हैं क्योंकि वो सामान जो है स्टक अप हो गया है। तो ये बहुत सारी चिंताएं बनी हुई थी जिसको सरकार ने इतना बड़ा बोनंजा देके एक बहुत ही भरपूर तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है, और उसकी बहुत सराहना भी हुई है इंडस्ट्री की तरफ से। मैं अपनी इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम की बात करूंगा कि हमने बहुत सराहना की है, हमने इसको एक भरपूर प्रयत्न बताया है
1: जी, एविएशन में भी एक अच्छा हमें
0: एविएशन में जो ये 2.55 लाख करोड़ का जो हमने बात की है, इसमें से 5,000 करोड़ जो है वो स्पेसिफिकली एविएशन के लिए है, जैसे बाकी का जो अमाउंट है जो एमएसएमईज नॉन एमएसएमईज, एमएसएमईज के लिए उन्होंने 5 साल का जो निर्धारित समय दिया है जिसमें 1 साल का मॉरेटोरियम रहेगा, और एविएशन के लिए 7 साल का समय दिया है जिसमें 2 साल का मॉरेटोरियम रहेगा।
2: डॉक्टर शर्मा, लेट्स आल्सो लुक एट द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स। 529 कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5,015 कंपनीज, एंड व्हाट वी आर सीइंग इज दैट द रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर हैज गॉन अप बाय 10%, द नेट प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप बाय 15.4%. So clearly the fundamentals in terms of valuation is quite high as well, and that's leading to a buying interest in the markets. We saw that the DIIs are once again the net buyers in the market. But what we also saw today is telecom go up. There seems to be a relief announced for specific companies in the telecom who are debt ridden, 27% reduction in the AGR liability. And tell us about this 5G monetization that the telecom industry can take advantage of.
0: Yes, Arjun, as you rightly said that this is another factor which is supporting the market right now, because we discussed the de-escalation in the global market between US and Iran, and thereafter some settlement, peace settlement between US and Iran, and this bonanza given by the government for the support of MSMEs and the aviation sector. This 5G again is a supportive factor for the markets that is coming in a big way for the telecom companies, and I believe this will push up the profitability and the overall trajectory of the telecom companies in the system, and I believe this is a great development and support the overall economic scenario.
1: डॉक्टर शर्मा, अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें, सेक्टर्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो निवेशकों के लिए और श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि आज की तारीख में जब हम हाइज भी देख रहे हैं, लोज भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो आपकी नज़र में, आपकी राय में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं चुनिंदा जो कि हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, मैं और अर्जुन भी जानना चाहते हैं कि जहाँ निवेश किया जाए?
0: देखिए, जो अभी हमने देखा कि एयरलाइन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट था, स्टॉक्स भी काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे, तो इस बोनांजा के साथ मैं समझता हूँ कि उसमें भरपूर एक अच्छा सेक्टर है, प्रॉमिसिंग सेक्टर है। और आने वाले टाइम में जो जैसे मैं पहले बार बार ही बताता हूँ कि इंडिया का हर एक सेक्टर ही बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, फिर भी जो खास करके जो मैं फोकस में लेके आना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एक बहुत ही जिसको हम सदाबहार एक सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट एक्टिविटी चलती रहेगी, नॉट ओनली फॉर ईयर और डेकेड, दिस विल कंटिन्यू फॉर मेनी मेनी डेकेड्स, लगभग 2047 तक तो अपना लक्ष्य है कि हम

0: विकसित भारत बनना है, तब तक तो कोई इसमें कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि इसके ऊपर कुछ ऐसी डेवलपमेंट नहीं होगी। सेकंड इज द बैंकिंग, कि जब अपना हम इंफ्रा डेवलप करते हैं, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, अभी हमारा साइज इकोनॉमी का 4 ट्रिलियन डॉलर है, आने वाले टाइम में जो ज़्यादातर जो आंकड़े हैं जो हमने देखा है, जो स्टेटिस्टिक्स है वो बताता है कि 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का मीडियन जो एस्टिमेट है, बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट्स आए हैं, किसी का 45 तक भी आया है, तो लेकिन मीडियन वैल्यू जो है वो लगभग कोई 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर के बीच बनती है। तो आप देखिए कि यहाँ से 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन तक अगर हम जाते हैं या 30 भी जाते हैं, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को एस्टिमेट करिए कि उसे जो बैंकिंग की कितनी ज़रूरत होगी, और जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत होगी, और जिससे कि ओवरऑल डिमांड ट्रैजेक्टरी, मैं देखता हूँ कि हमने बहुत सारे FTA किए हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी
1: जी,
0: लेकिन साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितनी FTA से अपॉर्चुनिटी है उतनी हमारी डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारे पास जो FTA की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास अपने कंट्री में भी है, तो हमें डबल डिमांड, जो इधर का डिमांड भी पूरा करना और जो उधर विदेशों का डिमांड पूरा करना, तो हमारे पास एक ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं, जो सेक्टोरल कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं, जो होने लाजमी है, तभी तो हम अपना डोमेस्टिक डिमांड और ग्लोबल डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रॉमिसिंग सेक्टर।
2: सर, PSU banks went up by 2.8%. What is it in their quarterly results and other metrics like net interest income and non-performing assets that has leading to valuation, or is it just an uptrend?
0: Arjun, as I earlier said that economy is going to become 30-35 trillion dollar economy. So now the estimates, optimistic estimates by Moody or the other organizations or our domestic estimates, we will be growing at around 7% in the 26-27. So that will give a great boost to the sectors like the banking sector, which is becoming more and more robust with the growth of the economy.
1: श्रोताओं, ये तो थी हमारे घरेलू बाजार की बात, लेकिन अब आइए रुख करते हैं एशिया और यूरोपियन बाजार की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में वृद्धि देखी गई। वॉल स्ट्रीट में रात भर हुई बढ़त, तेल की कीमतों में गिरावट और मजबूत वित्तीय नतीजों से निवेशकों का ऊंचा मनोबल आज के कारोबारी सत्र में नजर आया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 6.4% से अधिक बढ़कर 7385 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 1.2% से अधिक, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 1.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.1% से अधिक बढ़ा। वहीं बात जापान की करें तो जापान में संवैधानिक स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहे। यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें श्रोताओं, तो प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में तेजी देखी गई। फ्रांस का कैक 3.3%, जर्मनी का डैक्स लगभग 2.8% और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 2.6% ऊपर कारोबार करता नजर आया।
2: डॉक्टर शर्मा, वी आर सीइंग अ वीकर डॉलर इन द डॉलर इंडेक्स 97.43 एंड व्हाट वी आर सीइंग 97.73 इनफैक्ट, अ करेक्शन इंक्लूडेड। कॉस्पी वेंट अप बाय 6.4%, यूरोपियन इंडिसेस गोइंग अप एज मच एज 2.6 to 3.3%। हाउ रिलायबल इज दिस रेजोल्यूशन ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट?
0: Yes, Arjun, as they are in de-escalation situation, so I believe if there is some de-escalation or some peaceful talk, then dollar may decelerate once again. More deceleration can be seen in the dollar, because now US has to focus on its economy, because they have huge losses from this war. So dollar deceleration is natural at this juncture, when the largest economy is facing such kind of headwinds, and there is no, I believe, no gain from this war at all for the US economy. So I believe if there is peace at the global level, particularly between these two economies, then the dollar may face more softening stance and deceleration.
2: Well, let's have a look at the US markets now. The benchmark S&P 500 and the tech-heavy NASDAQ composite closed at record highs yesterday as investors weighed strong corporate earnings and a dip in crude oil prices. NASDAQ composite surged over 1% to 25,326. The S&P 500 advanced 0.8% to 7,259. And the Dow Jones industrial average jumped more than 0.7% to 49,298. Meanwhile, US President Donald Trump said in a social media post that significant progress has been made toward

0: crude prices decelerate, then the dollar also decelerates. Because dollar strength is not from the U.S. economy. That is only because of the global situation, the tussle between the U.S. and Iran, and the volatility in the crude oil prices.
1: But there's also demand for the U.S. currency to buy oil.
0: That's why. When the crude prices go up, then the demand for dollar increases and the dollar becomes strong. When the prices are decelerating, then the demand for dollar recedes and the dollar also starts decelerating. That is the one-to-one correlation between these two factors in the recent days.
2: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, और भी खबरों की विवेचना करने के लिए आपके पास हम लौटेंगे, मगर श्रोताओं उससे पहले जानिए कि और क्या खबरें हैं। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर एक तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। मूडीज ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक व्यवधानों से पहले तय किए गए मुद्रास्फीति के अनुमानित लक्ष्य सहित भारत के स्पष्ट और पूर्वानुमानित मौद्रिक नीति ढांचे से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और बाहरी तनावों से सफलतापूर्वक लड़ने में सहायता मिलती है। डॉक्टर शर्मा, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें, आप बताएं कि इस मुद्दे की क्या गंभीरता है भारत के लिए।
0: देखिए, इससे भारत एक सुदृढ़ इकोनॉमी है
2: जी,
0: और मैं ये कहूँगा कि पोस्ट कोविड ईयर्स में पर्टिकुलरली भारत की रेजिलियंस बहुत इंक्रीज हुई है
2: जी।
0: अगर हम पीछे 5 वित्त वर्षों का विश्लेषण करें ग्रोथ का, तो हमारी ग्रोथ जो है वो ऑन एन एवरेज 7.5% रही
2: जी।
0: पहले हम 9.7 पे ग्रो किए, फिर 8.2 पे किए, फिर 7.6 पे किए, और लास्ट ईयर भी हम जो था ग्रोथ रेट अच्छा रहा, 7.1 पे हम ग्रो किए अकॉर्डिंग टू द न्यू सीरीज।
2: सतत बढ़ोतरी देखी हमने,
0: बढ़ोतरी देखी। और दूसरा कारण होता है रेजिलियंस का, एक आपका एक्सपोर्ट ट्राजेक्टरी कैसा रहा। एक्सपोर्ट्स में हम लगभग कोई पिछले 5 साल में डबल हो गए। हमारा जो लास्ट वित्त वर्ष में 25-26 में जो एक्सपोर्ट हुआ टोटल, वो $860 बिलियन, एक बहुत बड़े जो नंबर है, हिस्टोरिक नंबर है, तो जो हमने अचीव किया। तीसरा जो रेजिलियंस का कारण है कि हमने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स, अवर इन्फ्लेशन इज स्टिल इन द टॉलरेंस बैंड ऑफ आरबीआई। तीसरा कारण। चौथा जो कारण है, हमने फिस्कल डेफिसिट को अच्छे से एड्रेस किया। फिस्कल डेफिसिट एक बहुत ही बेनाइन ट्रैजेक्टरी में है, तो उसको हम कितना ऊपर से जब कोरोना के टाइम से अब तक हम लेकर आए। और जो पांचवा कारण मैं ये कहूँगा, हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो हमारी ओवरऑल रेजिलियंस को और सपोर्ट करती है। जब कितने भी जो भी संकट रहे ग्लोबल लेवल पे, बहुत सारी इकोनॉमीज प्री कोविड लेवल से भी नीचे हैं, जो उनके कोविड के पहले के ग्रोथ रेट थे उनसे भी नीचे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो, जो हमारा अगर कोविड के पहले का 5 साल का एवरेज देखेंगे, तो हमारी अभी के बाद के 5 साल की एवरेज इज मच मच हायर देन अवर प्रीवियस एवरेज
2: जी।
0: सो दैट्स व्हाई जो रेजिलियंस है हमारी, वो एकदम से, जिसको हम कहेंगे, कायम है एकदम से जी।
1: In more news, India and Vietnam today agreed to elevate their relationship to an enhanced comprehensive strategic partnership, marking a significant step forward in bilateral ties. They've also inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across a spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Narendra Modi said that to boost financial connectivity, today both sides have decided to enhance cooperation between the central banks. Prime Minister said India's UPI and Vietnam's fast payment system are also going to be linked soon. He added, with Vietnam's cooperation, India will also broaden its relations with ASEAN.
3: Bharat aur Vietnam ka bilateral trade pichle ek dashak mein double hokar $16 billion tak pahunch chuka hai. 2030 tak ise $25 billion

0: trading around 1.6% up at 1,52,700 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.3% higher at 2,52,800 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 1.6% बढ़कर 1,52,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 3.3% बढ़कर 2,52,436 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए।
2: आपके पास टाइम कम है, नहीं तो आप गोल्ड के ऊपर व्यू जरूर लेते थे।
1: जरूर जरूर, समय की बात है, आगे बढ़ते हैं।
0: And let's have a look at the closing headlines. Benchmark domestic stock market indices rise over 1%. Sensex gains over 900 points. Nifty settles above 24,300. India and Vietnam elevate ties to enhance comprehensive strategic partnership. Several MOUs inked in various fields including rare earth and digital technology, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
5: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउन ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू

0: घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
1: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both the nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. Securities and Exchange Board of India, SEBI, has formed a special task force called Cybersuraksha.ai to tackle rising cybersecurity risk linked to artificial intelligence. The move comes amid concerns that advanced AI tools such as Claude Mythos can rapidly identify and potentially exploit system vulnerabilities at scale. SEBI stressed the need for stronger coordination, real-time information sharing, and continuous monitoring to prevent large-scale cyber incidents in the interconnected securities market. And US President Donald Trump has said that the Iran war and blockade could end with a deal, but bombing could intensify if Iran doesn't agree to one. In a social media post, Mr. Trump said that if Iran agrees to give what has been agreed to, then Operation Epic Fury will be at an end. He also added that the US blockade would also allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. US President also threatened that bombing will resume if Iran doesn't agree to the deal. And that is the end of this news bulletin.
1: Surkhiyon mein.
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेमीकॉन एक्सपर्ट अशोक चांडक, आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में जानकारी साझा की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
3: अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया, माइक्रो एलईडी के लिए बहुत प्रयास करके साउथ कोरिया का कोलैबोरेशन करके ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए, जिसमें कि पहली माइक्रो एलईडी का फैब इंडिया में लगेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा।
2: अशोक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत दो और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये जो फैसला है, इस फैसले को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
4: एज अ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन एंड सेमी, हम इन दो परियोजनाओं को अप्रूवल को भारत के सेमीकंडक्टर यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जिससे तेजी से विकसित हो रहा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा और देश के वैश्विक टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लक्ष्य में नई गति मिलेगी। ये जो दो प्रोजेक्ट कल अप्रूव किए, एक असेंबली एंड टेस्ट ऑफ चिप्स का है और दूसरा डिस्प्ले रिलेटेड है। और सेमीकंडक्टर तो आज डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव है, जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में उसका उपयोग होता है। इसके तहत ये बड़ी आधुनिक तकनीक है और इस मंजूरियों के साथ में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी 12 परियोजनाओं को और प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है और यह दर्शाता है कि भारत एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: अशोक जी, अब तक जो हमारी देश की उन्नति अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम देखें, बहुत अधिक समय नहीं हुआ हमें इस शुरुआत को किए हुए, लेकिन कम समय में ही काफी उन्नति की है। आपके नजरिए से अब तक की इस प्रगति को किस रूप से आप देखते हैं?
4: मैं कहूंगा कि सेमीकंडक्टर की प्रगति हमारी बड़ी उल्लेखनीय है, जो कि बाकी कई देशों में इस स्पीड में काम नहीं हुआ। हमारे भी कुछ साल के कार्यकाल में ही 12 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन सेटअप चालू हो गया, दो प्रोजेक्ट अभी मास प्रोडक्शन या कमर्शियल प्रोडक्शन में हो गए, दो और प्रोजेक्ट इस साल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है, बल्कि क्लियर एग्जीक्यूशन और आउटकम है। तो जो ISM हम बोलते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये सारे जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, इसको काफी सहायता मिल रही है गवर्नमेंट से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये कंपनियां भी काफी उत्सुक हैं जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा करें और इसके जो प्रोडक्शन होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाएगा और वैल्यू एडिशन बढ़ेगा।
2: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे ECLGS भी कह रहे हैं, जो MSME सेक्टर को बिना अतिरिक्त कोलेट्रल के ऋण

0: देने के लिए शुरू की गई। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा है।
1: इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के समय में हमारे जो एमएसएमईज और एविएशन सेक्टर को जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम प्रूव हुई है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। बेसिकली ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है एक तरीके से, और ये मॉडल अगर आप देखें तो कोविड के समय से ये मॉडल स्थापित हुआ है। और इस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉरल हैजार्ड नहीं रहता। जो ECL GS 5 लाया गया है, ये इन सबसे बड़ा स्कीम है, क्योंकि यही टाइम है जब लोग अल्टरनेट सप्लाई चेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। टोटल सपोर्ट इसमें 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा।
0: शिशिर जी, इस तरह का जो कदम है, ये हमारे एमएसएमई, जीडीपी और रोजगार में किस तरह से प्रभावी होगा, किस तरह से लाभ पहुंचाएगा?
2: देखिए, ये जो ECLGS है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके पहले संस्करण की बात अगर हम करें जो कि कोविड के समय में हुआ था, और उस समय इसका मकसद ये था कि जो हमारे एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो जीडीपी की बात हो चाहे वो रोजगार की बात हो, उनके लिए जो पूंजी की जरूरतें हैं उसको हम कैसे फौरी तौर पर पूरी कर सके, और वो भी आसान शर्तों पर। तो इसके चार संस्करण आए 2020 से लेकर के अब तक। अब जब पश्चिम एशिया का जो संकट आया, इसके बाद हमारे उद्योग जगत को काफी परेशानी हुई, खासतौर पे जो कार्यशील पूंजी, हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2,55,000 करोड़ रुपए की जो ऋण सुविधा है उसकी गारंटी देने के लिए ये योजना लाई गई है। अब इस योजना में 5,000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया है केवल और केवल एयरलाइन सेक्टर के लिए, और उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि चूंकि एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो ज्यादा परेशानी में हैं, क्योंकि उनके लिए तेल जो है, जो कि उनके परिचालन का लगभग 40-45% योगदान करता है, उसकी लागत काफी बढ़ी है। तो अब ये जो 2,55,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है, ये 8 या 9 मई, जिस दिन से नोटिफिकेशन इश्यू होगा, उसके बाद से लेकर के 31 मार्च 2026 तक जितने भी कर्ज सैंक्शन होंगे यानी कि मंजूर होंगे, वो इस योजना में शामिल होंगे। याद रखिए कि ये वन टाइम स्कीम है, यानी कि एक बार ही आप इसमें फायदा ले सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे एमएसएमई, नॉन एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर के लिए जानना जरूरी है कि उनके लिए ब्याज की दर क्या होगी। तो जो एमएसएमई और नॉन एमएसएमई हैं, उनके लिए बैंकों की ओर से मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दर 9% की अधिकतम सीमा तय की गई है। एनबीएफसी से यदि वो कर्ज लेते हैं तो उनके लिए अधिकतम सीमा 13% की है। और मान लीजिए कुछ जो उद्योग हैं जिसके लिए ब्याज दर की एक व्यवस्था लागू की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ईबीबीएलआर, हमारे श्रोताओं के लिए समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आज के दिन में आप और हम जैसे एक व्यक्तिगत तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो हमें रेपो रेट आधारित ब्याज दर पे मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये एमएसएमई के लिए अनिवार्य है, नॉन एमएसएमई के लिए अनिवार्य नहीं है। तो उनके लिए भी ब्याज की दर की अलग सीमा तय की गई है, जो कि आपके MCLR से 0.75% तक हो सकता है। तो ये ब्याज दर की बात है,
0: कम या हो सकता है या ज्यादा हो सकता है?
2: देखिए, 9% अगर है तो वो काफी बेहतर स्थिति है अगर आप एमएसएमई की बात करिएगा, क्योंकि कई जगहों पर जो ब्याज की दर है, खासतौर पर वर्किंग कैपिटल में, जो उससे ज्यादा भी हो जाता है। तो ये एक संतुलित है, और इससे एक फायदा ये होगा कि आपके लिए कर्ज जो चुकाने की परेशानी जो है वो होगी नहीं। और ऐसे भी पहले चार जो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के देखे, उसमें एनपीए बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये इस स्कीम की रूपरेखा है। तो एक पहला ये कि ब्याज की दर 9%, 13%। दूसरा ये कि 31 मार्च 2027 तक जो कर्ज मंजूर किए जाएंगे, और तीसरा ये कि एमएसएमई और नॉन एमएसएमई के लिए कर्ज चुकाने के लिए 5 साल का समय होगा, एयरलाइंस को 7 साल का समय।
0: इसमें ये भी देखा जा सकता है कि जैसे सरकार तो नजर रखती है हर एक चीज पर, तो सरकार ने ये भी देखा कि जब हमें एनपीए, जैसा आपने बताया कि कम होने की बात जहां पर की जा रही है, तो छोटे व्यवसायियों को अधिक आकर्षित करने के लिए, एमएसएमई से जोड़ने के लिए कदम उठाया गया।
2: ये जो छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए दोहरी मार है। पहली तरफ तो हमारे देश में एक बड़ी समस्या कि जो बड़े उद्योग को ये माल देते हैं, वहां से इनको पैसा पाने में समय लगता है, और अभी के समय में जब बड़े उद्योग भी परेशानी में है तो उनके लिए और दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का काम चलता रहे, उनके लिए कार्यशील पूंजी जुटाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए ये कदम उठाया गया। लेकिन बड़े उद्योगों की भी जो है वो सुध ली गई है, क्योंकि जो नॉन एमएसएमई की हमने बात की वो बड़े उद्योगों के लिए, तो उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। एक और बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये कर्ज उन्हीं को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड साफ हो, यानी कि जिनका कर्ज जो है चुकाने का जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर रहा है, मतलब क्लीन स्लेट कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज की सीमा जो है वो

0: 100 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए और एयरलाइन सेक्टर के लिए 1500 करोड़ रुपए की है।
1: और आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गन्ने के बारे में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है इसके बारे में क्या जानकारी दी है।
2: 2012-13 में अगर हम देखें तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है कैबिनेट ने, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। करीब करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% अधिक देने का जो मिशन रहता है उसके कंपैरिजन में ये करीब 200% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल इंडिया वेटेड कॉस्ट, करीब 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों को इस पूरे प्रोग्राम में मिलेगा।
1: शिशिर जी, कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 में चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करते हुए इसे 365 रुपए प्रति क्विंटल किया है, तो ये लगभग 10.25% की मूल वसूली दर पर आधारित भी है। और वैष्णव जी ने यह भी कहा कि इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। सभी के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं इस फैसले को?
0: देखिए, गन्ना इकलौता कृषि उत्पाद है जिसके लिए एक अलग व्यवस्था अपनाई गई है। बाकी के लिए आपको पता है 21-22 जो हमारी फसलें हैं उनके लिए हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का बात करते हैं, जबकि यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का है। और इसमें एक और सुविधा ये दी जाती है कि इसके ऊपर अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो बोनस का ऐलान कर सकती हैं, जो कि चीनी मिलें जो होती हैं उनको देना होता है। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, चीनी मिल को इसका भुगतान करना है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी के समय में जब चीनी का उत्पादन ठीक ठाक चल रहा है वहां पर, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इस तरह के फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 365 रुपए का किया गया है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो जो 2014 में 220 रुपए प्रति क्विंटल का एफआरपी था जो कि अब 365 हो गया, और पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो वो 355 रुपए का जो शुगर सीजन होता है उसमें रखा गया था। इसमें आप समझिए कि किसानों को लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बेहतरी की बात होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। और जब हमारे देश में 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, उनके हाथ में अगर अतिरिक्त पैसे आते हैं, संसाधन आते हैं, तो इससे मांग बढ़ेगी जिसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो आप अगर शुरुआत करेंगे कहेंगे कि गन्ने का एफआरपी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर इसका अंत देखेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इसका किस तरीके से फायदा।
1: शिशिर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो कपास का जो क्षेत्र है उस पे भी लगातार सरकार का मतलब एक रुझान रहता है कि उसको भी हम लगातार देखते रहें, बाधाओं को दूर करना, घटती वृद्धि, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर किया जाए, तो इसीलिए 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के आप क्या दूरगामी लक्ष्य देखते हैं और इसका क्या परिणाम होगा?
0: देखिए, हमारे देश में इस समय लगभग 32 लाख कपास के पैदा करने वाले हमारे किसान हैं, और इनके लिए कई तरह की जो वैल्यू एडेड या कई तरह के जिसको कहते हैं ना यूनिक जो कपास होते हैं, अपने आप में विशिष्टता वाले कपास होते हैं, उनके पैदावार को कैसे बढ़ावा देना। तो ये जो कपास क्रांति की जो बात की जा रही है ये केवल और केवल पैदावार बढ़ाने की बात नहीं, इसमें शोध को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है, इसमें बाजार को भी बढ़ावा देने की बात कही गई। तो इसमें यह है कि अगर आप देखेंगे तो 5F जो सरकार ने जो बात कही है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, यानी कि आप खेत से विदेश, यानी कि आप किस तरीके से दुनिया के बाजार में आप और मजबूती से आ सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक पारंपरिक तौर पर कपास का एक जो सिले सिलाए कपड़े हैं उनका एक निर्यातक देश रहा है। अब वो निर्यात में और मूल्यवर्धन हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, जहां पर आपको कई देशों से अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, चाहे आप वियतनाम की बात करें, चाहे आप अपने पड़ोस में बांग्लादेश की बात करें, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस कपास क्रांति का जो है वो महत्व है।
1: तो शिशिर जी, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, जिस तरह से हमने ये देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा, और फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वर्तमान में 33, इसे बढ़ा करके 37 करना इसका मुख्य निर्णय है। तो ये जो फैसला लिया जा रहा है, संख्या में वृद्धि की जा रही है न्यायाधीशों की, तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकुशलता को और अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए इस तरह के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं?
3: जो आज प्रेजेंट डेट पर सेंशन डिस्टेंस है वो है 34 की, जिसको बढ़ाकर 38 करने की बात कही जा रही है। 37 जजेस प्लस एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब आपको समस्या की गंभीर

0: स्थिरता जो हमारी जुडिशरी आज फेस कर रही है वो ये है कि पूरे देश में अगर आप देखें करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं और नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन हमारे देश में आज भी केवल 22 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि हम पाते हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पर ये 150 से 200 तक ये संख्या है पर मिलियन पॉपुलेशन। अप्रोक्सीमेटली करीब 92,000 केसेज एज ऑन टूडे सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। आज की डेट में जो अवेलेबल जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, ऑल्दो सेशन स्ट्रेंथ आपकी 34 है, लेकिन 32 जजेस आज की डेट में काम कर रहे हैं, और 32 जजेस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हर बेंच में दो जज होते हैं तो इफेक्टिवली आपकी 16th, और अगर हम 34 माने तो 17 बेंचेस काम कर रही हैं, और 17 बेंचेस के सामने अगर आज 2,500 केसेस लगे हैं, डेटा ही आपको ये बताने में सक्षम है कि हमारे जजेस ओवरबर्डन हैं। और इस चीज को देखते हुए अगर 4 की संख्या बढ़ाई जा रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है।
1: आशीष जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम सांझ ढले। कहते हैं कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लेकिन इस बात को, इस कहावत को हम कुछ हद तक झुठला देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो निधि है, वो संपत्ति है पुराने दौर की, जिसे हम संजो के रखे हुए हैं। और जब जब हम उन गीतों को सुनते हैं, उन मधुर कर्णप्रिय रागों को सुनते हैं, उन बातों को सुनते हैं, उन गाए हुए कलाकारों को सुनते हैं, तो यूं लगता है कि वो दौर फिर से जीवंत हो उठा। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर सांझ ढले में आज उस दौर को जीवित करने की एक अतनी सी कोशिश लेकर मैं सुनील सोयाल आपके समक्ष हूँ।

अमूमन हिंदी फिल्मों में जो गीत बनते हैं वो अभिनेत्री के सौंदर्य पर उसकी प्रशंसा में बनते हैं, लेकिन ये गीत ठाकुर जनरल सिंह, 1966 में ये फिल्म आई थी और इसके जो अभिनेता थे वो थे दारा सिंह, उन पर ये उनकी प्रशंसा में ये गीत है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढले।

हिंदी फिल्मों में यूं तो अभिनेता हर दौर में बड़े खूबसूरत और बड़े हैंडसम रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के यानी कुछ अभिनेताओं के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो यूं माना जाता है कि ईश्वर ने उन्हें खूबसूरती, उन्हें जो व्यक्तित्व प्रदान किया है वो बेमिसाल है। उन्हीं में से एक कलाकार थे विनोद खन्ना, उन्हीं पर यह फिल्म आया गया। गीत आपने सुना हम तुम और वो, 1972 में ये फिल्म आई थी। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढली।

1982 में आई फिल्म बेमिसाल से आपने गीत सुना खफा हूँ, किशोर कुमार की आवाज़ और इसका चरित्र चित्रण जो किया गया था वो अमिताभ बच्चन पर किया गया था। कहते हैं कि एक समय पर विनोद खन्ना साहब इतने ज़्यादा मशहूर हो गए थे कि वो अमिताभ बच्चन साहब को भी टक्कर दे देते थे। एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं आपसे प्रोग्राम सांझ ढले में।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये गीत परिवार फिल्म 1968 में आई थी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और अब प्रोग्राम सांझ ढले का ये आखिरी

0: अल्ले
1: हमें क्या सोचते,
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के,
1: आहे।

0: इस गीत को सुनकर मेले का वो जो सारा दृश्य आपके आंखों में जीवंत हो उठा है। 1970 में आई पवित्र पापी फिल्म से गीत आपने सुना रफ़ी साहब और आशा दत्ताई की आवाज़ में, और इस गीत के साथ ही आप मुझे यानी सुनील सियाल को फिलहाल कुछ देर के लिए दीजिए अनुमति। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों का वेतन 20,000 से 23,000 रूपये से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 38,100 रूपये हो गया है। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केंद्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रूपये से बढ़ाकर 35,420 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय केवल शिक्षकों के लिए आर्थिक लाभ नहीं बल्कि शिक्षकों के समर्पण और कठिन परिश्रम का सम्मान है। अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के समान वेतन मिलेगा जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लू की कार्य योजना पर लगातार काम चल रहा है। वहीं सरकार ने पूरे शहर के लिए लू की कार्य योजना जारी की है जिसमें सरकार ने हर वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया है। इस योजना पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है और दिल्ली में भीषण गर्मी से निपटने के लिए 13 जिलों के लिए 13 वाहन तैनात किए गए हैं। इन वाहनों द्वारा वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, ORS और टोपी और तौलिया जैसी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें भीषण गर्मी के दौरान चौराहों पर खड़े लोगों

0: उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्कूल अथॉरिटीज को बोला है। हॉस्पिटल्स में हीट वेव से रिलेटेड सारी मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी, एक्स्ट्रा बेडिंग की फैसिलिटी, इस सबका भी समाधान दिल्ली सरकार ने किया है।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने छात्रों से एआई और ज्ञान आधारित परिवर्तन के युग में गुरुवाणी के ज्ञान का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब किसी संस्थान का संकल्प राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है तो उसकी उपलब्धियां राष्ट्र की उपलब्धियां बन जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान सभी विद्यार्थियों के मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान उत्कृष्ट परंपरा के माध्यम से युवाओं में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी विकसित कर रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित विश्वविद्यालय के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह आकर्षक विदेशी नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित चार राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। सीबीआई ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए दिशा निर्देश जारी किए। श्री प्रधान ने कहा कि ये समितियां विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विकेंद्रीकृत शासन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में एसएमसी के गठन पर विशेष बल दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने में एसएमसी की अहम भूमिका है।
3: बच्चों की चौमुखी विकास के लिए उनकी पढ़ाई, उनकी स्वास्थ्य, उनकी व्यवस्था, उनकी मेंटल हेल्थ, CWSN, इस सारा विषयों के ऊपर सरकार की दायित्व है व्यवस्था बनाना। लेकिन व्यवस्था की आगे जो हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, मेंटरिंग की आवश्यकता है, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ा भूमिका है। आने वाले दिनों में देश में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की एक संस्कृति बनानी पड़ेगी, एक जन आंदोलन बनानी पड़ेगी।
1: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नए दिशा निर्देशों से विद्यालय प्रबंधन समितियां एसएमसी महज निगरानी करने वाली संस्थाओं से ऊपर उठकर एक वास्तविक विद्यालय समुदाय संचालन संस्था बन जाएंगी। श्री सूद ने कहा कि एसएमसी अब बच्चों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी कल्याण, डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर से जुड़े एरावत रिसर्च फाउंडेशन एआरएफ के साथ एक समझौता करेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली की पर्यावरण नीतियों को भरोसेमंद डेटा और व्यवहारिक नतीजों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सुशासन के जरिए लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके और इस समझौते का उद्देश्य पर्यावरण विभाग और एआरएफ के बीच एक सहयोगी ढांचा तैयार करना है। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये जानकारी दी।
4: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: श्रीमती सुजाता ने बताया कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
5: जो घरेलू कुकिंग एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज

0: नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
1: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज बकरवाला और नांगलोही में चल रहे अवैध एलपीजी रिफिलिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने के लिए जमा किए गए 96 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को संसद में पेश करने को मंजूरी दिए जाने की सराहना की है। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम न्याय प्रक्रिया को नई गति देगा, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाएगा और गरीब तथा दूरदराज के याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज डॉक्टर आरपी नेत्र विज्ञान केंद्र में 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एआई से लैस स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके माध्यम से वो ध्वनि के जरिए अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे।
2: एआई आधारित ये स्मार्ट चश्मे दृश्य जानकारी को बोली जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं, साथ ही ये वस्तुओं की पहचान करने, चेहरों को पहचानने, रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने और नेविगेशन में सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यह उपकरण दृष्टि बाधित व्यक्तियों को उनके दैनिक कार्यों को बिना किसी बाधा के करने में मदद करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सामुदायिक नेत्र विज्ञान के प्रभारी डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि एम्स ने दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में पहले से चिन्हित कम दृष्टि वाले बच्चों को ऐसे लगभग 1700 AI सक्षम चश्मे वितरित करने की योजना बनाई है।
3: इस चश्मे में जो चीज दिखाई देनी चाहिए उसको सुनने में चेंज किया। जैसे चश्मा अगर किसी बच्चे ने लगाया हुआ है, ये कनेक्ट होता है स्मार्टफोन से और ये अपने आप बता देते कि आसपास सराउंडिंग में क्या क्या चीजें अवेलेबल। अगर बच्चे को कोई किताब पढ़नी है तो चश्मे की वजह से उसकी जो फोटोग्राफ आ जाती है और उसकी जो फोटो होने के बाद वो उसको सुन सकता है। किसी बच्चे को नोट की पहचान करनी है तो उसको नोट को चश्मे के सामने रख दे, चश्मा अपने आप बता देता है कि ये इतने रुपए का।
2: आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा करते हुए एक लाभार्थी ने एम्स की इस पहल की सराहना की और कहा कि ये स्मार्ट विजन चश्मे उनके जीवन में काफी मददगार साबित होंगे।
4: जब मेरे पास ये स्मार्ट ग्लास नहीं था तो टीचर्स आते थे जो कि बोर्ड पर लिख करके चले जाते थे, तो हमारे साथी जितने भी फ्रेंड्स थे नॉर्मल वो तो सब चीजें पढ़ लेते थे लेकिन हमें पता नहीं चलता था जब तक कि टीचर्स नहीं बताते थे। स्मार्ट विजन ग्लासेस से जो मुझे फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम 9th to 12th में, वो मेरे आने वाले साथियों को फेस नहीं करनी पड़ेगी।
2: इससे पहले एम्स ऐसे 53 स्मार्ट विजन चश्मे वितरित कर चुका है जो लाभार्थियों को अपने दैनिक कार्य आसानी से करने में सहायता कर रहे हैं। आनंद कुमार के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का एक विशेष स्मृति अंक जारी किया। यह अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य में संचार, अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली पुलिस ने आज छात्र पुलिस कैडेट प्रोग्राम के अंतर्गत जहांगीरपुरी स्थित के ब्लॉक के राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में ई सुरक्षा पर 16वां सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 80 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और डिजिटल खतरों से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब खेलों के वैश्विक मंच पर नई पहचान दर्ज कराने जा रही है। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के रोमांचक मुकाबले आयोजित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में टिकटिंग, स्वयंसेवकों की भागीदारी और विस्तृत खेलों की समय सारिणी से संबंधित जानकारियां भी जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजधानी के आधुनिक खेल सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय आयोजन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता भारत के उभरते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच पर उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि

0: राजधानी को देश की प्रमुख स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नितिका गुप्ता।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। ये पहल 4 नए श्रम संहिताओं के माध्यम से किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित है, जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक स्तंभों के अंतर्गत समेकित करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। राजधानी में आज दिन के समय हल्की धूप रही। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आसमान साफ रहेगा, साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिकल काची वीसी के प्रमुख तोल तिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई, जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित थे। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत तथा वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के बीच की कमी को कम करके अनुसंधान तथा विकास के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने विभिन्न क्षेत्रों में नए विचारों, उत्पादों या प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने बताया है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। In Tamil Nadu, TVK chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party, K. A. Sengottaiyan, N. Anand, CTR Nirmal Kumar, Arun Raj and Adhav Arjuna. TVK has secured 108 seats, falling short of the majority mark by 10 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Earlier in the day, Congress leader Girish Chodankar met Vijay and submitted a letter of support from five MLAs. In a related development, VCK chief Tol Tirumavalavan said his party will soon decide on TVK's invitation to join its alliance. The VCK, which currently has two MLAs, is part of the DMK-led front. The governor had earlier told the media that he would take the final decision to call TVK to form the government in a day or two. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. According to party sources, the event is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and several chief ministers from BJP-ruled states, making it a significant political gathering. Meanwhile, Trinamool Congress leader Mamata Banerjee convened a meeting with her party's victorious candidates. The gathering took place at her residence in Kalighat, where 69 out of 80 winning candidates were present. In Assam, Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma today tendered his resignation to Governor Lakshman Prasad Acharya at the Lok Bhavan in Guwahati following the completion of the assembly election process. The resignation has paved the way for the formation of a new government in the state after the declaration of results. Speaking to the media later, Dr. Sarma said the governor has accepted the resignation of the Council of Ministers and dissolved the present Legislative Assembly. He added that the governor has asked the outgoing Council of Ministers to continue as a caretaker government until a new government is formed. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced

मैं शब्द बनूं, तुम गीत हो जाना, अधर चुप रहे तो संगीत हो जाना। आकाशवाणी दिल्ली के सभी सुधी श्रोताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि संगीत दुनिया की वो कला है जो शब्दों के इतर शब्दों के परे है। जब शब्द मौन हो जाते हैं तो संगीत हृदय को स्पर्श करता है। लेकिन कहते हैं कि झरनों से मधुर संगीत न सुनाई देता जो उनकी राह में पत्थर न होते। प्रोग्राम मधुरिमा शुरू करते हैं और आज जिस राग के बारे में हम बात करने वाले हैं उस राग का नाम है राग केदार।

0: से मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

प्रोग्राम मधुरिमा में आज बात राग केदार की। राग केदार भगवान कृष्ण का प्रिय राग है। ये राग कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों मध्यम लगते हैं, परंतु तीव्र मा का प्रयोग अवरोह पंचम के साथ किया जाता है। इसके आरोह में ऋषभ और गंधार वर्जित है, परंतु अवरोह में ऋषभ का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। इसके गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का राग है।

मधुरिमा में आज राग केदार की बात हम कर रहे हैं। केदार राग में न्याय स्वर सा, मा और पा है। ये राग कल्याण थाट से निकला है। इसमें शुद्ध व तीव्र दोनों मा लगाए जाते हैं। इसके आरोह में रे और ग को नहीं लगाते और अवरोह में ग नहीं लगाते, इसलिए इसकी जाति जो है वो औडव शाडव मानी जाती है। वादी स्वर मा और संवादी स्वर सा माना जाता है।

राग केदार की हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा में। राग केदार जिसे केदारा भी कहा जाता है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है। भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। ये राग भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही उच्च स्थान रखता है। ये राग कई मधुर स्वरों से सुशोभित है। ये राग सा और मा स्वरों की पुनरावृत्ति है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा। मधुरिमा में आज हमने बात की राग केदार की। अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है।

0: कार्यक्रम मधुरिमा यहीं संपन्न होता है। आप सुनिए स्पोर्ट्स कैन।
1: कोई मेरा फिर किस किया।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। तो श्रोताओं, आज की तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: तो भारत के नज़रिए से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है खेल की जगत के लिए, जहां बीसीसीआई ने कई अहम घोषणाएं की हैं आईपीएल को लेकर के। इसके अलावा मुक्केबाजों, भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले एक नज़र अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बीसीसीआई ने आईपीएल के प्लेऑफ मैच के लिए शेड्यूल और वेन्यू की घोषणा की, फाइनल अहमदाबाद में। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम। अंडर 15 वर्ग में 27 पदक पक्के किए। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय कंपाउंड टीम का निराशाजनक प्रदर्शन, हालांकि व्यक्तिगत स्पर्धा के खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया कल राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के आसार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो बीसीसीआई ने आज महत्वपूर्ण घोषणा की है, आईपीएल के प्लेऑफ मैच के लिए शेड्यूल और वेन्यू की घोषणा कर दी। और जबकि बेंगलुरु के बजाय अहमदाबाद लगातार दूसरे सत्र में 31 मई को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के फाइनल की मेजबानी करेगा। और पहला जो क्वालिफायर मैच होगा वो धर्मशाला में, जबकि दो अन्य प्लेऑफ मैच न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। तो जो फाइनल मैच के लिए जो वेन्यू की का चयन किया गया है वो बदला क्यों गया बेंगलुरु से अहमदाबाद, क्या कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, बेंगलुरु की नॉर्मली जो विनिंग टीम है, ऐसा जो कन्वेंशन है कि वहीं पे भी फाइनल होना चाहिए, जिससे बेंगलुरु में होना चाहिए था कि आरसीबी चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन है
0: जी।
1: मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कारण की वजह से बीसीसीआई ने उसको अहमदाबाद में शिफ्ट किया है। इसका प्रधान कारण है क्योंकि जो कैपेसिटी है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, उस पर टिकट का जो बंटवारा होता है
0: जी।
1: कुछ बंटवारा पब्लिक के लिए होता है, कुछ डेलीगेट्स के लिए होता है। जब हमें जो जितना मालूम है कि उनका जो सरकार या जो कॉरपोरेशन है जिसके

0: नजरे में जो जिसका अंडर में वो स्टेडियम आता है उसने शायद कुछ कोटा ऑफ टिकट ज्यादा मांगा है जो बीसीसीआई को पसंद नहीं है। ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण है कि आपको शायद पता होगा कि ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक स्टैम्पीड भी हुआ था
1: जी।
0: इसका क्राउड मैनेजमेंट का भी एक ऊपर का एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि देखिए फाइनल तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम में होगा और इसलिए अहमदाबाद को चुना गया है।
1: तो क्या आप मौसम को भी एक कारण मान सकते हैं, क्योंकि अभी उस जगह पे कई बार बारिश के आसार होते हैं तो कई बारिश की भेंट ना चढ़ जाए मैच?
0: देखिए मौसम तो कहीं कहीं पे भी खराब हो सकता है, जैसे अहमदाबाद में भी हो सकता है, धर्मशाला में भी हो सकता है, न्यू चंडीगढ़ में भी हो सकता है। वेदर को तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मई महीना ऐसा है कि मानसून का ऑनस्लॉट, जब भी मानसून आने वाला है तो कहीं भी हो सकता है, साउथ इंडिया में हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में हो सकता है, हालांकि चांसेस अहमदाबाद में कम है।
1: ओके तो फाइनल मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। क्वालिफायर का पहला मैच 26 मई को धर्मशाला में, जबकि 27 मई को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में, और जो दूसरा क्वालिफायर मैच है 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और इधर हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। अभी 14वां ओवर चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर है, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। दोनों के बीच अभी शीर्ष पर बने रहने की एक जंग चल रही है।
0: एब्सोल्युटली अजय, आपने एकदम सही कहा कि ये मैच दोनों टीमें चाहेंगी कि जीते। जैसे आपने ऑलरेडी हेडलाइंस में कहा है कि प्लेऑफ्स आने वाला है, हालांकि वैसे टीम्स को और भी मैचेस खेलना बाकी हैं और कुछ भी उलट फलट हो सकता है, मगर पंजाब किंग्स, आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स कोशिश करेंगे कि उनके सारे मैचेस कम से कम जीते और टॉप फोर में रहे।
1: और इससे पहले कल के मैच में अगर हम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली में मैच खेला गया, पूरा मैच कैसा रहा ये जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए। समीर रिजवी ने नाबाद 40 रन की पारी खेली, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 रन बनाए। 156 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर और 3 गेंद में 2 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच जीत लिया। संजू सैमसन ने 7 चौके और 6 छक्के जड़ते हुए नाबाद 87 रन बनाए। कार्तिक शर्मा ने संजू का साथ देते हुए 41 रन का योगदान दिया। सैमसन को उनकी जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ चेन्नई के 10 मैच में 10 अंक हो गए हैं। वहीं हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्ले ऑफ की राह मुश्किल हो गई है। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस हार के साथ चेन्नई जहां प्ले ऑफ के लिए अभी भी अपनी पारी उन्होंने जीवंत रखा है अपने आप को, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए राह मुश्किल हो गई है।
0: एकदम ठीक, जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया है कि देखिए कोई भी जैसे टॉप फोर जो टीम्स है वो चाहेंगे कि वो जीते और टॉप फोर में रहे, मगर जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स कमबैक कर रहे हैं, स्पेशली पहला 3 मैच हारने के बावजूद भी जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से उनका बॉलर्स ने कमबैक करवा रहे हैं, ये तो शानदार है। और चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 6th पोजीशन में है, 10 मैच खेल के उनको 10 पॉइंट है और उनके साथ जो लीडर्स है उनके साथ सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो वो जो मैं बोल रहा था कि अभी भी इतना मैचेस बाकी है, टीम को 14 मैचेस खेलना है, चेन्नई सुपर किंग्स के पास और भी 4 मैचेस है, इस 4 मैचेस में अगर 2-3 मैच जीत भी गया तो शायद वो टॉप 4 में भी आ सकता है।
1: बिल्कुल, और वहीं अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल हो गया है कि आने वाले 4 मैच उन्हें जीतने ही पड़ेंगे, अगर नहीं जीतती है तो फिर प्लेऑफ में जाने का उनका
0: एकदम टिक गया, क्योंकि देखिए जिस तरह से टीम का जो ट्रेंड है, जिस तरह से बॉलिंग स्पेशली 2 जो सीनियर बॉलर्स है खास करके अक्षर पटेल और कुलदीप, इनका बॉलिंग चल नहीं पा रहे, बैटिंग चल नहीं पा रहे। आप देखिए कल का स्कोर देखिए, 155 7 विकेट, कोटला में अपना होम ग्राउंड में अगर आप रन नहीं कर पाएंगे या कैप्टेंसी डिसीजन, टीम मैनेजमेंट के डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे
1: जी। तो इस बीच हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने टी20 की ताजा रैंकिंग जारी की है और बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि ईशान किशन दूसरे स्थान पर हैं। वहीं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 7वें स्थान पर है। और गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो भारत के वरुण चक्रवर्ती दूसरे और जसप्रीत बुमराह 5वें स्थान पर है। तो मौजूदा समय में आईपीएल चल भी खेला जा रहा है और इस बीच जो रैंकिंग आई है, अभिषेक शर्मा तो शीर्ष पर बरकरार हैं, लेकिन ईशान किशन ने कभी सोचा भी नहीं होगा

0: कि अभी लंबे समय से वो मतलब टीम का कभी हिस्सा होंगे, 1.5 साल पहले उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, और अब इस तरह से कमबैक करना तारीफ के लायक है।
1: T20 का देखिए, T20 का ब्यूटी यही है कि जो आपने शायद हम लिटिल सरप्राइज कि संजू सैमसन का नाम नहीं है। अभिषेक शर्मा का फॉर्म देखिए, IPL में बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। संजू सैमसन जिसने कल मैच जितवाया है चेन्नई सुपर किंग्स का, उनका फॉर्म देखिए बहुत ऑरेंज कैप के लिए दावेदार है। और ईशान तो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, आप जो लाइव मैच चल रहे हैं उसमें हम बैटिंग देख रहे हैं, जिस तरह से बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं उनको देखिए कि हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है।
0: जी, अब बात मुक्केबाजी की। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, जहां भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक जीतकर आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 की लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 15 में से 14 पदक पक्के किए, जबकि अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक के कर लिए हैं। तारीफ के लायक है ये जूनियर खिलाड़ी,
1: बहुत ही तारीफ के लायक है। और ये भी ये है जया कि जो श्रोताओं को बताना चाहिए कि अंडर 15 अंडर 17 कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी, हमेशा की तरह भारतवर्ष के जो बॉक्सर्स हैं ये हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। आप ये साल का जितना भी परफॉर्मेंस देखिए, जूनियर बॉक्सर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, 2028 में लॉस एंजेलिस, इनका जो 15 और 17 साल इसका जो पीक टाइम होता है 5-6 साल के बाद आएगा, या तब देखिएगा तब ओलंपिक्स के टाइम होगा, एशियन गेम्स के टाइम होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम होगा। तो आप आराम से कह सकते हैं ये इसमें शायद हमारा भविष्य देखता है, भारतवर्ष का बॉक्सिंग भविष्य बहुत ही बेहतरीन है,
0: बिल्कुल उज्जवल भविष्य देखने को मिल रहा है। उधर शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है और पोडियम पर जगह बनाने में दोनों ही टीमें असफल रही। हालांकि इस भारतीय टीम को प्रतियोगिता में पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था
1: हमेशा के। देखिए इसका पहले राउंड जो हुआ था वो मेक्सिको में भारतवर्ष ने एक गोल्ड मेडल जीता था
0: जी, विमेंस टीम ने
1: जी, और विमेंस टीम और मेंस टीम दोनों में वर्ल्ड कप विनर्स है, वर्ल्ड चैंपियंस है, जाकि ज्योति वेनम है, प्रगति है, आदिति गोपीचंद स्वामी है, जिस लड़के विमेंस टीम में ये है, इसने क्वार्टर फाइनल में तुर्की के साथ हार चुके हैं। और मेंस टीम में उजास देवतलेश, साहिल यादव और कुशल दलाल सबको ही एक्सपीरियंस्ड है। फिलहाल उसने जो कांटे का जो टक्कर हुआ था सेमीफाइनल में वो हार चुके थे, और चाइना के साथ ब्रॉन्ज प्लेऑफ में उसने हार चुके हैं। ये देखिए किस तरह क्यों हम निराशा हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इस ये कंपाउंड जो है इसमें हमारा सबसे ज्यादा उम्मीद है, खास करके 4 महीने बाद जब हमारा एशियन गेम्स जापान में होंगे। अगर कोई गारंटीड है कि हमको इसमें गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा वो है कंपाउंड आर्चरी। मगर इसलिए शंघाई में प्रदर्शन जो हुआ है, अगर ये इस तरह का परफॉर्मेंस है तो थोड़ा तो निराशा तो होंगे, मगर हाँ अभी भी उम्मीद है। जैसे आपने कहा कि मिक्स्ड में आदिति और ओजास का जो पैर है वो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ऊपर में है, और इंडिविजुअल राउंड्स अभी भी बाकी है। शायद कल आप जो हेडलाइन बताएंगे आप अच्छी खबर बताएंगे।
0: हाँ, हालांकि अभी व्यक्तिगत स्पर्धा में राहत मिली है भारत को, क्योंकि सभी भारतीय कंपाउंड तीरंदाज अगले दौर में पहुंच गए हैं।
1: जी,
0: पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा, साहिल जाधव, कुशल दलाल, उन्होंने अगले अगले राउंड में अपनी जगह बना ली है। वहीं महिला वर्ग में मधुरा और ज्योति, जबकि आदिति और प्रगति ने भी
1: एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कंपाउंड आर्चरी जो है लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में 2020 में इसको इंक्लूड किया गया है। हमारा प्रदर्शन ओलंपिक्स में कभी आर्चरी में अच्छा नहीं रहा है, जैसे दीपिका कुमारी का आप जानते ही होंगे कि, मगर ये जो चांसेस है, ये जो ज्योति है, आदिति है, ओजास है, सबका चांसेस है कि 2028 लॉस एंजेलिस में हमारा आर्चरी से जरूर मेडल आएगा।
0: बिल्कुल, और उम्मीद भी करते हैं। इस बीच एक खबर ये भी आई है कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया कल राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी कि NSF के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, और नई दिल्ली में होने वाले इस बैठक में चर्चा के कई मुख्य विषय हो सकते हैं, जिनमें से डोपिंग को अपराध घोषित करना और आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारियां भी शामिल हैं।
1: देखिए, जो श्रोताओं को बताना मैं चाहता हूँ कि 25 और 26 अप्रैल को

0: जी,
1: श्रीनगर में एक चिंतन शिविर हुआ है, उसमें एक खेल का, श्रीनगर खेल एक का एक रेजोल्यूशन तैयार किया गया है कि देश को आगे कैसे लिया जाए। इसमें तो स्टेट लेवल का साथ मीटिंग हुआ था, सारा जितना स्टेट्स आया था उनके साथ मीटिंग हुआ था मनसुख मांडविया जी का। अभी जो कल का जो आपका जो मीटिंग है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, एशियन गेम्स आने वाला है, इसमें हमारा प्रदर्शन प्रिपरेशन कैसा रहेगा, एक तो एक तरफ है। दूसरा तरफ ये भी है कि डोपिंग का जो आपने कहा है कि आपको पता होगा कि भारतवर्ष दुनिया में एक नंबर डोपिंग में है, ये हमारे लिए अच्छे खबर नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आपको हमको 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करना है, हमारा एक क्लीन इमेज वर्ल्ड के सामने दिखाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी एनएसएफ के ऊपर रहता है और उनके अंडर जितना एथलीट्स है, क्योंकि बॉर्डर के पास हमारा रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। वैसे हमारे पास टाइम है इसको सुधारने के लिए, शायद ये मनसुख मांडविया जी कल ये विचार करेंगे, बातें करेंगे और देश को आगे खेल का जगत में ग्लोबल इमेज कैसे सुधारा जा सकता है, इसका डिस्कशन जरूर होगा।
0: बिल्कुल, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब चलते चलते एक और खबर ये बता दें कि दुनिया भर में कल यानी 7 मई को हर साल की तरह वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाएगा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाने के पीछे की जो सोच होती है वो एक बेहतर दुनिया के लिए एथलेटिक्स के महत्व को समझना, और हम कहते हैं ना कि एथलेटिक्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मंच है, इसमें इसके अंदर ही 100 से भी ज्यादा इवेंट्स हैं।
1: जी, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स।
0: बिल्कुल, तो इसका उद्देश्य है कि एथलेटिक्स के प्रति युवाओं को किस तरीके से प्रेरित किया जाए। चूंकि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सौमित्र जी, आपका भी धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
3: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय

0: देव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
1: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
2: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम की वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन

0: बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती है। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत

0: के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: Culture, connectivity aur capacity building ke saath saath security, sustainability aur supply chain resilience हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: The Prime Minister said to keep the shared heritage alive, India is restoring the Mai Son and Nhan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization.
2: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सोन और नान टावर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
1: President Tho Lam said Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President

0: चर्चा का विषय है।
1: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोध गया कि पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक, आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: गुरजीत जी। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोध गया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
2: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
1: जी, तो
2: थोड़ा अचंबा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया है। पिछले दो साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर

0: ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया, और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें, उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
1: जी बिल्कुल, भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है? थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाएं।
0: जो आसियान के देश हैं वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया, और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा भेजा, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडिया वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे उन्होंने भारत से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए, भारत ने INS कृपाण उनको भेंट में दिया, और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
1: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
2: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो इमो रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत ज़रूरत है, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूर्वी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया हैं जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भारत के साथ काम कर सकता है, चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहां भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज हैं और मिनरल जो कैपेसिटीज हैं उनका हम फायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
1: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी ITCA को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट ITCA को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के

0: बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
1: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटीका है, इसको अपडेट करने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
2: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा, हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो $16 बिलियन की ट्रेड है वो वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है $120 बिलियन है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद $30 बिलियन तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटीका में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके, लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए इंडोनेशिया और वियतनाम उन देशों में से हैं जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो वियतनाम है ना उसका GDP पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कैम्बोडिया हो, तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है और उसके देखिए क्या FTAs है यूरोप के साथ और जापान के साथ और अब वो CPTPP में भी शामिल है, तो वियतनाम FTA से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस, और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में काफी मजबूत है और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है, पहले बफलो मीट जाता था, वहीं जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ गई, पहले तो चावल अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ गई है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ गई है, जो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है और वियतनाम के लिए भी।
1: जी बिल्कुल, प्रोफेसर मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब $16 बिलियन को पार कर गया है और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो $25 बिलियन का है, ऐसे में आईटीका की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
3: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध है उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान FTA नहीं साइन हुआ था उसके पहले से ही काफ़ी मजबूत थे, उसकी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशन जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अलग आयदान पे चल रहा था। भारत आसियान FTA का जहां तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीका से या भारत आसियान FTA से बहुत फायदा उठा रहे हैं और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस

0: व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे। वियतनाम के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या ईवी व्हीकल्स हो, वियतनाम ईवी व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे ईवी व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आर्टिगा के संदर्भ में भारत की चिंताएं दूसरे देशों से ज्यादा हैं बनस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर फिशरीज एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर जैसा कि मैंने कहा उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। तो आईटीगा का जो रीवैल्यूएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा। और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीगा का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पर उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच MOU से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
1: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
0: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीज़ों को समझने में और अपनी खरीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना UPI सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है, एक छोटे पैमाने पे जहाँ कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। वियतनाम की तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन भारतीय रुपये के मुकाबले भी काफ़ी वो कमज़ोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और खास तौर पे बोध गया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा। और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया है और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफ़ी सुगम होगा और काफ़ी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना या भारतीयों के लिए वियतनाम यात्रा करना।
1: और आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक, यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
1: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री

0: मंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा। आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
1: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसॉन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार ही साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसॉन में शिव की

0: इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा, हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
1: जी
0: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहते। यही आप बड़ा सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस हैं, वियतजेट और वियतनाम एयरलाइन, वो भारत बहुत आ रही है। और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहां से हर हफ्ते 90 फ्लाइट भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाती है, और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है। वियतनाम के छोटे शहरों में, भारत के टीयर टू शहरों में जाते हैं। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हुआ है। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम के, वियतनाम से यहाँ इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है। लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए, तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा, पीपल टू पीपल करे और बिजनेस बढ़ाए। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा, और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं, तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
2: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी, तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था, तब भारत ने होचिमिन का साथ दिया। होचिमिन 1959 में भारत आए, और तब से लेके 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ, तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स में या एक्ट ईस्ट नीति के कॉन्टेक्स में एक सेंट्रल पिलर है, जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है। और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी, अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है, उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें, जिसमें सामरिक तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं, और अब हमने इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया, जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है, और इस न सिर्फ इन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पे स्थापित रहे और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की, जिससे भारत के जो रक्षा उपकरण है, मेक इन इंडिया नीति के तहत जो भारत का रक्षा एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे वियतनाम फायदा उठा सके, क्योंकि वियतनाम की चिंताएं बहुत गहन है दक्षिण पूर्व चीन सागर में। चीन को लेकर के जो भी चीन की 9-लाइन है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं, उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं, वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है, और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है। बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। ये जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना, जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशन

0: सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या हैं, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज है इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटरऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें, तो ये प्रमुख तौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को समझें कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो, तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है, और साथ में इंटरऑपरेबिलिटी जरूरी है कि दोनों देश मिल करके कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज या खतरे को से कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच? चूंकि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
0: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की। तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ एमओयू में ये शिक्षा का क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकल्केट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए, तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये एमओयूज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
1: गुरजीत जी, आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को अगले एक दशक में आप कहां देखते हैं?
3: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए। ना हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर हैं। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में और वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों, हाई इलेक्ट्रॉनिक, सेमी कंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम आईटीगा के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे एफटीज हैं उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूं हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
1: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे,

0: सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोध गया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है, तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे भविष्य की जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: चर्चा का विषय है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत

की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। और खेल में उज्बेकिस्तान में ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: that could bring an end to the conflict in the Gulf. Sources familiar with the talks have said both sides are working on a one-page, 14-point memorandum of understanding. The proposed deal includes Iran agreeing to pause nuclear enrichment, while the United States would ease sanctions and release billions of dollars in frozen Iranian funds. Both sides are also expected to relax restrictions on movement through the Strait of Hormuz. The shift in tone comes after President Donald Trump announced a pause in Project Freedom, the U.S.-led naval escort mission in the Strait of Hormuz, citing great progress in negotiations. India's young boxers have ensured 27 medals in the Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent, Uzbekistan. The Under-15 girls team today delivered an outstanding performance, securing 14 out of 15 medals, while the Under-15 boys also performed strongly, ensuring 13 out of 15 medals. In IPL cricket, chasing a target of 236 runs set by Sunrisers Hyderabad Punjab Kings for 69 for 4 in 8 overs at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath, main Arun Kumar. मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने दोनों देशों की साझा विरासत को संजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबर। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस द्वारा रात भर किए गए हमलों में 27 लोगों की मौत और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। और अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
4: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
5: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
4: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में

कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन तुआन से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरा होने पर स्वागत किया और इसके निरंतर सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और लचीलेपन और स्थिरता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। श्री तुआन ने भी भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक नेतृत्व की सराहना की और भारत के अनुभव से विशेष रूप से कर सुधारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और इसे गति देने में सार्वजनिक निवेश के मामले में सीखने में गहरी रुचि व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 30 दिनों की वार्ता अवधि होगी। इस दौरान समुद्री प्रतिबंधों और क्षेत्र में अमरीकी नौसेना की उपस्थिति को धीरे धीरे कम किया जाएगा। ये बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वार्ता में महान प्रगति का हवाला देते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी नेतृत्व वाले नौसैनिक सुरक्षा मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को स्थगित करने की घोषणा के बाद आया है। 3 दिन पहले शुरू किया गया ये अभियान सामान्य समुद्री परिवहन गतिविधियों को बहाल करने में विफल रहा और इसकी बजाय ईरान ने नए हमले शुरू कर दिए। अमरीका का कहना है कि ईरान ने संघर्ष विराम के बाद से अमरीकी सैन्य और वाणिज्यिक जहाजों को 19 बार निशाना बनाया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध और नाकाबंदी एक समझौते के साथ समाप्त हो सकती है, लेकिन अगर ईरान समझौता नहीं करता तो बमबारी तेज हो सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तय शर्तों को मान लेता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नाकाबंदी से होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान समेत सभी के लिए खुल जाएगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने आज बीजिंग में चीन के शीर्ष राजनयिक से मुलाकात की। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अराघची ने विदेश मंत्री वांग यी को अमेरिका के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी और कहा कि ईरान किसी भी आक्रामकता का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित एक तरफा युद्ध विराम के आधी रात को लागू होने से कुछ घंटे पहले रूस द्वारा यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में किए गए हमलों में 27 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने आरोप लगाया कि रूस शत्रुता रोकने की बजाय हमले तेज कर रहा है। ज़ापोरिज़िया में बम हमलों और उसके बाद शायद ड्रोन हमलों में 12 लोग मारे गए। क्रामाटोर्स्क, निप्रो और पोल्टावा क्षेत्र में लोग हताहत हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने और स्थायी शांति की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा किमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और जापान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वाभाविक तालमेल साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर अग्रणी क्षेत्रों में नवाचार को गति दे सकते हैं और अनुसंधान को सार्थक सामाजिक परिणामों में परिवर्तित कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल कल से रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय शैक्षणिक अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा।
उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए, जबकि अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने दोनों देशों की साझा विरासत को संजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबर। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस द्वारा रात भर किए गए हमलों में 27 लोगों की मौत। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिल्कुल, हम भी आ गए हैं और आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है और बहुत सारा प्यार, बहुत सारे गीत हम लेकर हाजिर हैं आप ही के मनपसंद कार्यक्रम हर श्रृंगार में। मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना ये था फिल्म सैलाब का, बप्पी लहरी का संगीत, जावेद अख्तर का लिखा ये गीत और अनुपमा देशपांडे की आवाज़।

भाई मिलने की तमन्ना तो हमेशा रहती है और तभी तो हम आते हैं आप लोगों के लिए कार्यक्रम लेके, गीतों का पिटारा लेके। अभी जो आपने ये गीत सुना, ये है फिल्म साजन से। 1992 में ये फिल्म आई। नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत, और इस गीत को आवाज दी SP बालासुब्रमण्यम ने।

रवीना टंडन और सलमान खान पर फिल्माया ये गीत आपने सुना फिल्म पत्थर के फूल से। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज, राम लक्ष्मण का संगीत और इस गीत को लिखा रविंद्र रवल ने। हर्षृंगार में आज बस इतना ही। गीत मेरे मनमीत में होगी आपसे फिर से मुलाकात 11:10 पर, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस

0: कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय एक समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और $अरबों के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

बिल्कुल, और हम भी हैं आप ही के। जी हाँ, गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे टू गोवा से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, आरडी बर्मन का संगीत, और इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्णन ने।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही, और राखी बिल्कुल आ चुकी है स्टूडियो में, और निशिगंधा लेकर आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और अब आप अपने दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और $अरबों के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैंड्रिक क्लासेन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

अलग अलग फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। बूंदों की हल्की थपकियों से सजी ये भीखी भीखी रात, आधी रात का ये सन्नाटा जैसे कुछ कहने को बेताब है। हवा में खुली मिट्टी की खुशबू दिल के किसी कोने को छू जाती है और ऐसे में अगर साथ हो कुछ सुरों का तो हर एहसास और भी गहरा हो जाता है। इस भीगे मौसम में, इस आधी रात के खामोश लम्हों में खुद को खो देते हैं कुछ सुरीले गीतों के साथ, जहां हर धुन एक कहानी कहती है, हर लफ्ज किसी की याद को जगा देता है।

अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी ये गीत हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी किसी अधूरी बात, किसी पुराने ख्वाब की याद दिला जाते हैं। तो बस इस पल को थाम लीजिए, बारिश की इन बूंदों के संग दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए और इन सुरीले गीतों में डूब जाइए, क्योंकि ऐसी रातें बार बार नहीं आती।

ये इश्क नहीं आसान फिल्म से आपने ये गीत सुना मनहर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम यहाँ पर आपको करेक्ट मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी, ये गीत अनवर ने गाया है और ये गीत है ये इश्क नहीं आसान फिल्म से।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। ये वो वक्त है जब गीत सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हर धुन बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। भीगा सा मौसम और इसके बीच चलती एक नर्म सी मेलोडी, जैसे रात खुद गुनगुना रही हो।

हर जाई फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। गीत चलते रहते हैं एक के बाद एक, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, फिर भी हर धुन जानी पहचानी सी लगती है। कभी लगता है जैसे ये रात किसी का इंतजार कर रही है, और कभी यूं लगता है कि इसे किसी का इंतजार ही नहीं है, ये अपने आप में पूरी है। तो आज इस आधी रात को किसी कहानी में मत बंधिए, बारिश की इस हल्की हल्की बूंदों में, इनकी लय में और इन सुरीले गीतों के साथ जो बिना वजह भी दिल को छू लेते हैं, इनके साथ बहते चले जाइए।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आधी रात का ये ठहरा हुआ लम्हा, जहां हर चीज जैसे अपनी रफ्तार भूल चुकी है, खामोशी इतनी गहरी है कि दिल की हल्की सी धड़कन भी सुनाई देती है, और उसी खामोशी में कहीं धीमे से बजते हैं कुछ सुरीले गीत। ये गीत शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल के करीब बैठ जाते हैं, जैसे कोई बिना बोले साथ निभा रहा हो।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसका गीत संगीत दिया और इस गीत को लिखा इंदीवर ने। वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन,

0: सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सुरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation,

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

शबाब फिल्म का गीत आपने सुना, इसे लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत दिया नौशाद ने। जोगन बन जाऊंगी पिया तोरे कारण, जैसे बोल सुनते ही दिल अपने आप एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास है, समर्पण का, मोहब्बत की गहराई का। इसमें जो भाव है ना, वो बहुत मासूम और सच्चा है कि किसी के प्यार में इंसान अपनी पूरी दुनिया बदल देने को भी तैयार हो जाए। जोगन बनना यहाँ त्याग और भक्ति का प्रतीक है, जैसे प्यार कोई पूजा बन गया हो।

अनारकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, इस एक लाइन में ही पूरी जिंदगी की फिलॉसफी छुपी है कि असली जीना वही है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए जीने लगे। प्यार में खुद को खो देना यहां हार नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास बन जाता है।

अंदाज फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। इसे मजरूह ने लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। उठाए जा उनके सितम और जिए जा, इस पंक्ति में जो दर्द है वो बहुत गहरा है। प्यार में मिलने वाले सितम यानी तकलीफों को कोई भी इंसान चुपचाप सहता जाता है, क्योंकि उसके लिए वो मोहब्बत ही उसकी जिंदगी बन चुकी होती है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उस दौर के गीतों में दिखने वाला बे इंतहा समर्पण है, जहां मोहब्बत में शिकायत कम और सहने की ताकत ज्यादा होती थी।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने ये गीत सुना। रफ़ी और लता की आवाज़ में शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 6 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

देवदास फिल्म का गाना आपने सुना, मुबारक बेगम की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वो ना आएंगे पलटकर, इस पंक्ति में जो एहसास है वो बहुत गहरा है। एक ऐसी सच्चाई जिसे दिल मानना नहीं चाहता कि कुछ लोग कुछ रिश्ते एक बार चले जाएं तो फिर लौटकर नहीं आते। लेकिन पुराने गीतों की खूबसूरती यही है, वो सिर्फ दर्द नहीं देते बल्कि उस दर्द को एक सुकून भरी आवाज भी दे देते हैं जिससे दिल हल्का हो जाता है।

बैजू बाबरा फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहे भूल गए सांवरिया, एक ऐसी विरह व्यथा जहां प्रेमी की याद ही सब कुछ बन जाती है, और जब वही सांवरिया भूल जाए तो दिल जैसे खाली हो जाता है। मोहे भूल गए सिर्फ शिकायत नहीं है, ये एक बेबस पुकार है जिसमें इंतजार है, तड़प है और एक मासूम सी उम्मीद भी कि शायद वो लौट आए।

आग फिल्म का गाना आपने सुना, इसे गाया मुकेश ने और लिखा बेहजाद लखनवी ने और संगीत दिया राम गांगुली ने। इस गीत में कितनी गहराई छुपी हुई है, जैसे इंसान जी तो रहा है लेकिन भीतर से कहीं खो चुका है। ये गीत हमें उस एहसास से जोड़ता है जहां दर्द इतना अपना हो जाता है कि वो अलग से महसूस भी नहीं होता, बस जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। पुराने नगमों की यही खासियत है, वो हमारे अनकहे जज्बातों को आवाज दे देते हैं और हम बस चुपचाप उन्हें सुनते रहते हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कभी कभी कुछ चेहरे, कुछ मुस्काने हमें यूं ही नहीं छू जाती। शायद वो किसी पुराने ख्वाब का हिस्सा होती हैं या दिल के किसी कोने में पहले से बसी हुई कहानी।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वाकई तस्वीर चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो उस हंसी की गर्माहट, उस आवाज़ की मिठास और उस साथ के सुकून को कभी कैद नहीं कर सकती।

संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसएन त्रिपाठी ने। कभी कभी यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना, ना कोई आवाज देती हैं ना कोई दस्तक, बस चुपचाप दिल में उतर जाती हैं।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। जब प्यार किया तो डरना क्या, यानी अगर दिल से मोहब्बत की है तो फिर किसी का डर कैसा, न समाज का, न हालात का, न अंजाम का।

वक्त हुआ है 1:58 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। इस घटना के संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam, Tho Lam,

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

दिल आखिर दिल है, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। अनिल मोहिले ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। जज्बात इंसान की ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं जो दिखते नहीं लेकिन हर पल महसूस होते हैं। हर एहसास की अपनी एक कहानी होती है, कभी मीठी कभी चुभती हुई, कभी अधूरी तो कभी पूरी होकर भी अधूरी सी।

खानदान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, किसी अपने का साथ, एक पुराना गाना या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब दिल को हल्का और चेहरे को रोशन कर देते हैं।

गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। हर पल को जी लो, हर एहसास को महसूस कर लो, क्योंकि जो अभी है वही सबसे कीमती है। कभी ये पल खुशियों से भरा होगा, कभी थोड़ा सा उदास भी, पर हर पल अपनी एक कहानी छोड़ जाएगा।

सौदागर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 11 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सवेरे वाली गाड़ी, लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वो दिन वापस जरूर लौटेंगे, ये एक यकीन है, एक उम्मीद जो दिल को थामे रखती है। हर गुजरा हुआ पल कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा रहता है।

जमीन आसमान। इस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। दिल देना कोई सौदा नहीं होता, ये तो जैसे अपनी दुनिया किसी और के हवाले कर देना है। और जब ये कदम घबराकर उठाया जाए तो उसमें मासूमियत भी होती है और सच्चाई भी।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। रात का अपना एक अलग ही जहां होता है, धीमा, गहरा और एहसासों से भरा। ये रातें कहानी कहती हैं, कभी मोहब्बत की तो कभी इंतजार की। वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसो

0: और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर ज्वाइंट से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tô Lâm have

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। रात सुहानी है, हवाओं में मीठी सी कहानी है, तेरे ख्यालों ने आज फिर दिल को चुपके से छुआ है, हर सितार जैसे बस तेरा ही नाम गुनगुना रहा है।

चांदनी भी शर्मा जाए जब तुम मेरे साथ हो, ये रात और भी हसीन हो जाए तेरे एहसास से, जैसे हर पल मैं बस प्यार ही प्यार बसता रहे तेरे साथ से।

तेरे प्यार का असर यूं ही हर सांस में बना रहे, तेरी हंसी मेरे हर ख्वाब की रोशनी बन जाए, बस तुझ में ही सिमट कर ये दिल सुकून पाता है।

दिल के दरवाजे आज जरा खुल जाने दो, इन हवाओं में मोहब्बत का रंग थोड़ा घुल जाने दो, शायद कोई अपना फिर से दस्तक दे जाए।

कुछ यादें होती हैं जो रात के सन्नाटे में और भी करीब आ जाती हैं। आज की ये महफिल उन्हीं एहसासों के नाम, जहां हर धड़कन में छुपा है किसी का नाम।

ओ मेरे महबूब, चांद और तारे आज गवाह बन गए तेरे मेरे इस खूबसूरत से रिश्ते के। ये रात भी मुस्कुरा उठी है, ये हवा भी कुछ कह रही है। दिल की हर धड़कन में अब सिर्फ तेरी ही सदा रह गई है।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान करेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशघम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को कल 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट्स से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्कल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
2: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Meanwhile, President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening and hosted a banquet in his honor. President Murmu said elevating India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will boost bilateral cooperation and contribute to regional peace and prosperity. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bouva in

और समय हो गया है 4:11:05। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म दूर का राही फिल्म से, प्यारा सा गीत किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज़ में।

देखते हैं सुनते हैं अगला गीत फिल्म संगम से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से नितिन मुकेश की आवाज़। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म धरती से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत अवतार फिल्म से किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और इस गीत के संगीतकार हेमंत कुमार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय कह रहा है कि अनुमति ले ली जाए 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ इजाज़त। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मुद्रा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की।

0: गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बौवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकान स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan yesterday evening. She also hosted a banquet in the honor of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. She said that India and Vietnam share a deep friendship rooted in historical, civilizational and cultural ties. The president noted that in recent years, India-Vietnam bilateral relations have expanded across high-level exchanges, defense and security cooperation, development partnership and sectors such as trade, health, science and technology and tourism. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shivendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North 24 Parganas district of West Bengal. According to reports, miscreants on motorbikes opened indiscriminate fire at his car in Doharia last night. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Bera, also sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. Defence Minister Rajnath Singh and Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will grace the second edition of Joint Commanders Conference in Jaipur today. The two-day conference on the theme Military Capability in New

समय हो गया है 5:11 और 4 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और एक बार आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है हरिओम शरण ने।

जीवन हमें यही सिखाता है कि जी असली ताकत अपने अंदर होती है। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, पर जो दुख में भी मुस्कुराना सिखा दे, वही आपके जीवन की असली जीत है।

हर नई सुबह एक नया सफर लेकर आती है। बीते कल को पीछे छोड़कर आज की भोर में अपने सपनों को फिर से जगाइए।